0: आवाज गूंजेगी।
1: नमस्ते, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम बुला, आप सभी का स्वागत करता हूँ खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए। अभी से लेके 3 बजे तक बहुत सारी बातें होने वाली है। कुछ अपडेट्स दूंगा यहाँ पे देश दुनिया में क्या चल रहा है, और यस कुछ और भी यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट हुई है जो आप तक पहुँचना चाहिए तो वो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। थोड़ी देर में होमसिक रेमेडीज की बातें होगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आप सचमुच बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे, आप टेक्स्ट भेजेंगे और यहाँ पे हम बातें शेयर करेंगे। बट यस, उसके बाद और भी जो कारवा है वो बरकरार रहेगा। सबसे पहला गाना जो है काफ़ी क्लोज है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मज़ेदार भी है, तुझे भुला दिया
2: हो।
1: मोहित चौहान और शेखर रजवानी के कंट्रीब्यूशन से ये गाना बना है, बहुत ही प्यारा गाना है। आई थिंक इट्स अनजाना अनजानी इस फिल्म का गाना है, एंजॉय करिए। मिलते हैं होमसिक रेमेडीज के लिए 5599 पे। एक्चुअली आज क्या करते हैं, आज हम कॉल उठाएंगे, कॉल पे बात करेंगे, मैसेजेस तो नहीं, बट यस आप मुझे कॉल भी करिएगा थोड़ी देर में इन दो गानों के बाद।
3: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं होम सिक रेमेडीज के लिए। फोन लगाइए और बताइए कुछ ऐसी बातें जो आप होम सिक रेमेडीज से रिलेटेड हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं यहां पे बीइंग इन ऑकलैंड। 0800-004-866 पे आप कॉल करिए मुझे और बताइए। वेल, एक मैसेज आया, उसे पढ़ लेते जब तक कॉल आता है तब तक। हे केतन, वॉज एट द सुपर मार्केट दिस मॉर्निंग क्रेविंग सम रियल फ्रूट फ्रॉम बैक होम। आई सॉ अ सिंगल इम्पोर्टेड इंडियन एल्फोंसो मैंगो टैग्ड एट $14.99। आउट ऑफ प्योर नोस्टैल्जिया एंड डेस्पिरेशन आई एक्चुअली बॉट इट। I rushed home, sliced it up with so much excitement and it literally tasted like sweet cardboard mixed with water. Back in hometown, summer meant boxes of juicy mangoes everywhere. Mango kahan mil gaya yaar yahan pe? Abhi hai mango? I don't think so, right? Mango hi uthaya na, aapne kuch aur to nahi uthaya. But anyways, sticky fingers and eating until you couldn't breathe. Standing in my Auckland kitchen paying $15 for a bland slice of disappointment made me miss home so bad. How do we deal with craving real comfort food when the local substitutes just break your heart and your wallet? बड़ा ही दुख वाली बात है ये। वैसे यस, आप सबसे पहले तो मुझे बताइए आम कहाँ मिला आपको। मुझे लिटरली I actually want to try it. Even I love it and my parents are here, so they would also want to try. मेरे को ये जाना, मुझे लगा शायद गर्मी में आते होंगे। बट प्रिया का मैसेज था, देसी के 15 का जो सबसे पहले तो पता नहीं इतना महंगा है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। मेरे ख्याल से जब समर्स आते हैं तब $4 का ऐसा कुछ पड़ता है ना शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 54 का पूरा कार्टन आता है तो वो मेन प्राइस होती है। बट ये सी जो न्यूजीलैंड में इम्पोर्टेड फ्रूट्स होते हैं ना, ये दिखते तो बहुत चमकीले हैं पर स्वाद के नाम पर एकदम ज़ीरो होते हैं। मोस्टली नॉट एवरीथिंग बट मोस्टली ये सारी चीज़ें होती है। इंडिया के वो रसेदार एल्फोंसो और लैंगरा आम या फीजी के वो मिठास से भरे ताज़ा पाइनएप्पल्स, उनका मुकाबला ये $15 वाला प्लास्टिक मैंगो या फिर जिस तरह के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कैन डू इट। बट एक तो वॉलेट का पोपट होता है और ऊपर से दिल भी बहुत ही ज़्यादा टूटता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पता है क्या है, थोड़ा कंट्रोल करो। समर आ रहा है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स इट वोंट बी समर ओवर देयर इन इंडिया। जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा घर पे कहिए कि आप सेव करें, एंड इफ़ यू थिंक दैट इन कपल ऑफ मंथ्स यू कैन विजिट फॉर अ वाइल, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको ट्राई करना चाहिए। यार इसमें मैं क्या बताऊँ यार, लाइक लिटरली Honestly, I have no review on this. मतलब मैं, मुझे अगर किसी चीज़ से disappointed होती है तो मैं तो बोलूँगा भाई छोड़ ही दो यार, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना पैसा खर्च करके इंडिया जाना फिर वही चीज़ ट्राई करनी, पता नहीं यार। यहाँ कोई है जो इनका जवाब इनमें प्रिया जी को हेल्प करेगा टू फाइंड द सोल्यूशन कि वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, बिकॉज ये होम सिकनेस इन्हें काफ़ी हो रही है और ऑब्वियसली आम खा के और भी ज़्यादा हो गया जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है इन्हें उससे। अगर कोई है यहाँ पे तो मुझे वैसे तो कॉल करना चाहिए था बट अभी तो कॉल नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे। आई एक्चुअली वॉन्ट टू हियर सम फीडबैक फ्रॉम माई लिसनर्स। 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स विद केतन। मुझे पसंद है लड़का। हाँ। We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me. Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटु
2: लेट्स गो
1: विजिट flysolomons.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
5: Non-stop Bollywood.
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
5: हम playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
7: हम।
9: Welcome back. You are listening to Lunchbox. ये रहे मैसेज। अभी थोड़ी देर पहले प्रिया ने जो बताया था, कहानी अपनी बताई थी कि आम से रिलेटेड, यानी कि आम उन्होंने मंगाया, $15 पे किए, लेकिन उन्हें वो टेस्ट नहीं मिला। विक्रम भाई, उनका मैसेज आया है मनुरेवा से, वो बोलते हैं, क्योरा केतन, टेल प्रिया टू स्टॉप बर्निंग हर हार्ड अर्नड कैश एट लोकल सुपरमार्केट्स। एज अ फीजियन गाय, आई मिस्ड होम फ्रूट्स लाइक क्रेजी टू, बट पेइंग $15 फॉर वन सिंगल मैंगो इज प्योर मैडनेस। टेल हर टू हिट एनी सेंड्रिंगम इंडियन स्पाइस शॉप एंड ग्रैब अ कैन ऑफ Alfonso pulp or frozen mango slice. Blend it with milk, vanilla ice cream and ice. Boom! You get a thick, authentic home style. अरे भाई, पूरा इन्होंने तो बना ही दिया है। पूरी रेसिपी बता दी इन्होंने तो। गजब यार। ये मैं भी ट्राई करूँगा, ऐसा करें पॉसिबल है तो why not? और ये सब बता रहे कि ये सारी चीज़ें तुम $6 के अंदर अंदर कर सकते हो। Wow! Crazy! नेहा ने भी रिप्लाई किया है, I felt Priya's pain directly in my wallet. Last winter I made the exact same mistake with a $12 guava that tasted like cucumber. है? Here's my trick for Priya. When Fijua season hits New Zealand, grab a big bag. They are often free if your neighbors have tree. The tart, sweet, tropical flavor is the closest thing to home fruit and totally satisfy that desi craving without breaking the bank. भाई इतनी English अंग्रेजी लिख लेते हो यार, मैं सर घूम जाता है मेरा। अमन भाई का आखिरी मैसेज, वो कहते हैं, क्योरा केतन, केतन ब्रो, प्रिया नीड्स अ रियलिटी चेक। नो इम्पोर्टेड फ्रूट सर्वाइविंग अ 3 week ship journey will ever taste like fresh tree. Delhi mango repent. My advice, stop looking for fresh mangoes in winter. Buy a tub of mango kulfi from a local desi eatery. Ye sahi bola inhone. Aur make a quick mango pudding using canned pulp. Save that $15 and buy 2 full tubs of ice cream instead. Arre gazab yaar. Matlab, dekh rahe ho aap, jawab mil gaya hai. Hopefully, Priya sun rahi hai abhi. ऑब्वियसली सुन रही होगी यार, उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने डेफिनेटली करना ही है। बट यहाँ पे अगर और कोई भी सुझाव देना चाहता है तो आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स। मतलब आई ओपनर तो था डेफिनेटली, क्योंकि मैं इतना कन्फ्यूज हो गया था, मैं क्या बोलूँ। बट ग्लैड मैंने आप सभी से पूछा और आपने रिस्पॉन्स किया उस पर। सो थैंक यू विक्रम, नेहा एंड अमन भाई आपके मैसेज के लिए। होपफुली शी विल गेट इट फॉर श्योर।
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक जनम जनम अरिजीत सिंह और अंतरा मित्र की आवाज में आपने गाना सुना है बट लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड. वेल हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में जो कहानी है आज की वो है एलिनॉर रूजवेल्ट जो कि फर्स्ट लेडी थी यूनाइटेड स्टेट्स की जो न्यूजीलैंड में आई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1943 आज के तारीख में. शी अराइव्ड इन ऑकलैंड ऑन 27th of August 1943 एज अ पार्ट ऑफ सरप्राइज 7-day विजिट. जी हाँ, वैसे उनका जो मेन पर्पज था वो था अमेरिकन सोल्जर से मिलना, यूएस रेड क्रॉस का काम देखना और न्यूजीलैंड वुमेन को वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूशन समझाना. एंड शी वाज आल्सो वेल नोन फॉर सपोर्टिंग वुमेन्स राइट एंड पीपल हु वर स्ट्रगलिंग. वैसे ऑकलैंड के बाद शी ट्रेवल टू वेलिंगटन रोटोरुआ व्हेन शी वाज वार्मली वेलकम्ड और ऑकलैंड वापस आकर शी अटेंडेड अ सिविक रिसेप्शन, विजिटेड अ नेवल हॉस्पिटल एंड रेड क्रॉस सेंटर्स एंड इवन अटेंडेड अ रेड क्रॉस डांस. फिर आखिर में एलिनॉर ने 3rd सितंबर 1943 को न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए चली गई थी और हर विजिट शोड द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन न्यूजीलैंड एंड द यूएस ड्यूरिंग द वॉर. व्हाट यू थिंक? वैसे काफ़ी बढ़िया यू नो कहानी इसमें आती रहती है कि कब क्या हुआ है. आज के दिन वैसे एक और चीज़ हुई थी, न्यूजीलैंड सेंटेंस टू डेथ इन मलेशिया जो कि 1987 में हुआ था, जिसकी बात करेंगे बहुत ही जल्द.

0: वेलकम बैक। एक बहुत ही बढ़िया इवेंट आ रहा है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ टमाकी ऑकलैंड हेरिटेज फेस्टिवल 2026, जो कि ऑकलैंड हेरिटेज फेस्टिवल 2026 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इस साल फेस्टिवल का थीम होगा टेस्ट ऑफ टमाकी अ हेरिटेज फीस्ट। वैसे फेस्टिवल में करीबन 150 से ज़्यादा फ्री और लो कॉस्ट इवेंट्स होंगे, जहां ऑकलैंड की फूड हिस्ट्री और डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानने का चांस मिलेगा। वैसे इसमें माओरी कम्युनिटीज़ ने ट्रेडिशनल मारा और काई इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज के फूड ट्रेडिशंस और ऑकलैंड में डेवलप्ड हुई फ्यूजन फूड्स को एक्सप्लोर किया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम यूएस फोर्सेस को फूड सप्लाई करने की हिस्ट्री भी हाईलाइट होगी यहाँ पे। और विजिटर हिस्टोरिक वॉक्स, टॉक्स, वर्कशॉप्स, परफॉर्मेंसेज और फूड रिलेटेड एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड के सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट एरियाज में होंगे, जो अगर आप ऑकलैंड की हिस्ट्री, कल्चर और फूड को एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये फेस्टिवल डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, C's, fees and credit criteria apply. Floor.

0: beat of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, आप बने रहिए बिकॉज थोड़ी देर में आपका जो लकी आर होता है वो शुरू होने वाला है, यानी कि इस लकी आर में आपको एक क्यू सुनाई देगा, बोर्डिंग कॉल का क्यू, और उसे सुनते ही आपके पास एक घंटा होगा और उसी एक घंटे के बीच आपको रोवा ऐप पे जाना है और बोर्ड नाउ कोड जो है उसे वहां पे कर देना है सबमिट. जी हाँ, टाइप बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट ऑन रोवा ऐप. वैसे यस, अगर आपको लिंक चाहिए, आपको डिफिकल्टी हो रही ढूंढने में, तो आप हमें BC लिख के 5599 पे भेज सकते हैं ताकि लिंक डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए और आप उस कंपटीशन में यू नो प्रिपेयर रह सकें. सो यस, बिटवीन 1 to 2 इट विल बी ऑन एयर एनी टाइम. तो आप बस टिक रहिए और सुनते रहिए मेरा शो, लंच बॉक्स शो इट इज. बट यस, थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतू. विजिट फ्लाई सोलोमन्स.com. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। आज वैसे विंडी है, बहुत ही ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन 6:01 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: क्या हाल, नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए। व्हाट अ फर्स्ट स्टार वी हैड, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, उसी रिस्पॉन्स को बरकरार रखिएगा इस आर में भी। थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन से लेके लेटेस्ट खबर, बॉलीवुड की खबर और यस द गोल्डन मौका आपको इस आर में मिलने वाला, वो है बोर्डिंग कॉल। यानी कि अगर आप जैसे ही क्यू सुनते हैं बोर्डिंग कॉल का, तो आपको फट से उसी टाइम जल्दी से रो ऐप पे जाना है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट नीड टू पुट द कोड देयर, बोर्ड नाउ इज द कोड, जो मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसको वहाँ पे टाइप करना है विद इन 1 आवर, यानी कि आपके पास 1 घंटा होगा जैसे ही आप क्यू सुनते हैं। बट अभी के लिए इंजॉय करिएगा ना पिंकी, ममता शर्मा और मीट ब्रॉस की आवाज में।
0: बचाओ क्या?
3: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
4: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: केतन,
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम। अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calm down, I'd actually do something like.
7: Imagine winning $25 million this Wednesday. Play in store or online.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
12: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
0: Lunchbox with Ketan.
14: Mujhe pasand hai ladka.
0: Hum. Lunchtime
15: Rant Line के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ हुई हो, जिसने जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ही इरिटेट किया हो। सो यस, हियर इट इज। वेल यस, ये जो मैसेज है ये आया है प्रिया की तरफ से। ये वही प्रिया है जिन्होंने आम वाली बात की थी काफी इंटरेस्टिंग बात की थी वो। बट एनीवेज, इन्होंने रेंट किया है regarding people who park so badly that they take up two spaces. I went shopping today and had to drive around for ages looking for a spot while one car was sitting across two parks. I honestly don't understand it. Just park properly and leave a space for someone else. That is so true, yeah. That is so true. यहाँ पे ये चीज easily हो सकती है, but no, you don't really bother about sharing the parking. पब्लिक एरिया है यार, पब्लिक को, पब्लिक की चीज़ें को अपना ना बनाओ। ये मैं भी बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा इरिटेशन होती है। इनफैक्ट मैं हमेशा कंपेयर करता था किसी ना किसी से कि यार क्या यार ऐसी क्यों पार्किंग करी, कुड हैव बीन यू नो दो कार आ सकती है वहाँ पे, बट नो यू नीड टू शेयर, यू डोंट वॉन्ट टू शेयर द पार्किंग। मतलब मैं तो इतनी खुन्नस होती है जैसे लोगों से सही में ऑनेस्टली, बट नो काम डाउन। यहाँ पे अगर और कोई है जो शेयर करना चाहता अपनी बात तो यस डू लेट मी नो कि पार्किंग जो है ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक अबाउट अदर पीपल एज वेल, ताकि वो भी कन्वीनियंटली अपनी पार्किंग लगा सके, कार लगा सके वहाँ पे, ताकि यू माइट बी लेट, बट यू नो हो सकता है वो अगला बंदा भी लेट हो लेकिन उसे पार्किंग नहीं मिल रही हो, एंड देन ही हैज़ टू पार्क समवेयर एल्स, फिर वहाँ से वॉक करके आना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जस्ट थिंक एंड सी, इफ़ यू कैन नॉट पार्क इट प्रॉपरली, आई वुड से कि आप किसी यू नो एक्सपीरियंस वाले से ट्रेनिंग ले ले थोड़ा सा कि प्रॉपरली कैसे पार्क की जाती है. दैट गोना बी सो सो ग्रेट. राइट, चलिए एंजॉय करते हैं बंधु 2.0, नीरज श्रीधर और कविता सेठ. वैसे कैसे किस किसने कॉकटेल 2 देखी है? मैंने देखी है, मुझे ओवरऑल सही लगी, काफ़ी एंटरटेनिंग है, बट एंड में जाके थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये पता नहीं यार ऐसा तो नहीं होता होगा यार. राइट, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली बता नहीं सकता स्टोरी बिकॉज अदरवाइज अगर आपने नहीं देखी है तो वो पूरा खुल जाएगा, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू शेयर. बट अगर आपने देखी है तो बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म.
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। चलिए आज बात करते हैं लेटेस्ट खबर की। फ्री फ्लू वैक्सीन फॉर अंडर फाइव्स। न्यूजीलैंड में 1 सितंबर से अंडर फाइव चिल्ड्रन के लिए फ्लू वैक्सीन फ्री अवेलेबल है। यह वैक्सीन 6 मंथ से लेकर 5 साल के बच्चों के बीच के लिए है और गवर्नमेंट ने पहले प्लान किया था कि ये वैक्सीन 2027 से फ्री होगी, लेकिन पेरेंट्स और कम्युनिटीज के फीडबैक के बाद इसे 1 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस इनिशिएटिव का एम जो है वो यंग चिल्ड्रन को फ्लू से प्रोटेक्ट करना और सीरियस इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम करना है। वैक्सीनेशन से फ्लू का स्प्रेड फैमिली और वाइडर कम्युनिटी में भी रिड्यूस हो सकता है। पेरेंट्स अपने एलिजिबल चिल्ड्रन के लिए GP, मेडिकल सेंटर या फार्मेसी से वैक्सीन के बारे में चेक कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल ये फैमिलीज के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, स्पेशली क्योंकि यंग चिल्ड्रन फ्लू के इफेक्ट के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं।

0: What a song यार, रोजाना रोजाना एक एक रोजाना गाना वो भी है श्रेया घोषाल की आवाज में है रोजाना ऐसा भी कुछ गाना है राइट लिरिक्स मुझे याद नहीं बट उसका वीडियो इतना ज़्यादा सिंपल है लेकिन इतना अमेजिंग है वो वीडियो इतना खूबसूरत लगा मुझे दैट यू एक्चुअली डोंट नीड टू वॉच द होल फिल्म टू अंडरस्टैंड वो सॉन्ग किस बारे में मतलब वो सॉन्ग में ये दिखाया गया है कि एक लड़का इतने टाइम से लॉयल है लड़की का साथ दे रहा है लड़की के साथ है बट लड़की ने कभी उसे हाँ नहीं कही बट ऑफकोर्स लड़की के जहन में ये होगा कि भाई तू मेरा सिर्फ दोस्त है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है बट स्टिल ही वॉज देयर फॉर हिम देयर फॉर हर एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स और भी बढ़िया बढ़िया यू नो स्टोरी लंबी जाती है एंड देन फाइनली लुक्स लाइक दैट उस वीडियो में थोड़ा बदलाव आया है सो यही देखने के लिए आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगा बट अभी नहीं बाद में आराम से जब भी आपको टाइम मिले बट अभी के लिए मुझे सुनते रहिए क्योंकि एक नया पॉडकास्ट हमने रिलीज़ किया है वो आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है द रीज़न इज़ आप यहाँ आए और हमेशा आपके जहन में होगा कि यार हम तो चलो आए हैं यहाँ पे इतने इंडियंस हैं ये सब हैं बट दे आर हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कम ओवर हियर या फिर न्यूजीलैंड में इंडियन हिस्ट्री कैसे शुरू हुई तो उसके बारे में बहुत बढ़िया एक डॉक्यूमेंट्री बनी है सो यस 100 ईयर्स ऑफ रेजिलेंस माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी एक बहुत ही बढ़िया गगन संधू ने डायरेक्ट की है डॉक्यूमेंट्री जिसमें हरजोत सिंह प्रेजेंटर भी है रिसर्चर भी है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई है 100 साल की हिस्ट्री बताई है यहाँ पे इंडियंस की पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पियोनियर्स यानी कि आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले की कहानी है तभी आ चुके थे यहाँ पे सो जस्ट यू डेफिनेटली नीड टू गो सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक्स्ट मी ड्राइव टू 5599 और एक लिंक मिलेगी उसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको लिंक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा बट यस ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं आपके खुद के ऑनलाइन जाके सुनना चाहते हैं तो अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे रो ऐप पे या फिर स्पॉटिफाई पे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी अमेजिंग है मैंने पूरा वीडियो देखा है वीडियो भी बहुत बढ़िया है और आप ऑडियो भी सुने उनके बारे में बात हुई है तो बेसिकली वीडियो तो बनाया इन्होंने यूट्यूब पे बट उसे बनाया कैसे कैसे आइडिया है क्या रिसर्च हुई है कितनी मेहनत लगी है कितना टाइम लगा है ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में है डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए लंच बॉक्स विद केतन हीरा लड़का है टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
1: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
1: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
4: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
6: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: हे नेहा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था ये घर कैसे
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया
9: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
12: लंच बॉक्स विद केतन
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं
14: इसके पीछे
2: हम
12: लंच के मंच पे
0: क्या नमस्ते वेलकम बैक कैसा चल रहा है आपका टाइम समय और तरह तरह की बातें आप यहाँ पे शेयर करते हैं उसे आप बरकरार रखिए लेकिन यस कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड से भी खबर है वो मैं लेके आया हूँ Well, आपको पता है मिर्जापुर इज अबाउट टू रिलीज वेरी वेरी सून. आपने छोटे पर्दे पे तो देखा ही होगा, बट क्या आपने बड़े पर्दे पर देखा है? राइट, यस, नो, बट यस, उसे सुनने के लिए आप बने रहिए. उसके बारे में और भी बातें बताऊंगा मैं. अभी बड़े सिल्वर स्क्रीन पे भी वो आने वाला है, जहां पे बताया जा रहा है कि 35 कट्स किए हैं CBFC ने, 35 सेकंड के काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जो अनअप्रोप्रिएट है फॉर मेनी पीपल, तो वो उन्हें हटाने को ऑर्डर किया है. ये फिल्म जो है बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, जिसमें फरहान अख्तर के जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है वो उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है. मेरे ख्याल से 4 सितंबर यानी कि तीन दिन बाद ये रिलीज़ हो रही है. अमेजिंग, राइट? मज़ा आने वाला है यार, काफ़ी एंटरटेनिंग है. मैं तो डेफिनेटली देखने जाऊँगा, आप भी मुझे बताएं. इनफैक्ट देख रखिए, बट फिर भी. लेकिन मेन सवाल पता है क्या, गुड्डू एंड बबलू, जो गुड्डू था, स्मार्ट बंदा था उसमें गुड्डू ने, वो बदल चुका है. यहाँ पे हमारे TVF के जितेंद्र जीतू भाई वो रोल ये निभा रहे हैं. तो एक्साइटमेंट तो है ही है, क्योंकि उनको उनका भी काम बहुत ही बढ़िया. आपने उन्हें पंचायत में भी देखा है, और काफ़ी ऐसे वेब सीरीज़ है जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है. तो यस, एक्साइटमेंट तो है ही, बट थोड़ी नर्वसनेस भी है कि कहीं आप गुड्डू भैया को ज़्यादा मिस ना करें. सो यस, काफ़ी एक्साइटमेंट है, तो इसे हम देखेंगे. लेकिन उसके अलावा हैवान 11 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, फिर दायरा 18 सितंबर को रिलीज़ होने वाला है, और द वी वान जो कि 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है.
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4-NZPMI.
14: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी.

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वेलकम बैक। अभी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, तो यस दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं अमेजिंग श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, जो कि 29 अगस्त से शुरू हो चुका है, 4 सितंबर तक चलने वाला है सेलिब्रेशन। द के 5x57 केविनिज ड्राइव मनुकाव, यहाँ पहुँच जाइए। 7:30 बजे के बाद ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव, यहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं सेम डे एंड सेम टाइम। साथ में श्री हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस फ्रॉम 29 to 4 सितंबर। कृष्ण जन्मोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 4 सितंबर 12 से लेकर 12:30 बजे रात के। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो कि माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोटो में भी मनाया जा रहा है, 4x3 ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोटो, 7 बजे के बाद आप वहाँ पर भी जाके इन्जॉय कर सकते हैं।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very. That is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: करना नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वैसे यस, बहुत सारी बातें करनी है इस आर में भी, स्पोर्ट्स से खबर भी लेके आऊंगा, लेटेस्ट खबर यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा मैं, तो आपको बस यही करना है, आपको बस बने रहना है। वैसे यस, फ्लू वैक्सीन का काम जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे कि मैंने कहा था, बिटवीन ऑफकोर्स 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों के लिए ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है कम्प्लीटली फ्री। तो आप अगर चाहते हैं आपके बच्चों को लगाना, तो आप अपने लोकल जीपी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन डू इट। बट यस, इस आर में सबसे पहले तो स्पोर्ट्स की खबर लेके आऊँगा, क्या है क्या नहीं है, लेटेस्ट खबर के साथ साथ टेक की खबरें भी लेके आऊँगा, और यस, फादर्स डे का भी जलवा यहाँ पे होने वाला, यानी कि कौन से कॉम्पिटिशन में आप पार्ट ले सकते हैं फादर्स डे के लिए, रेडी रहिए। अगर आपके फादर शर्मीले हैं तो उन्हें मनाइए, बिकॉज मैं एक सवाल लेके आऊँगा बहुत ही जल्द, और उस सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया तो ड्रॉ में शामिल होकर आप जीत सकते हैं इनाम, बढ़िया वाला इनाम एक्चुअली। सो यस, बस सुनते रहिए, शुरुआत करते हैं तमंचे पे डिस्को आरडीबी की तरफ से।
1: बचाओ क्या,

Welcome back. Chaliye, it's time to let you call me on 0800-004-866 pe because Father's Day special ke liye yahan pe main sawal karne wala hoon. So yes, mera sawal pata hai kya hai? Mera sawal ye hai ki dad ko batana hai ki unke bacche kitne hain, jo bahut hi aasan hai. Actually, aaj ka na main bahut hi light wala kiya, like you know, देखता हूँ यहाँ पे कितने कॉल आते हैं. बहुत ही आसान है कि कितने बच्चे हैं और यस, हर एक की पसंद और नापसंद, हर एक बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है. लेट्स सी कितने फादर को पता है उनके बच्चों के बारे में. सो यस, जल्दी से फोन उठाइए और मुझे कॉल लगा दीजिए 0800-004-866 पे बिकॉज इस ड्रॉ के साथ आप शामिल हो सकते हैं $500 जीतने का मौका. ये 4 सितंबर तक ही आपके पास सिर्फ 3 दिन और हैं. जितनी बार कॉल करेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे. बट यस, हियर इट इज, जल्दी से कॉल करिए. एक कॉल आ रहा है. हेलो. नहीं बोल रहा कोई, नाराज है. मेरे को लग रहा है फोन किया फिर भूल गए. अरे मेरे बच्चे कितने हैं.

0: मजाक कर रहा हूँ। चलिए दूसरा फोन आया है। अरे भाई मिस कॉल क्यों मार रहे हो भाई, कॉल करो ना पूरे, ऐसे नहीं होता है। अच्छा आपको भी याद कंफर्म करना था क्या, जल्दी फोन करिए 0800-004-866 पे, बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं एंड उनकी पसंद ना पसंद क्या है, जितना जल्दी हो सके कॉल करिए। हेलो
1: हेलो
2: हेलो
0: यार, मेरे ना मतलब मेरे को पूछना है कि लाइक फादर्स डे के कंपटीशन में मदर्स क्यों कॉल करती है, इतने शर्मीले फादर
1: अब जॉब पे बिजी हो तो मदर इनिशिएटिव ले लेते हैं ना।
0: अरे अरे ये भी सही है बट वो कर सकते हैं ना, मतलब बच्चे तो उनके भी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सारी जिम्मेदारी आप ही की है।
1: नहीं, फादर उन्हें बनाता है, कौन है, मम्मी बनाती है।
0: क्या ओके चलिए बताइए कितने बच्चे हैं आपके पति के, बच्चे कितने?
1: मेरे पति के 2 बच्चे हैं।
0: राइट right. और उनकी पसंद ना पसंद, मतलब आप उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ऐसे पूछा।
1: हाँ जी
0: तो उनकी पसंद, क्योंकि मैं पता क्या मेन रीजन था फादर से पूछने का, कि मम्मी को तो पता होता है ये सारी चीजें।
1: okay.
0: मम्मी तो स्मार्ट
1: नहीं, पे हमारे केस में उल्टा है, मेरे हस्बैंड को ज्यादा पता होता है बच्चों के बारे में।
0: अच्छा चलिए फिर बताइए,
1: मदर एंड आई एम लाइक अ फादर।
0: ओके चलिए बताइए पसंद ना पसंद क्या है।
1: इन व्हाट टर्म्स ऑफ,
0: मतलब आपके जो बच्चे हैं उनकी, उनको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और क्या चीज अच्छी नहीं लगती, लाइक दे विल गेट इरिटेटेड। जैसे कोई होता ना बोलता है कि उसे बाहर, जैसे मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं तो ही लव्स इफ समवन होल्ड्स हिम एंड स्टैंड, और उसे एक चीज पसंद नहीं है, वो है ऑब्वियसली नीचे बैठाना, समथिंग लाइक दैट।
1: हाँ जी, वो तो अभी आपका बेबी छोटा है ना, इसलिए
0: मेरा तो 8 महीने का होने वाला है।
1: हाँ जी
0: तो उसी तरह आप बताइए कुछ।
1: होने दो बड़ा। मेरे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, जब उन्हें बोल दो कि नहीं आप नाउ यू नीड टू डू स्टडी, बट दे जस्ट हेट इट, दे सेड नो मामा कैन वी हैव 5 more minutes, बट व्हेन डैड सेज 5 minutes फिनिश, दे स्ट्रेट अवे स्टॉप प्लेइंग एंड वाओ स्टार्ट स्टडीइंग।
0: सो दे डोंट लाइक लिसनिंग टू यू, दे डोंट लाइक यू टेल एनीथिंग टू देम। ये जब जीतेंगे आप उसके बाद शायद लग रहा है मेरे को वो हो जाएंगे। They'll be good to you as well.
1: I hope so. Fingers crossed.
0: क्या नाम बताया फादर का?
1: अमित शर्मा।
0: अमित शर्मा एंड ऑफकोर्स उनका नंबर विल बी गोइंग टू पिक द कॉल और नो?
1: ड्यूरिंग दिस टाइम नो।
0: तो आप अपने नंबर बता दीजिए। अच्छा ये तो मैं ले लूंगा यहाँ से, ये तो सेम जो आपने कॉल किया था ना। Perfect. No worries. Thank you so much आपके कॉल के लिए.
1: You
0: have a wonderful day.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: You too. Bye.
0: चलिए एक और फोन उठा लेते हैं. Let's see. Hello. अरे हैंग हो गया क्या? अरे ये क्या हो? ये मैंने कुछ नहीं किया भाई. मैं फोन उठा रहा था, हैंग ही हो गया. Come on. Just hold on. आप फिर से फोन करिए because हैंग हो चुका है ये सिस्टम. देखिए ये होता है यार, कॉल्स आते हैं तो अरे आया. नाइस किसको उठाएं, देयर यू गो। हेलो, अरे भाई साहब फोन क्यों कट कर देते हो।
3: हेलो
0: आप भी उनके बिहाफ में बोल रही हैं?
3: नहीं मैं मेरे बिहाफ पे बोल रही हूँ।
0: अच्छा आप अपने
3: बिहाफ, थोड़ा डिफरेंट।
0: क्या केस है बताइए।
3: मेरा केस इसलिए डिफरेंट है बिकॉज मेरे बेटे की मम्मी भी हूँ और पापा भी हूँ।
0: राइट तो बनता है, तो डेफिनेटली बनता
3: है। Because I'm a single mother, that's why.
0: Right. नहीं, फिर तो डेफिनेटली बनता है। तो बताइए आप वैसे कितने बच्चे हैं आपके पास?
3: I have only one.
0: Right.
3: Boy.
0: क्या नाम है?
3: मेरे बेटे का नाम है आर्यन।
0: वेरी नाइस तो बताइए उनकी पसंद ना पसंद क्या है?
3: डिपेंड करता है खाने में, पहनने में, बाहर जाने में, किस चीज में,
0: कोई भी चीज जो आपको लगता है कि यार ये, मतलब ये कि कभी वो नाराज है तो ये चीज बता दो तो वो डेफिनेटली, कुछ भी हो जाए ये इससे मान ही लेगा वो।
3: उसको बाहर घुमाने के लिए कहीं भी ले जाओ, चाहे पार्क में ले जाओ, चाहे मॉल में ले जाओ, कोई छोटी सी स्लाइड में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, एक सेकंड में मान जाता है वो।
0: राइट और कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा
3: मूवमेंट The moment you will tell him, okay, let's go for kummi kummi, because he is always eager to go outdoors. So every Friday in the morning when I drop him to the daycare, he asked me, Mama, today is Friday, so when we come back from daycare, from kindy, we are going to kummi kummi. Every Friday, he thinks it's a kummi kummi day for him.
0: That's so cute. Listen, listen to me, I also have a lot of excitement when Ihan will start speaking, and then I'll be like, oh, chalo.
3: My son is 4 years old.
0: और एक और अच्छा 4 years old है.
3: How old is your one?
0: मेरा तो भी 8 महीने का होगा, अभी दो तीन दिन बाद 8 महीने का होगा. Right. और सबसे ऐसी चीज जो उसको पसंद नहीं है. That's true. कौन सी ऐसी चीज जो पसंद नहीं उन्हें?
3: मैं उसको जो डांटती हूँ या कभी गुस्सा करती हूँ, जब वो बात नहीं सुनता तो वो कहता कि you डांटी टू मी, I'm very sad.
0: That's so cute. Well, thank you so much आपके कॉल के लिए. You also have a wonderful day. आपका भी नाम हम ड्रॉ में शामिल करते हैं. Thank you. You have a lovely day.
3: पर आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं.
0: मैं सोचा, but then I was like, क्या बता दीजिए. Sorry, my bad. क्या नाम है आपका? वैसे
3: ड्रॉ में नाम डालोगे तो
0: मैंने आपके बेटे का, हाँ मैंने आर्यन का डाल दिया था. बट आप बताइए अपना नाम क्या है?
3: मेरा नाम पायल है.
0: पायल, do I know पायल?
3: Yes.
0: No.
3: I don't know.
0: No. मैं जिसको नहीं, I don't think so.
3: कॉल किया हम आपसे, पहले मैं बहुत करती थी, अभी मैंने बहुत टाइम बाद कॉल किया.
0: राइट, देखिए अभी आपने आज फोन किया और
3: राइट थिंग्स में अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया करना.
0: राइट देखिए आपने कॉल किया इतने टाइम बाद और आपका फोन पिक भी हो गया और ड्रॉ में भी शामिल हो गया. आप बस फिंगर क्रॉस करो कि आर्यन के लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट लेके आए आप इस जीती हुई राशि से. परफेक्ट. थैंक यू. बाय.
4: लंच बॉक्स विद केतन.
5: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
6: We gotta go. Are you ready?
7: Come and take a trip with me.
8: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
9: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
10: Let's go.
9: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
11: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
12: Bunnings Warehouse.
11: Lowest prices are just the beginning.
13: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
14: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
15: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोगांव. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind knowing they'll be safe, secure, and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे हम टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक। चलिए लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। ऑकलैंड के मनोरेवा में एक सीरियस क्रैश में 27 साल की एक लड़की की डेथ हो गई है। पुलिस ने वुमेन की आइडेंटिटी मोनिक मैरी जेनिफर ले ओटारा की रेसिडेंट है उनके रूप में कंफर्म की है। इंसिडेंट 27 अगस्त की रात एल्फिनस्टन रोड पर हुई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग जिस व्हीकल में मोनिक ट्रैवल कर रही थी वो एक स्टोलन कार थी जो एक एग्रेवेटेड रॉबरी के बाद चोरी की गई थी। पुलिस ने व्हीकल को रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर हाई स्पीड पर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद स्टोलन व्हीकल की एक दूसरी कार से हेड ऑन कोलिजन हुआ और मोनिक की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। वैसे वाइल दूसरी कार के ड्राइवर भी काफ़ी इंजर्ड हुए और हॉस्पिटल के लिए भी ले जाए गए हैं। वैसे पुलिस ने इस इंसिडेंट को क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन पे रखा है ताकि क्रैश की एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस का भी पता लगाया जा सके।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स की। वेल यस, काफ़ी मज़ेदार रहा है। अभी कुछ नई चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। कुछ अगर नए मैचेस हैं, एशिया कप भी शुरू हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड ऑफ कोर्स अदर एशियन कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, मैनी वुमेंस क्रिकेट टीम इसमें पार्ट ले रही है। अभी हाल फिलहाल देखें तो वुमेन फिक्चर की भी वो देख लेते हैं। इंडिया ने वैसे आगाज़ बहुत ही बढ़िया किया है। रिज़ल्ट के हिसाब से अगर देखें तो बांग्लादेश इंडोनेशिया के बीच में मैच हुआ था, T20 हो रहा है ये, जिसमें बांग्लादेश ने इंडोनेशिया को 71 रन से हराया था। आज के ही मैच की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद और भी अलग अलग मैसेजेस हुए थे, मैचेस हुए थे। एंड यस, आज के अगर मैच की अगर बात करें तो आज के दिन एक और मैच है, स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड। ये मैच है बट ये एशियन टूर्नामेंट में नहीं है। ये बेसिकली नीदरलैंड्स वुमेन टूर ऑफ स्कॉटलैंड थर्ड ODI होने वाला है, तो इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे अगर एशिया कप की अगर बात करें तो कल दूसरा मैच होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस थाईलैंड, इसके बीच में होने वाला है, तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं।
1: मुझे पसंद है लड़का। Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी, ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.

0: अरे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स With Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
6: इसके पीछे
3: हम TikTok
7: टिकटॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बेसिकली बातें करते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे रिलीज हुई है या फिर चल रही है। वैसे टेक्नोलॉजी से याद आया, मैं अप्रिशिएट नहीं करना चाहता इस चीज को ऑब्वियसली, क्योंकि काफी लोगों की जॉब जाने वाली है। जैसा कि सैंडी ने सबको बता दिया है, मेरी पोल खोल दी है कि मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ। सो या मेरे को लगता है सैंडी को भी इंक्लूड कर देना चाहिए।
8: या हाय कितन,
7: हाय हाय, क्या हाल है, कैसे हो?
8: बढ़िया बढ़िया,
7: क्या चल रहा है?
8: बस अभी तो मैं ना चैट जीपीटी ना इंटरनेट कुछ नहीं, अभी तो मैं पेन और पेपर के साथ हूँ।
7: बिल पे नहीं है क्या?
8: नहीं, बेसिक्स पे आ चुकी हूँ मैं, बेसिक्स पे। हैंडराइटिंग नहीं, हैंडराइटिंग भूल रही है मुझे आज।
7: अच्छा,
8: लेकिन इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। व्हाई मैं दिखा नहीं सकती। व्हाई
7: मैं देखना चाहता हूँ आपकी हैंडराइटिंग कैसी है।
8: मैं दूर से ऐसे दिखाती हूँ तुम्हें हैंडराइटिंग कैसी है,
7: लेकिन देखना है। अरे आप आरजे क्यों हो?
8: डॉक्टर होना चाहिए ना। I know.
7: नहीं नहीं, बहुत यार, मेरे से तो बहुत अच्छी है।
8: So,
7: मतलब मुझे डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे, तुम धरती पे क्यों हो? ऐसा बोलेंगे।
8: ये मैं क्यों लिख रही हूँ आज, मैं पेन और पेपर के साथ यहाँ पे क्यों लगी हुई हूँ? इसका खुलासा होगा 3 बजे के बाद।
7: क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है क्या?
8: नहीं नहीं, ये बताने वाली हूँ मैं 3 बजे के बाद की ये, और मैं कब से लिख रही हूँ। Yeah, I'm writing something and बाहर उसमें भी लिख रहा है।
7: क्या लिख क्या रहे? क्या कुछ आइडिया तो दो, हिंट तो दो हमें के।
8: बस हमारे पास पेन है।
7: हमारे भी लिसनर हैं, वो भी डिजर्व करते हैं।
8: तो उन्हीं को तो बोल रही होगी सुनना मुझे भी।
7: नहीं नहीं, बट कुछ तो बताओ कि क्या है क्या नहीं है।
8: ज्यादा नहीं बोल
7: सकते ना अभी। हाँ, क्या लिख रहे हो?
8: पेन है, पेपर है, एंड वी आर राइटिंग समथिंग एंड जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। या एंड हम टाइप नहीं कर रहे कहीं पे, हम लिख रहे हैं।
7: लिख रहे हैं।
8: या एंड व्हाई वी डूइंग दिस यू विल गेट टू नो।
7: राइट,
8: एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट।
7: ओके, सो लिसनर जो भी आप हमें सुन रहे हैं, दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग एक्चुअली। और
8: अभी तो केतन को भी हो गया, मेरे को भी रुकना पड़ेगा क्या?
7: मैं सोच रहा हूँ यहाँ कोई और पिक कर सकता है क्या? नहीं यार, बट मतलब हाँ, थोड़ा सोचने में तो मजबूर कर ही दिया आपने कि यार क्या हो सकता है। वैसे ये आपको जल्दी पता पड़ेगा, 3 बजे टिकटॉक तो हो नहीं पाया, बट ये आप इसका वेट करिए।
8: आज टेक्नोलॉजी के उल्टा हो गया।
7: हाँ, उल्टा नहीं, ये टेक्नोलॉजी हाँ उल्टा है, रिवर्स में चलेगा ना।
8: दैट्स
7: सो कूल यार, दैट्स सो कूल।
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: नई आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: That's all for today. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आपका साथ। आप बस बने रहिए, सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक। और उस लिखावट की पोल खोलने भी वो आएंगे कि क्यों लिख रहे हैं, क्या रीजन की वजह से लिख रहे हैं। बट यस, मेक श्योर दैट आप अपने डैड की फोटो लेके बहुत ही बढ़िया एआई से जनरेटेड उनको सुपर हीरो बना दीजिए और सोशल मीडिया पे जाके हमारे फेसबुक पे उन्हें टैग कर दीजिए, बिकॉज बहुत ही बढ़िया आपका चांस है जहां पे आप $300 कैश जीत सकते हैं। तब तक एंजॉय करिए दोस्ती वाला गाना, बहुत ही खूबसूरत है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह, कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
7: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Auckland's Rosmini College is working with health officials after a student contracted meningococcal disease. The Takapuna School is investigating any link with a prior suspected case notified in July. Close contacts are being identified and offered treatment and support. The wait for free flu jabs for kids is over, less than a week after it began. Children aged 6 months to 5 years are now eligible. It follows a letter from the Royal College of GPs calling for next year's planned rollout to be moved forward. Health Minister Simeon Brown says they met with Pharmac on the weekend.
9: That is the type of collaboration that we need in our health system, and ultimately it's a good result for children and parents.
8: Te Pāti Māori has laid out its bottom line for coalition deals. It wants to entrench the Treaty of Waitangi into lawmaking, including setting up an independent commission to investigate and enforce Crown compliance. A significant sculpture has been stolen from Whangarei. The 1.4 metre high piece, called Te Oru Toru, is wooden and inlaid with glass birds. Police say it was removed from the Hanawasa Arts Centre last Monday morning. The alleged offender appears to have fled on bike. To sport, Netball New Zealand has confirmed today that it is formally backing the bid by Anna Mowbray and Ali Williams to establish a private franchise league. There is a commitment to a minimum 5-team competition next year. And black cap Glenn Phillips made his presence felt in the Caribbean Premier League cricket this afternoon. Never mind his fourth ball duck, he pulled off a sensational one-handed boundary catch as his Guyana Amazon Warriors beat the Knight Riders by 9 runs.
7: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
10: Weather ka hal bahut hi lovely and beautiful aaj ka din hai. And not just because ki main coffee break join kar raha hu, uske liye nahi, aise hi weather bahut beautiful hai. Southwesterly is strong rahegi at times. 6:01 ko aaj hoga sunset, feels like 15 right now. Overnight is going to be as low as 12 degrees.
7: The beat of Bollywood,
11: world's best hamari good brands mein
7: hai. Coffee break with Sandy, The Drive Show with Sandy and Rizvi.
12: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
10: 1st of September, good afternoon. Coffee break mein swagat hai aapka. Hi Sandy, good afternoon.
13: Good afternoon, Rizvi. Officially spring mein, like according to NZ,
10: आज एक बार राउंड मारना पड़ेगा अपने को, देखना पड़ेगा ना
13: कि बाहर कैसा है,
10: बाहर स्प्रिंग कैसा है, इज इट स्प्रिंग इनफ।
13: जब आए थे तब तो अच्छी खासी धूप थी,
10: एक्चुअली आज बारिश होने वाली थी बट नहीं हुई ना बारिश,
13: नहीं बारिश नहीं हुई है बट इट इज बिट विंडी एज वेल। बट या तुम्हारा डे कैसा जा रहा है?
10: मेरा डे बहुत बढ़िया जा रहा है सैंडी।
13: और आज केतन के साथ मैं ऑन एयर गई थी लंच बॉक्स में एंड आई वाज राइटिंग समथिंग, तो केतन ने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है ये वो, तो मैंने बोला कि देयर इज समथिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, रुजबे इज राइटिंग समथिंग, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं।
10: अच्छा,
13: वी आर गोना रिवील दिस थोड़ी देर में कि हम ये राइटिंग क्यों कर रहे हैं और कैसे हमारे लिसनर्स जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं।
10: ठीक है, तो अभी बता दे कि थोड़े टाइम में बताएं,
13: टाइम में बताएंगे ना।
10: अगर आप तब तक गेस यहाँ पे करना चाहते हो तो ड्राइव कीवर्ड के साथ 5599 पे मैसेज कीजिए।
13: व्हाई यू थिंक रुजबे इज लाइक राइटिंग टुडे,
10: रुजबे एंड सैंडी आल्सो ना,
13: या एंड मी आल्सो, वी आर राइटिंग, हमारी डायरी है उसमें हम लिख रहे हैं पेन के साथ, टाइप नहीं कर रहे हैं। और ये करते समय मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिस्टेक होती है, तो यू कैन नॉट डू बैक स्पेस,
10: अरे एंड
13: यू हैव टू कट इट।
10: मोर देन दैट सैंडी, हाथ दुखने लगते हैं यार थोड़े टाइम में, लाइक दो तीन पेजेस के बाद तो हाथ दुखने लगते हैं।
13: मैं अपनी हैंडराइटिंग भूल गई थी,
10: मुझे डिटेंशन सेंटर याद आ गया मेरा हमारे यहाँ पे होता था ऐसे, हमको लिखना पड़ता था कि आई विल नॉट टॉक इन क्लास, ऐसा लिखते जाओ पूरी बुक भरते जाओ।
13: मेरा भी होता था, पनिशमेंट जो आपको मिलती थी।
10: मुझे अभी लगता है कि कितना वेस्ट ऑफ पेपर और वेस्ट ऑफ इंक किया ना उन्होंने हमको ये लिखाया,
13: टाइम ही चेंज हो गया,
10: फिर भी हम नहीं सुधरे।

0: धुरंधर का ये गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट सेज ड्राइव शो आपके लिए जारी, मतलब शुरू हो गया अभी, कॉफी ब्रेक क्या ही होगा.
1: 3:09 हो चुके हैं. सो अभी बताने का वक्त आ चुका है कि हम अपनी डायरी में क्यों लिख रहे थे, पेन पे

0: एंड इसमें हम आपको भी अर्ज करना चाहते हैं
1: कि आप भी लिखिए, आज लेटर लिखिए,
0: लेटर लिखिए,
1: आज आप लेटर लिखिए। और आपको पता तो होगा ही है कि आपके दोस्त कहाँ पे रहते हैं, तो कोई दोस्त सेलेक्ट कीजिए, उसके लेटर बॉक्स में डाल जाके ये लेटर को आज आप डाल के, ये हैंड रिटन लेटर को, नॉट प्रिंटेड।
0: आपका विजन, मोटर कंट्रोल, लैंग्वेज, मेमोरी, हर एक चीज साथ में कंपाइल होती है उसमें।
1: और मुझे लगता है कि जब हम हाथ से लिखते हैं ना, किसी को कोई नोट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो हमारे रियल इमोशंस उसमें जाते हैं। What you feel, you write.
0: That's right. It's a very, आपने अभी experience किया ना उसको लिखने का, difficult है लिखना तो।
1: Difficult है यार, मतलब hand, वो जैसे मैं बोल रही थी कि backspace नहीं कर सकते, आपको काटना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है कि वो movies में ऐसे चिट्ठियाँ गोल गोल करके ऐसे नीचे फेंकी होती थी,
0: क्यों फेंकते थे
1: ना? एक गलत लिख दिया तो पूरे का पूरा पेज फाड़ के ऐसे कर दिया, ऐसा लगता कि यार बड़ा ड्रामेटिक सीन है, बट नहीं, रियल है वो।
0: और प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? अभी लॉट ऑफ टाइम्स ना, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बैक स्पेस और कटिंग इट ऑफ। कट ऑफ कर सकते हो, लेकिन जब आप सोच वो कट कर रहे हो, आप सोच रहे हो अरे सामने वाला क्या सोचेगा कि मैंने यहाँ पे ये क्या मिस्टेक कर ली, कि मैंने ये क्या सोच के ये लिखा और मैंने फिर उसको कट किया, यू नो, लाइक दोस थिंग्स आल्सो कम इनटू योर माइंड ना।
1: सो इतना हम टाइपिंग करते समय नहीं सोचते हैं, तो आज ये ट्राई करो गाइज। मैं और रुजबे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, रुजबे गोना पोस्ट अ लेटर टुडे, आई एम गोना पोस्ट अ लेटर, मतलब लिटरली हम वहाँ पे जाके घर के बाहर जाके पोस्ट बॉक्स में डालने वाले हैं,
0: क्योंकि यहाँ के पोस्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते ज्यादा टाइम,
1: बिकॉज आज लेटर डे है तो वो किसी और दिन पहुंचेगी।
0: आज तो नहीं पहुंचेगी, आई एम नॉट डिसिंग दैट, लाइक इट इज वेरी गुड, यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन हमें
1: इट्स अ टाइमिंग वी आर टॉकिंग अबाउट
0: एंड मनी आल्सो।
1: Oh yeah.
0: महंगा है यार पोस्ट करना। ऑकलैंड ही ऑकलैंड में पोस्ट करने का कितना खर्चा है?
1: I don't know अभी।
0: देखो आप दोनों महंगा होगा।
1: केतन को पता होगा ये?
0: केतन को पता है क्या? नहीं, केतन के मुंह में कुछ खाना है अभी।
1: ओके, केतन को भी नहीं पता है।
0: इतना कैसे ठूस लिया भाई? मतलब मालूम तेरे घर वाले आए यहाँ पे अभी, उसका मतलब ऐसा है कि
1: ऐसा खाना बन रहा है।
0: अच्छा ठीक है,
1: इतना
0: एनीवे तो आप भी यहाँ पे हमें कॉल करके बताइए कि हैव यू एक्चुअली एवर हैंड रिटन अ लेटर फॉर एनीवन, एवर क्या आपने कभी हैंड रिटन लेटर किसी के लिए लिखा है?
1: और अगर नहीं लिखा है तो आज टाइम है लिखने का, और अगर लिखा भी है, टुडे इज अ टाइम टू रिवाइव इट ना।
2: कहानियां बहुत लिखी है हैंड से। उस टाइम कहा, हमारे घर पे कंप्यूटर था नहीं, तो ऑब्वियसली, बट मैं
0: कितने साल पहले की बात है ये
2: देखो, मेरा पहला कंप्यूटर जो आया था वो आया था व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। तो उससे पहले मैं हाथ से ही लिखा करता था।
0: अच्छा,
2: कहानियां ये सब, दैट्स व्हाई यू नो आई एम इनटू दिस क्रिएटिव, कहानियां लिखना ये सब करना। तो खुद तब से व्लॉगिंग लिखता था कि हर दिन मेरा क्या हो रहा है, आज क्या किया,
0: जर्नलिंग करता था
2: खुद के लिए, नॉट टू शेयर विद एनीवन, और पर्सनल, लाइक एक्सट्रीम पर्सनल वाली बातें भी मैं वहां लिखता था। जो गलती से एक दिन मेरी दीदी ने पकड़ लिया था, और दीदी ने इतना इंटरेस्टिंग देखा कि दीदी ने अपनी सास बहू का सीरियल का जो डेली एपिसोड था ना, उसको छोड़ के मेरा लेटर पढ़ रही थी सारे। मतलब वही जो उस टाइम पे बचपन में
1: लिखी ना, तो डायरी
2: लिखी, डायरी के थ्रू दीदी को फाइनली पता पड़ रहा है कि मेरे भाई के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है।
0: इट्स वेरी रिस्की ना,
2: और मेरी ऐसे पसीने छूटा था, दीदी को सब पता पड़ गया।
0: और फिर उसके बाद क्या हुआ?
2: बस पढ़े मेरे को थोड़े बहुत।
0: सीरियसली क्यों
2: यार? नहीं था अलाउड, लाइक यू नो किसी पे क्रश होना, ये सारी चीजें।
0: ओ वो सब लिखा था,
2: तो बोला ना मैंने एक्सट्रीम चीजें लिख रखी थी पर्सनल, जो किसी का शेयर नहीं करना चाहता था। बट
0: लेकिन फिर मतलब उसके बाद फिर तूने कभी लिखा नहीं होगा? फिर
2: मैं लिखा ना उसके बाद, फिर मैंने वो जॉनर चेंज कर दिया,
1: और मैं भी छुपाने का वो भी आ गया,
2: फिक्शनल पे चला गया।
0: अच्छा, कि मेरी कहानी नहीं है, किसी और की कहानी है,
2: बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड
0: बाय ट्रू इवेंट्स। राइट,
1: सही है।
0: एक मिनट, हम इनसे भी बात करते हैं। हाय
3: हाय रुजबे, हेलो सैंडी, हाय चेतन, कैसे हो आप लोग?
1: हाय सपना, बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया है,
3: सब ठीक है, सब ठीक है। अब मैंने लिखा है लेटर, बहुत लिखे हैं बचपन में, तो वो भाइयों को, बहनों को राखी पे भी लेटर लिख के भेजते थे।
1: ओह वाओ।
3: और उसके बाद रोशनी जब दुबई में

0: नर्सरी में थी, किंडी में थी, सब हमको एक असाइनमेंट आया था कि सेंड अ लेटर फॉर योर किड. तो लास्ट लेटर आई थिंक वो लिखा था 2013-14.
1: मतलब आपकी आपकी लड़की थी किंडी में और होमवर्क आपको दे रहे थे.
0: हाँ, वो उस टाइम पे ताकि कनेक्शन बिठा सके और ऐसे कुछ बच्चे को पढ़ाने के लिए और ऐसा कुछ, तो वो होती रहती है ना एक्टिविटीज किंडी में.
2: एक्टिविटीज होती रहती है ऐसी.
0: हाँ,
2: सही है.
0: तो रोशनी ने भी लिखा.
1: रोशनी ने भी लिखा है. किसके लिए लिखा रोशनी? बाद में बोलना, अब मम्मी के सामने मत बोलना.
0: नहीं नहीं, वो बोल लेगी.
3: घर में पकड़े भी गए तो भी नहीं पहचान पाए.
1: हाँ, सपना आपको आता है क्या अरबिक पढ़ना?
0: नहीं नहीं, आपको आती है. मेरे
1: हस्बैंड को आती है, फंस जाएगी.
0: और टीचर टीचर को भी, वो ट्यूशन पढ़ती थी ना अरबिक की, तो उनको भी आती थी.
2: ओके,
1: पर टीचर को थोड़ी बताएगी वो लेटर.
0: वो टीचर चेक करेगी ना, कुछ गलत लिखा हो तो.
1: देखो सपना, मैंने एक चीज रियलाइज की है रिसेंटली, कि हम चाहे जितना भी समझे कि हम शातिर है, मुझे लगता है हमारे बच्चे हमारे से आगे ही होते हैं.
2: ऑफ कोर्स,
0: वो अपने ऊपर है ना रूस में.
1: अच्छा,
0: अपन ने उनको कितना यू नो फ्रीडम दिया है.
1: अच्छा, ऐसा भी है. नाइस नाइस
2: नाइस, गुड.
0: यू गेट टू नो.
1: या होपफुली वन डे.
0: और एक और क्वेश्चन था,
1: तो और क्या बोल सकते हैं. होपफुली वन डे
0: डेफिनेटली. सैंडी, रूस पे एक क्वेश्चन था आप लोगों से.
1: पूछो ना.
0: पूछो रोशनी.
4: मुझे रात पे रेडियो में था और मेरे रेडियो पे हम एफएफटी चल रहा. तो आप लोगों को एएम पे क्या, कौन सा होता है?
1: एएम पे नहीं होता है हमारा.
2: एएम पे नहीं है, एफएम पे ही है.
1: और रोशनी, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, तुम जेन अल्फा हो ना?
0: जी.
1: तो जेन जी हो ना, तुम डिजिटल सुनो यार. ये ट्रांसमीटर पे मत सुनो यार.
2: रोवा,
4: मेरे पास स्पॉटिफाई या यूट्यूब या कुछ है नहीं, फोन भी नहीं है.
1: रोवा
4: ऐप रेडियो लिया.
1: अच्छा, आपने स्पेशली स्पेशली आपने हमारे लिए लिया. अरे यार, ये बहुत सैड हो गया.
2: तो एफएम है वहाँ पे 104.2 एफएम.
1: नहीं आएगा वो. हाँ, वही ना.
2: नो,
1: या वी नो द फीलिंग.
2: या
1: हम क्या करें.
0: चलो, कोई बात नहीं.
1: Sorry, yeah.
0: Anyway,
2: yeah.
0: No problem.
2: No worries. Thank you so much, Roshni. Thank you, Sapna.
1: Thanks.
0: Thank you.
1: Ek message aaya yahan pe. I was writing letter to my wife when she was schooling. That time phones was not allowed for her. Amit ne ye message bheja. Amit, thank you so much yaar for your message. आप भी यहाँ पे बता सकते हो हमें आपने लास्ट लेटर कब लिखा है. और आज हम लेटर लिखने वाले हैं. And we are going to go through it. And we are going to share it. On our social media as well. And then
2: हम वीडियो पूरी शेयर करेंगे कि हम लेटर जाके एक्चुअल में पोस्ट बॉक्स में जाके डाल रहे हैं.
1: एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, तो आप भी वो कर सकते हो और हमें मैसेज कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग भी कर सकते हो, अगर आप भी उसकी स्टोरी बनाते हो या कुछ करते हो. यू कैन टैग अस ऑल्सो इन दे एंड वील री शेयर इट एज वेल. सो या लेट्स राइट सम लेटर्स टूडे ऑन वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे. केतन भी लिखने वाला है अभी.
2: केतन भी लिखने वाला है. ही इज इंस्पायर्ड एज वेल.
1: रुका हूं मैं.
2: अच्छा, हां नहीं बोला. हां ना, कुछ तो बोलो.
3: डेफिनेटली यार, डेफिनेटली
1: डेफिनेटली डेफिनेटली.
3: अभी तो वो कहते हैं ना कि चिंगारी अगर हो गई है तो डेफिनेटली लिखना ही पड़ेगा.
1: लिखना ही पड़ेगा,
3: मतलब.
1: हाँ, बोलना
2: बोलना. नॉट पड़ेगा,
1: बोलना बोलना.
2: ये कहना था ना तुम्हें.
3: नहीं, मतलब दिल से आ रहा है. ऐसा नहीं कि तुमने बोला इसलिए, बट इट इज गुड इनिशिएटिव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट.
2: आजकल ये रियलाइज करना शुरू हो चुका है ना.
1: वो जब बढ़ती है ना घर पे तो ऐसे ही होता है.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
3: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. T's and exclusions apply.
4: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
5: Achha,
4: batao, tuhanda focus, saada kuch nahi.
5: Mrs. Singh.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट K 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: माहौल बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.
2: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits drive show. आज जल्दी शुरू हो गया है आपके लिए. And यहाँ पे हम लोग अभी तैयार हो गए हैं लेटर लिखने के लिए, because today is World Letter Writing Day. और ऐसे मौके पे we have challenged each other that we are going to write a letter.
3: Yeah, हम किसी को लिखने वाले हैं लेटर. बट उससे पहले वैसे बताए रुजबे, आज से ना न्यूजीलैंड फ्लू वैक्सीन जो है इज फ्री फॉर अंडर फाइव्स.
2: ओ, आज से शुरू हो गया वो.
3: आज से शुरू है. सो मेजर चेंज है कि वी फैमिलीज के लिए फ्लू वैक्सीन आर नाउ फंडेड फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 months अप टू देयर 5th बर्थडे, इफेक्टिव 1st September, यानी कि आज से. सो मोर देन 260,000 चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बिकम एलिजिबल इस चीज के लिए. सो पब्लिक फीडबैक काफी हुआ था इसके ऊपर. सो आफ्टर पब्लिक फीडबैक जो है इसको फ्री कर दिया गया.
2: बट अभी सही टाइम हुआ क्या वैक्सीन लेने का?
3: I don't know.
2: क्योंकि अभी तो यूजुअली लाइक अभी समर, मतलब अभी वी आर गोना गेट इनटू समर ना.
3: नहीं, इट्स लाइक फंडेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स.
2: So
3: आज से जो डेट इफेक्टिव है वो आज से हो चुकी है.
2: राइट. सो अभी नेक्स्ट विंटर में वो अंडर 5 को फ्री में मिलेगा.
3: जब फ्लू वैक्सीन करनी होगी तो उसके लिए ये देन वैलिड है.
2: दैट्स गुड.
3: सो या क्योंकि इसके ऊपर ये डिस्कशन हुई थी, जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला था कि करंटली क्या हो रहा है कि अगर किसी घर पे इवन एक बच्चा बीमार होता है देन होल फैमिली गेट सिक. तो इसका इफेक्ट सिर्फ बच्चे की स्कूलिंग के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट फैमिली की जो वर्क लाइफ है उसके ऊपर भी पड़ रहा है.
2: दैट्स राइट. या
3: सो दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइटेड पॉइंट एज वेल.
2: या दैट इज देयर. बट अभी ऑनेस्टली मैंने तो लिया था ये बार वैक्सीन, फिर भी मैं तो बीमार हुआ ही हूं.
3: या तुमने लिया था इस बार वैक्सीन?
2: इनफैक्ट ज्यादा बीमार हुआ मैं ये बार लेने के बाद.
3: इनफैक्ट मुझे ये सवाल पूछना है लिसनर से कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपने अपने बच्चों के लिए इस साल में कितनी सिक लीव्स ली है? बिकॉज यू कैन टेक लीव्स, सिक लीव फॉर योर किड. अपने बच्चे के लिए आप ले सकते हो. सो आपने अगर अपने बच्चों के लिए सिक लीव्स ली है इस साल में, कितनी सिक लीव्स आपने कंज्यूम की है इन दिस ईयर?
2: आपने कितने लिए सिक लीव?
3: मैंने नेफ्यू के लिए एक ली है.
2: एक सिक लीव लिया आपने?
3: या सो आप भी बताइए यहाँ पे कि आपने, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आपने कितनी सिक लीव्स यहाँ पे कंज्यूम की है. 5599 पर

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

0: go home, yeah, rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Mirzapur ki gaddi pe jo baithega, wahi hoga sabse bada bahubali.
3: Bhokal ke liye tayyar ho jaiye. Bade parde par Mirzapur the Movie starring Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Divendu and Jitendra Kumar.
4: Hame empire chalana nahi hai guddu bhaiya. बनाना है
3: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th सितंबर
5: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
6: Big saves overstocked yes massively overstocked with whiteware and it all has to go need a new washing machine dryer fridge or dishwasher today We've got huge whiteware deals like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge only $9.99. Get New Zealand's best whiteware today. Stock is limited only at Big Save.

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: थ्रोबैक में आपके लिए एक मस्त गाना लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले सैंडी ने यहाँ पे सवाल पूछा आपको कि इस साल आपने आपके बच्चों के लिए कितने सिक लीव लिए। और यहाँ पे 12 ऑलरेडी एक मैसेज आया है,
2: एक ने तो ऑलरेडी 12 लीव्स ले लिया। अंतप्रीत ने बोला है 0। वाह,
1: वो बिजनेस ओनर है ना।
2: या तो उनको आप देखो अंतप्रीत, आप इसमें कैसे फिर सिक लीव लोगे? सो आप ही के बिजनेस को जाएगा। तो या आप भी बता सकते हैं यहाँ पे 5599 इज द नंबर। एंड ऑल्सो बता दूँ कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि आज आपके लिए है। फादर्स डे का कॉम्पिटिशन है, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर जाइएगा, वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हमने ऑलरेडी शुरू किया है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो AI अपग्रेड डैड की फ़ोटो आपको वहाँ पे डालनी है। वो कैसे करना है आपको? अपने डैड को आप कैसे पिक्चराइज करते हैं एज अ सुपर हीरो, यू नो, उनके हाथ में ऐसी चीज़ें हैं जो वो काम करते हैं, मल्टीपल जॉब्स जो करते हैं, वो आप दिखाना चाहते हो, किस वजह से दिखाना चाहते हो? आयरन मैन दिखाना चाहते हो अपने डैड को, आप सुपरमैन दिखाना चाहते हो या बैटमैन दिखाना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर है। आपको करना क्या है, जो भी AI आप यूज़ करते हो, चाहे वो ChatGPT है, चाहे वो Gemini है, Claude है, कुछ भी है, वहाँ पे जाके आपको प्रॉम्प्ट देना है कि ये मेरे डैड की फ़ोटो है, अपने डैड की फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट कीजिए और मैं अपने डैड को एज अ सुपर हीरो यू वांट टू शो, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी। तो बेसिकली ऐसा एक आपको प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना है एंड एंटर, एंड देन यू विल गेट अ इमेज। तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट कि आप क्या क्या चीजें इसमें
1: इंग्लिश में आप बस डिस्क्राइब कर सकते हो। AI इतना स्मार्ट है, वो सब पकड़ लेता है,
2: सब कुछ वो पकड़ लेगा। तो रिमेंबर, आपको उसको बोलना है कि ऐसी एक इमेज आपको क्रिएट करनी है, फोटो क्रिएट करनी है। सो इससे होगा क्या, आप यहाँ पे जी सकते हैं कैश प्राइज, आप यहाँ पे जी सकते हैं अपने डैड के लिए। तो दिस फादर्स डे यू कैन बाय समथिंग ऑसम उनके लिए।
1: $300 कैश जीतने का मौका आपको मिल रहा है, $300 आपके नाम हो सकते हैं। तो अपने डैड के लिए कुछ आप बढ़िया सा खरीद भी सकते हैं उससे। तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए इस कंपटीशन में। एंड अगर आप फादर है, अगर आप एक डैड है, आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे 4 बजे के बाद। यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट या पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, जहाँ पे हम आपको ग्रिल करेंगे थोड़ा। तो वो बस ग्रिल करेंगे, उसके लिए $500 आपको देंगे रिटर्न में, और क्या चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको
2: कोई सवाल आपसे पूछेंगे बस
1: 4 बजे के बाद, लेकिन वो मौका मिलेगा आपको पार्टिसिपेट करने का। एंड आज है ट्यूसडे। सैंडी, व्हाट इज एक्साइटिंग ऑन ट्यूसडे?
2: इट इज करेक्टर गेस टुडे गाइस। करेक्टर गेस में आज मैं आपको एक करेक्टर के हिंट देने वाली हूँ और आपको गेस करना होगा रुजबे के साथ मिलके कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड लेट्स सी, होमवर्क करना पड़ेगा उसके लिए।
1: 5 बजे के बाद होता है आपके लिए वो गेम। एंड इफ यू थिंक कि अरे यार मेरा काम खत्म हो जाए, मतलब मेरा ड्राइव खत्म हो जाएगा वो टाइम तक, तो इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, यू कैन एक्चुअली प्ले अलोंग विथ अस। आप अपने घर पे काम करते करते रेडियो पे सुन सकते हैं रोवा ऐप के जरिए। एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट बिकॉज इट गेट काइंड ऑफ गेट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड वेरी।
2: इट डज। सो रोवा ऐप है, उसके जरिए जरूर सुनेगा हमें एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लेट्स सी कि आज का जो करेक्टर है, अगर आप मुझे कोई बताना चाहते हैं करेक्टर तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।
1: ओह या, इंस्टा पे।
2: सो गो ऑन माय इंस्टा हैंडल सैंडी सेखो, SANDYSEKHON, वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए कि आप इस करेक्टर के बारे में आज पूछ सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 14 degrees overnight is going to be as low as 12. Southwesterly strong at times or isolated showers ho sakte hai, lekin all in all quite beautiful today. 6:01 pe hoga sunset. Kal ka din mila jula sa rahega with a high of 17. Tomorrow's overnight is 11.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 4:03 and Super Se Upar aapke liye shuru ho gaya hai abhi. Hi Sandy, how's it going?
4: Hi Rusbe. Yeah, 1st September, a very, very good afternoon to you. Headline abhi aayi hai, maine abhi dekha, NZ hospitality crisis ke baare mein, ki nearly 3,000 businesses shut in a year.
1: 3,000 businesses?
4: 3,000. Wow. So nearly, so 2,900 hospitality businesses stopped trading over the past 12 months, which is increase of almost 40% year on year. And 422 hospitality companies jo hai, ye liquidation mein gayi, up by 42% pichle saal se. Restaurant liquidations increase hue 43%. Takeaway food service liquidations jump hui 143%. Cafe liquidations 27% zyada hui. And yeah, this is wow, the big issue is people spending less on hospitality.
1: Right, that is crazy. Yeah,
4: it's also about high food, you know, wages, energy, compliance cons, cost and all that.
1: Right.
4: So काफी चीजें आती हैं इसमें.
1: ये सब चीजों के अराउंड मुझे लग रहा है सवाल अभी उठने चाहिए.
4: Right time है, right time पे ये रिपोर्ट आई है.
1: Yeah, with what's happening, what's the plan ahead? मैंने कहीं तो भी देखा कि एक act party जो है उन्होंने एक proposal डाला है कि वो बोल रहे हैं कि permanent residence visa को निकाल दो.
4: Something on the similar note.
1: So basically,
4: note.
1: वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी ऐसा रूल है ना कि एक बार तुम permanent resident हो गए, उसके बाद तुम जहाँ पे भी जाके रहो, कोई problem नहीं है, तुम्हारी residency तो वैसी की वैसी है.
4: You'll get all the benefits. Once you qualify for it.
1: Yeah, you'll get all the benefits of a citizen, mostly. तो उसमें they are trying to bring a change. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर दो साल में तुम्हें कुछ time यहाँ पे बिताना पड़ेगा.
4: So basically उनके कुछ टाइट रूल्स वो करना चाहते हैं फॉर नॉन सिटीजंस,
1: फॉर परमानेंट रेजिडेंस. मुझे लगता है इट्स फेयर, इट्स क्वाइट फेयर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेकर आप कहीं और जाके रह रहे हो, फिर
4: यहाँ पे रह नहीं रहे हो तो,
1: और फिर यहाँ के भी बेनिफिट्स उठा रहे हो, तो वो गलत है ना फिर.
4: या
1: बेसिकली यू कैन बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ यू आर स्टेइंग देयर. So I think I am for it. But what is your take on it? 0800-004-866 number hai.
4: So basically this is about ki jo permanent residency ho jati hai, ek to residency hai aur uske baad hota hai permanent residency. Residency ke baad aapko kuch time required hota hai to get the 2 saal days proper aapko complete karne hote hai, non stop bhi beech mein aapko travel nahi karna hota, fir aapko agar travel karna hai, there are lot of conditions, then you get PR, permanent residency. And permanent residency के बाद you can travel anywhere, and ये कितना भी देर तक आप रह सकते हैं.
1: Indefinite है वो. Yeah.
4: तो अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए.
1: वो निकाल
4: अगर वो ऐसा करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर वापस नहीं आते हैं तो कैंसिल हो जानी चाहिए.
1: Yeah, and I think I'm for it. Yeah, because right now what we are struggling with is all these businesses shutting down and all.
4: Yeah,
1: के लोग निकल के जा रहे हैं ना यहाँ से.
4: It does make a point though, मतलब valid point है ये.
1: Yeah. Anyway, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, अगर आप शेयर करना चाहो तो आपको नंबर पता है यहाँ का 0800-004-866 या 5599 पे आप मैसेज कर सकते हो हमें यहाँ पे.
4: कॉल करो या फिर शेयर करो कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है, कि आपको क्या लगता है कि एक्ट पार्टी ने जो प्रपोजल आगे रखा है क्या वो सही है या फिर नहीं.

0: Vanuatu.
1: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
6: It's spring season at Freedom. Get 20 to 50% off all sofas. That's all fabric and leather sofas, modulars and armchairs, 20 to 50% off. Hari Sale and Sunday, only at Freedom.
7: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है बिल्कुल मौसम की तरह कभी धूप कभी बादल अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
8: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
9: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
11: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hit. Super Se Upar, ye show jari hai aapke liye. Aur ek... भेजा फ्राई टाइप का सवाल सैंडी लेकर आने वाली आपके लिए अभी
12: यस वो भी आपके लिए लेके आऊंगी एंड ऑल्सो तब तक आपको बताते हैं कि कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तुम हम बोर्डिंग कॉल के बारे में बता दो
11: अरे हम बोर्डिंग कॉल वेरी इजी है सो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे हम हर घंटे आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बोर्डिंग कॉल का क्यू बजाते हैं
12: ओके
11: ओके हर घंटे नहीं 8 बजे 11 बजे 1 बजे 5 बजे उस आवर में हम आपके लिए एक स्पेशल क्यू टू कॉल प्ले करते हैं जैसे ही आप वो क्यू टू कॉल सुनेंगे वैसे आपके पास 60 मिनट्स है टू गो ऑन टू रोवा ऐप और वहाँ पे एक लिंक है बेसिकली जहाँ पे हमारा बोर्डिंग कॉल वाला लिंक है उस पे जाके आप ये टाइप कर सकते हो बोर्ड नाउ और जैसे आप वो टाइप कर देते हो आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा टू विन टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू With Solomon Airlines plus $1,000 spending money. तो अगर आपको भी ये सब जीतना है तो आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है 5 बजे के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आज का हमारा जो फाइनल क्यू है वो बजेगा आज के दिन का और उसके बाद आपके पास 60 मिनट्स रहेंगे टू गो ऑन टू द रोवा ऐप या वेबसाइट एंड पुट इन बोर्ड नाउ अगर आपने एक बार किया तो आपको पता है क्या है ये अगर आपने नहीं किया इसके बाद पहले कभी भी ये तो आपको लिंक अगर चाहिए तो आप 5599 पे BC लिखकर भेजिए BC ऑन 5599 एंड वी विल सेंड यू द लिंक
12: या सो भी आते हैं आज के सवाल के ऊपर आज का सवाल ऐसा है आपको बताना है ये क्या है आई एम यूजुअली बिहाइंड यू बट यू कैन समटाइम्स सी मी अहेड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिहाइंड यू बट यू कैन समटाइम्स समटाइम्स See me ahead.
11: ओके
12: क्या है हो सकता है ये?
11: एक सवाल है मेरे पास. नहीं आप यहाँ पे हिंट भेजो तो, मतलब आप भेजो तो कॉल करके कोई अगर हिंट,
12: कॉल करके कोई हिंट मांगना चाहते हैं तो हिंट मांग देना चाहते हैं.
11: मेरे को सवाल ये है कि वो मेरे पीछे है या मेरे सामने है. डज दैट डिपेंड ऑन मैं कहाँ हूँ, कितने बजे हूँ, किधर हूँ, ऐसा?
12: टाइमिंग डिपेंड कर सकती है.
11: टाइमिंग डिपेंड कर सकती है ना.
12: या 100%. So, क्या लगता है आपको? इसके वेरियस आंसर्स भी हो सकते हैं.
11: वेरियस आंसर्स भी हो सकते हैं. यस हाय.
1: हेलो
11: जी बोलिए.
1: गाना याद आ गया मुझे सैंडी के, क्लू में वो दे सकते हैं.
11: हाँ हाँ गाना बोलो, गाना बोलो.
1: तुम जहाँ जहाँ जाओ वहाँ मैं साथ रहूंगा तुम्हारे.
11: अच्छा कौन सा गाना है ये?
12: याद डरावनी गाना है ये, एक ना हॉरर गाना है ये.
11: अच्छा
12: या
11: ऐसा मत बोलो यार, तनाजगारी तो हॉरर हो गया, ऐसा नहीं है यार.
12: नहीं नहीं है ना तनाज, हॉरर है ना ये गाना.
1: हाँ हाँ हाँ हाँ वो.
11: अच्छा हॉरर गा के सुनाओ ना, गा के सुनाओ थोड़ा.
1: नहीं यार
11: थोड़ा थोड़ा
1: सच में हॉरर हो जाएगा.
11: नहीं सही हो जाए, मैं अकेले क्यों हॉरर.
12: रुस्बे तो छाया हुआ है आजकल.
11: आपने सुना मेरा गाना? सुना आपने?
1: टू मच बहुत सुना ना, बहुत छाया हुआ है तू.
11: कौन सा?
1: मैं आने वाली हूँ अभी, मेरा वो लेने के लिए कमीशन.
11: कमीशन लेने के लिए? ओ आपने मेरे को पुश किया ना गाने के लिए.
12: आपका
11: भी स्वागत है. बहुत ही बढ़िया जी, कैसे हो आप?
13: बढ़िया जी बढ़िया. नमस्ते संदीप
12: जी. नमस्कार.
13: अच्छा वो क्या बोलते हैं इसको, अपना हमारे साथ ही रहती वो चीज,
12: साथ ही रहती आपके ना वो.
13: हाँ जी.
12: या
11: मतलब हमारे साथ भी रहती है वो चीज या सिर्फ आपके साथ रहती है वो चीज?
13: सबके साथ ही रहती है मेरे को लगता है.
11: सबके साथ रहती है.
12: या दिस इज समथिंग जो हर किसी के पास है.
11: सबकी अपनी अपनी होती है कि सब एक ही शेयर कर रहे
13: हैं? शेयर कर नहीं सकते भाई साहब ऐसे.
11: अच्छा शेयर नहीं कर सकते ना, सबकी अपनी अपनी होती है मतलब.
13: हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
11: क्या नाम है आपका?
13: पुनीत.
11: पुनीत पुनीत थैंक यू सो मच यार कॉल के लिए.
12: थैंक यू पुनीत.
13: ओके बाय.
11: हाय आपका भी स्वागत है.
14: हेलो भाई.
11: हेलो
12: जी.
14: उसका उत्तर तो होगा शेक.
12: क्या चीज?
14: जो मेरा परछाई है कभी पीछे रहता कभी पीछे.
11: अच्छा क्या नाम है आपका?
14: बॉबी.
11: बॉबी
12: बॉबी
11: थैंक्स बॉबी आपके कॉल के लिए.
12: थैंक यू सो मच.
11: थैंक यू. तो इन्होंने कहा परछाई.
12: और भी आंसर हो सकते हैं वैसे इसके, जैसे एक ने लिख के भेजा है यहाँ पे.
11: हाँ.
12: डोर.
11: कभी मैं तुम्हारे पीछे हो सकता हूँ, कभी तुम्हारे सामने.
12: या डोर भी है, किसी ने ये लिख के भेजा
11: तो
12: है.
11: मैं सैंडी भी बोल सकता हूँ, कभी तुम मेरे पीछे हो सकते हो, कभी तुम मेरे आगे.
12: सक्सेस इन माय लाइफ ये भी लिखा है.
11: ओ वाओ.
12: ये आंसर भी है, रूमर्स भी आंसर आया है. सो या डिफरेंट आंसर्स भी
11: यहाँ पे है. व्हाट आर द डिफरेंट क्रिएटिव आंसर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? कभी तुम्हारे पीछे भी हो सकते हैं, कभी तुम्हारे सामने भी.
12: या सड़क. रोड.
11: हमारा पास्ट.
12: पास्ट तो पीछे ही होता है ना. पास्ट तो पास्ट
11: है, कभी सामने भी आ सकता है.
15: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
16: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ.
17: अपना ए गेम
15: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Show with Sandy and Rusbane, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
7: Need a mortgage? Get Buddy.
8: Mostly cloudy and windy down to a low of 12 for Auckland. The traffic out of the city is starting to pile on pretty thick and fast now. To Manukau, it's around 40 minutes along the southern, and to Drury, at just over an hour. Slow patches from Market Road all the way to Manurewa. Along the southwestern, it's looking okay, but busy into Manukau again. To Massey, through the northwestern, 30 minutes crawling from Western Springs until past Rosebank.
7: For expert mortgage advice without the stress, start with buddymortgages.co.nz.
9: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book an adults-only five-night fly-and-stay holiday from $1,439 per person. Book in-store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स GWM मेलोकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
11: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
12: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
13: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया बनाना है
12: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th सितंबर
14: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
12: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
15: Want to be rewarded five times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. T's and exclusions apply.
16: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है अभी एंड राइट नाउ आपको मौका दे रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर फादर्स डे कॉम्पिटिशन. सो फादर्स इन द हाउस मेक सम नॉइज. इट्स टाइम फॉर यू टू गिव अस अ कॉल 0800 004866. इस नंबर पे अभी के अभी आप कॉल कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए. हम आपको यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे.
2: $500 कैश जीतने का मौका अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए.
1: Easiest way to win $500, I would say.
2: Yeah, 0800 004866 is a number. अगर आप डैड है तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए 0800 004866 पर. कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दैट्स इट, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे यू कैन बी $500 richer दिस फादर्स डे. और इसी फ्राइडे को ड्रॉ होने वाला है 4 सितंबर को.
1: हाय, स्वागत है आपका.
3: हेलो,
1: क्या नाम है?
3: रूपक.
1: रूपक?
3: हाँ जी.
1: रूपक भाई कैसे हो आप?
3: बढ़िया बढ़िया, अपना सुनाइए सर.
1: अरे एकदम मस्त यार, आप तो सुन रही है अभी शायद.
3: हाँ जी.
2: तो रूपक आपके बच्चे हैं, कंफर्म कर रहे हैं आपसे?
3: हाँ जी, हाँ जी.
2: ठीक है,
1: कितने बच्चे हैं रूपक आपके?
3: दो.
1: दो, और क्या उम्र होगी उनकी?
3: 1 is 7, 1 is 3.
1: 1 is 7, 1 is 3. और तो 1 is full talking age and 1 is trying to run around age.
3: Yes, yes. Just after terrible 2, हाँ जी, वही है अभी तो.
1: क्या है?
3: टेरिबल टूज की एज से निकल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे.
2: अभी टेरिबल टू तो नहीं, अभी देखना थ्री क्या है, एज है.
3: थ्री है.
2: I have a nephew at home जो 3 साल का है भाई. रियल जो है ना वहाँ पे शुरू होता है अभी.
1: ये हर एज पे लोग कहते हैं, ये हर एज पे मैंने सुना है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे देखो.
2: या व्हेन दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग.
1: इन्होंने देख लिया,
2: इंडिपेंडेंस जोन ही होते हैं ना उनको.
1: इन्होंने एक बार ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, इनके 1-7 साल का है ना, तो उन्होंने देख लिया ये सारे, इसलिए टेरिबल टू बोल रहे. टेरिफिक थ्री.
3: टेरिफिक थ्री,
1: हाँ. फैंटास्टिक फोर. नाइस. ओके, तो अभी हम आपको, तो आपको तो पता रहेगा थोड़े बहुत ऐसे इसके मतलब ना,
2: स्लैंग वर्ड्स के.
1: स्लैंग वर्ड्स पता है आपको. चलो ठीक है, तो आप बताइए कुछ सिंपल से शुरू करें हम. आपको कौन से वर्ड्स पता है पहले आप बताइए, आपको क्या क्या वर्ड्स पता है?
3: किस टाइप के वर्ड आप
2: स्लैंग?
1: अरे स्लैंग वर्ड होते हैं ना, मतलब जो अभी आजकल के
2: 6-7 जो चला था जैसे
1: वो, जैसे हाँ ऐसे अलग अलग जो ये लोग यूज करते हैं. स्कूबिडी, क्या हुआ?
2: स्कूबिडी.
1: स्कूबिडी कुछ तो भी ऐसा भी है.
2: या जो बोले भी नहीं जाते हमसे.
1: आपके बच्चे यूज करते हैं कुछ ऐसा?
3: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते अभी.
2: आपके जो ओशीज यूज करते हैं क्या?
3: नहीं करते.
2: ओके,
1: अरे वाह, बच गए यार, बहुत बढ़िया. चलो ठीक है, अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ठीक है? माय टर्न.
3: हाँ जी,
1: आप बताइए यहाँ पे ग्लेज मतलब क्या? ग्लेज और ग्लेजिंग
3: या विंडो ग्लेज करते हैं?
2: ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे किसी को थोड़ा ना पता चलेगा रुजबे कि इसका मतलब क्या हो सकता है.
1: अरे बच्चे क्यों विंडो ग्लेज के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन
3: अच्छा, बच्चे
1: या बच्चे ग्लेजिंग जब यूज करते हैं, ग्लेजिंग या ग्लेज ऐसा यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. वो जब अगर आपको समझो ऐसे बोले कि Are you glazing him? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो?
2: देखो रूपक, मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा हिंट दो ना.
1: तो मैं
3: हिंट ये हो सकता है कि या गुस्से में हम उन्हें देख रहे हैं या कुछ ऐसा.
2: स्टेयरिंग टाइप है क्या ये?
1: ये मेरे को लगता है ये दिस इज ऑल्सो एन अंकल प्रॉब्लम. ये हम लोग काफी बार करते ही है और मैं खुद को भी कंसिडर कर रहा हूँ वो चीज में, तो आप बुरा मत लग के लीजिए रूपक अंकल के टर्म पर. लेकिन वुड यू कंसिडर योरसेल्फ आल्सो टू बी अंकल?
3: या स्लोली वी आर गोइंग टू दैट एज.
1: हाँ एग्जैक्टली,
2: बच्चों के फ्रेंड्स तो वही बोलेंगे ना बाद में.
1: हाँ तो एनीवे
3: अंकल ही बोल रहे
1: हैं. वही तो अभी जो अब हम लोग को बहुत ऐसी तारीफ वो होती है ना, तकलीफ होती है कि हम किसी को कुछ ज्यादा ही झाड़ पे चढ़ा देते हैं. सैंडी भी रिलेट करेगी ये चीज के साथ. सैंडी हमेशा बोलती यू रॉक, तुम बहुत बढ़िया करोगे, ये करोगे वो करोगे.
2: हमेशा नहीं बोलती,
1: हाँ काफी बार बोलती है. बट ऐसे आप भी बोलते रहोगे ना आपके बच्चों को, अरे तुम ये बहुत बढ़िया करोगे यार, तुम मुझे लग रहा है तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, ये वो ऐसा वैसा. तो जब भी आप किसी को हाइप अप कर रहे हो कुछ ज्यादा ही हाइप अप कर रहे हो और उनको प्रेस कर रहे हो बहुत ही अननोइंग और इनसिंसियर वे में.
2: हाँ, तो ये तो नहीं मैं कर दी, ये मेरा एग्जांपल क्यों दिया तुमने?
1: उसको कहते हैं ग्लेजिंग.
2: Now we know.
1: किसी को चने पे चने के झाड़ पे चढ़ाना. हाँ, चने के झाड़ पे चढ़ाना इज ग्लेजिंग. नाइस, टुडे वी लर्न समथिंग न्यू रूपक.
3: यस,
2: ग्लेजिंग
1: ग्लेजिंग
2: फ्यूचर के लिए याद रखना. ये
1: आज जाके मत करना ग्लेजिंग, ठीक है?
3: करना
1: पड़ता है. पांच मिनट आपने जो स्पेंड किया उसके लिए आपका नाम अभी हम ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं, वेयर यू कुड बी अ विनर फॉर $500. कांग्रेचुलेशंस.
2: Unlock your property's true sale value with NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे थोड़ी देर में पावर ड्राइव एट 5 शुरू हो जाएगा आपके लिए और आज पावर ड्राइव एट 5 में हम आपके साथ खेलने वाले हैं
2: कैरेक्टर गेस, जिसमें एक कैरेक्टर मुझे लिसनर ने बताया है.
1: ओ, लिसनर ने बताया आपको कैरेक्टर?
2: यस, ये कैरेक्टर मुझे लिसनर ने बताया. तो मैंने बोला था ना कि मेरे इंस्टा पे जाके सैंडी सिको पे जाके आप मैसेज कीजिए किस कैरेक्टर को आज मैं कैरेक्टर गेस में लेके आऊं. तो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम,
1: उनको बोलना अभी पार्टिसिपेट नहीं करने को.
2: वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सुनील राज.
1: सुनील राज ने भेजा.
2: सो थैंक यू, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. रिमेंबर दिस.
1: एक काम करना सुनील राज जी,
2: जो भेजा है बस वही आज मैं करने वाली
1: हूं. आप सुनते रहना थोड़े टाइम तक. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो
2: नहीं, आप रुजबे को हेल्प भी कर सकते हैं क्योंकि आपने मुझे बताया है. यू कैन नॉट पार्टिसिपेट.
1: एनीवे, वी विल सी यू सून. आप एक बहुत बढ़िया सा गाना सुनिए सोनू निगम की आवाज में, एंड देन 5 बजे के बाद न्यूज अपडेट के बाद आपके लिए कैरेक्टर गेस ओनली ऑन हम.

0: सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना, नील एंड निक्की का ये गाना है। इसमें जो एक छोटा सा अभी हमने सुना ना, ये यो माय ड्रीम माय लव माय लाइफ आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ, ये पूरा एक गाना था यार सैंडी। अब मुझे मिल रहा ही नहीं है वो गाना कहाँ पे। इसको डाउनलोड करो ना आप, नील एंड निक्की में पूरा इंग्लिश वर्जन का गाना है ये।
1: ओके,
0: यो माय ड्रीम माय लव माय लाइफ आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ,
1: इसके गाने एक्चुअली में काफी
0: अच्छे गाने थे ये। एनीवे, हम क्यों आए हैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे फिर से, वो इसके लिए क्योंकि हमने एक इम्पोर्टेंट बात बोलना ही रह गया हमारा।
1: आज है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे।
0: वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, और उस मौके पे बेसिकली होता ये है दैट यू नीड टू फिजिकली राइट अ लेटर,
1: मतलब
0: अपने हाथों से, हैंड राइटिंग,
1: पेन पेपर।
0: मतलब कितनी बेसिक चीज है ना, लेकिन हमको कितनी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। क्योंकि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर?
1: या
0: आप मैंने तो पूरा डिजिटल हो गए हो ना आप तो।
1: हाँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर लिखा था, लास्ट ईयर मेरे भाई के बर्थडे पे।
0: ओ, भाई के बर्थडे पे लिखा था
1: तो ग्रीटिंग कार्ड जो था तो मैंने उस पे लिखा था।
0: ओ वाओ, नाइस यार,
1: लेटर ही लिखी थी।
0: आई डोंट इवन नो लास्ट ग्रीटिंग कार्ड कब मैंने यूज किया था यार।
1: आई लव ग्रीटिंग कार्ड यार, मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को बहुत पर्सनल फीलिंग लगती है जब हम किसी को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। बट एनीवे, द पॉइंट इज गाइस कि हम आज लेटर लिख रहे हैं अपने किसी एक फ्रेंड को, उसको हम जाके उसके पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली जाके हम खुद वहाँ पे उसके पोस्ट बॉक्स में डालने वाले हैं एक पर्सनल फीलिंग देने के लिए, एंड टू रिकनेक्ट विद दिस यू नो राइटिंग लेटर। बिकॉज जब हम लिखते हैं तो इट्स मोर इमोशंस जो हम वहाँ पे लिखते हैं देन राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज। इट्स डिफरेंट,
0: इट इज सो डिफरेंट यार। लाइक राइट नाउ व्हेन आई एम सिटिंग टू राइट, आपको सडनली आपका सब कुछ एक साथ काम कर रहा है ना, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, फिर उसमें मेमोरी में भी आप जा रहे हो कि अरे अभी क्या है, इसके ऊपर क्या लिखना है, फिर उसमें आप ये भी सोच रहे हो कि सामने वाला इसको कैसे पढ़ेगा। यू नो देयर सो मेनी इमोशंस दैट कम थ्रू,
1: यू कैन ऑलरेडी पिक्चराइज द पर्सन रीडिंग इट।
0: एंड आई लाइक टू राइट इट इन अ वे कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं पूरा इंग्लिश में लिखूं। मैं ऐसी भाषा में लिखूं कि सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने ही लिखा है वो। तो मैं वो ट्राई करता हूँ हमेशा। एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम समवन जो आज हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है यार, हु आल्सो वांट्स टू राइट अ लेटर।
1: या राइट अ लेटर टू योर फैमिली मेंबर, टू योर फ्रेंड, किसी को भी आप लेटर लिखना चाहते हैं।
0: आप हमारे लिए भी लेटर लिख सकते हो इफ यू रियली वांट टू,
1: एंड पोस्ट इट टू मीडिया वर्क्स एड्रेस प्लीज,
0: या फिर यहां पे आके ड्रॉप ऑफ कर सकते हो आप। हमें यहां पे आके कॉल कीजिए, वी विल कम एंड पिक इट अप फ्रॉम आउटसाइड।
1: या वुड लव दैट मैन।
0: ईजी है फाइंड करना, मीडिया वर्क्स को आप गूगल पे डालोगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा,
1: बहुत ईजी है।
0: सो यार एक जमाने होते थे ना कि जो रेडियो अनाउंसर्स है उनको ऐसे लेटर्स मिलते थे प्यार भरे।
1: हमने तो वो जमाना नहीं देखा।
0: आपने तो फिर
1: आप
0: भी
1: अगर चाहते हो तो हम देख सकते हैं।
0: आपने तो फिर भी देखा है सैंडी।
1: कैसे?
0: आपको कितने आते थे यार लेटर्स वेटर्स आते आपके
1: बर्थडे पे? ग्रीटिंग कार्ड
0: बर्थडे पे तो आपको ऐसे लव लेटर्स भी मिले ना?
1: लव लेटर नहीं, ग्रीटिंग कार्ड्स ना।
0: ग्रीटिंग कार्ड्स मिले आपको?
1: या
0: वही ना, हमको तो वो।
1: बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर, जो लोगों को ऐसा लेटर मिलता था कि वो लेटर नहीं, मैसेजेस आते बट लेटर वो यहाँ से इनकी नहीं मिलता है।
0: ओके, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू गेट ऑन दिस चैलेंज। 0800-004-866 इस नंबर पे आप कॉल करके शेयर कर सकते हो अगर आपने भी ये चैलेंज लिया है, एक्सेप्ट किया है, या फिर 5599 पे आप मैसेज कर सकते हो हमें। लेकिन अभी के लिए आपको कुछ मैसेजेस सुनाते हैं जिससे हम हमारा पापी पेट भरे।
2: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड,
3: हम एक्यूरेट ट्रैफिक,
4: कोगन मोबाइल,
5: क्लाउडी एंड विंडी विद फाइन स्पेल्स थ्रू द नाइट, अ लो ऑफ 12, हीटिंग आउट ऑफ ऑकलैंड सीबीडी इज स्टार्टिंग टू गेट बिजियर एज वी हेड टुवर्ड्स अ पीक, टू मोनाको अराउंड 40 मिनट्स एंड टू ड्रूरी एन आवर अलोंग द साउदर्न, lots of slow patches from Market Road all the way to Manurewa. To Massey, it's around 35 minutes, crawling from Western Springs through the Northwestern. And to Constellation Drive, half an hour. To Silverdale, 50 minutes along the Northern.
4: Honest Aussie value, yearly prepay plans from just $160. Search Kogan Mobile. T's and C's apply.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
8: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
9: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
10: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
12: फर्स्ट होम बायर बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
13: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
2: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. It has been found Auckland's mayor did breach council's code of conduct when calling an RNZ employee a Muslim terrorist. Wayne Brown made the remark in April and later apologised, describing it as a fumbled attempt at humour. RNZ reports that an independent commissioner has found the comment brought the council into disrepute and was a form of harassment. A sigh of relief as the flu vaccine is made free for children aged 6 months to 5 years. Plunkett has seen firsthand the impact of a late intense spike in cases. Acting General Manager Nat Horniak says their 24/7 telehealth service is at the centre.
15: We've seen an increase in calls of about 200 a day as we support Healthline and Health New Zealand to take calls with families who are worried about their little ones.
14: A union claims 130 jobs are on the line as Woolworths looks to shift its customer care centre to Australia. The company says the proposal is designed to explore the use of the company's scale, systems and expertise while supporting a simpler and more sustainable New Zealand business. And the critically endangered kakapo population has soared past 300 for what could be the first time in 75 years. Kakapo recovery ranger Petrus Hedman says 90 chicks have survived the latest breeding season.
16: When this program first started, it took 16 years to produce that many chicks, so it's been a long journey.
14: To sport, the major announcement from Netball's governing body today confirming a private franchise league starting next year. Netball New Zealand's boss Jenna Wooten knows it's too late for the elite players heading overseas this year. And at the US Tennis Open, ASB Classic crowd favourite Naomi Osaka made her usual fashionable entrance for her first round match against Anastasia Zakharova. Osaka won in straight sets to make the second round.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: Feels like 13 degrees, 13.6 actual temperature, and overnight temperature is going to be as low as 12 degrees. Southwesterly strong at times. And beautiful day. Otherwise, 6:01 pe hoga sunset. Kal ka din mila jula sa rehne wala hai. With a high of 17, kal ka overnight rahega 11.
3: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Ruzbe.
18: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
0: Power Drive at 5. Aaj hai Tuesday. Good evening. 5:03. Hi Sandy. Good evening.
1: A very very good evening, Ruzbe. Aaj Tuesday hai aur aaj hamari game hai character guess. Do you want to play it now or after one song?
0: Mujhe lagta hai ek gaane ke baad character guess khelte, kyunki I am still completing the letter I'm writing for my friend today, because today is World Letter Writing Day. And we would like to open our phone lines. यहाँ पे कॉल करें यार 0800-004-866. चलो, we'll not force you to participate in this, but at least try to recollect आपने last letter कब लिखा था. And share the deets with us about that. मतलब किसको लेटर लिखा था, क्या हुआ था उसके बाद, या आपको किसी ने लेटर लिखा था तो क्या लिखा, मतलब वो तो नहीं बताओगे आप क्या लिखा था, बट
1: मेरे को लगता है लेटर्स के ना अलग ही वो रहता है. आई थिंक मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था द इस बार ने पिछले साल जब मैं इंडिया में गई थी तो आई फाउंड लेटर्स ऑफ मॉम एंड डैड जो उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे को लिखी थी.
0: ओह माय गॉड,
1: मतलब मेरे ऐसे डिटेल्स में डिटेल्स नहीं पड़ी मैंने,
0: नहीं पर ऐसे का हो ही नहीं सकता
1: सर, ऊपर ऊपर से, लेकिन
0: ऊपर से उसको पूरा पढ़ना कहते हैं.
1: तो मैंने एक चीज जो मेरे को बड़ी होलसम सी लगी कि पापा ने एड्रेस की हुई थी लेटर जहाँ पे माय मॉम यूज्ड टू टीच स्कूल में.
0: हां स्कूल में भेजते थे
1: क्योंकि घर पे नहीं भेजनी थी लेटर ना. तो स्कूल में एड्रेस की हुई थी. दिस वाज आफ्टर द एंगेजमेंट एंड मम्मी ने भी उनके किसी फ्रेंड के ही ऐसे रेफर की हुई थी नॉट to the home.
0: Oh, wow.
1: तो letters मतलब imagine ना कहीं और भेज रहे हैं वो उनको मिल रही है and then the excitement. Oh my god. So yeah. I think that is golden.
0: But the other thing is also that हमारे घरों में privacy की ज़्यादा इज्जत नहीं होती थी वो time पे.
1: Exactly.
0: जैसे आज हमारे साथ
1: लेकिन वो letters कैसे संभाल के रखी हुई है that is commendable.
0: हाँ नहीं वैसे नहीं like वो घर पे नहीं भेज सकते क्योंकि कोई किसी और का letter पढ़ लेगा मतलब.
1: Yeah yeah yeah. किसने भेजा है पहले खोल के देखेंगे.
0: हाँ कि किसने भेजा है क्या है. एक्चुअली मेरे घर पे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता था दैट इफ इट इज एड्रेस्ड टू एनीवन यू आर नॉट अलाउड टू ओपन इट, यू विल नॉट ओपन इट, ओनली दैट पर्सन विल ओपन इट.
1: मेरे घर पे तो पता ही नहीं था ऐसा रूल होता भी है कोई कि एड्रेस किसी के नाम पे है तो उसी को खोलनी नहीं. घर पे घर का एड्रेस है तो कोई भी खोलेगा.
0: दैट्स राइट या एंड दैट्स व्हाई आई थिंक हम लोग काफी हमारे लाइक यू नो जो राइटिंग कल्चर है वो कहीं ना कहीं उसके कारण भी डाई डाउन हुआ है. लाइक काफी बार मेरे को भी डर लगता है, मैं लिखता हूँ, मैं बहुत जर्नल करता हूँ, बट मुझे डर लगता है कि अगर ये किसी ने पढ़ लिया
1: तो क्या होगा.
0: बट फिर दूसरे साइड से मेरे को ये भी फीलिंग होता है कि मैं जाने के बाद अगर कोई पढ़ ले मेरे को चाहिए कि तभी कोई पढ़े. क्योंकि एक बार तुम गए हो उसके बाद तुम ज्यादा बुरे नहीं बन सकते हो.
1: True.
0: लेकिन दैट टाइम तो तुम बोलोगे ना कि अरे यार सही था जो भी था. Usually ऐसा होता है but anyway. Okay, so we're not getting any calls, no problem. We'll play character guess just after this song. तो अभी के लिए it's Diljit Dosanjh for you.

0: दिलजीत दोसांझ ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. अभी टाइम आ गया है हम आपके साथ खेले कैरेक्टर गेस. कैरेक्टर गेस में होता यह है कि आज सैंडी का टर्न है और आज सैंडी आपके लिए एक यहाँ पे कैरेक्टर लेकर आएगी, मतलब वो सोचेगी एक कैरेक्टर के बारे में एंड वो हमें देगी 5 हिंट्स और हमारे पास होंगे 5 यस एंड नो क्वेश्चंस उसको पूछने के लिए. एंड विद ऑल ऑफ दिस वी हैव टू गेस हु इज सैंडी थिंकिंग अबाउट.
1: यस, सो सबसे पहले मैं आपको अपना हिंट देती हूँ, ठीक है?
0: पहला हिंट,
1: इनका पहला हिंट ये है इस पर्सनालिटी का, माय सरनेम इज आल्सो द नेम आई बिकेम फेमस बाय. एक्चुअली द सरनेम इज द ओनली नेम दिस पर्सन बिकेम फेमस.
0: ओ, सिर्फ सरनेम से ही जाने जाते हैं ये.
1: ये जो पर्सन है ये सरनेम से ही जाने जाते हैं. इनका फर्स्ट नाम कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता.
0: ओके, राइट. What are you guys thinking? कौन लग रहा है?
1: और बहुत अच्छा हिंट दिया मैंने ये.
0: बहुत अच्छा हिंट है.
1: मतलब मैंने रुस्बे की तरह वो आइसक्रीम ये वो हिंट नहीं दिया है.
0: नहीं, नहीं, बहुत अच्छा हिंट दिया है.
1: It's very good hint कि ये जो पर्सनालिटी है ये अपने सरनेम से ही जाने जाते हैं.
0: ये कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ये कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं या कोई मूवी कैरेक्टर हो सकते हैं.
1: पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एनीवन.
0: स्पोर्ट्स पर्सन.
1: या एनीवन.
0: कुड बी एनीवन. ओके.
1: तो इसका फर्स्ट नेम किसी को पता भी है ये बहुत कम लोगों को पता होगा.
0: बट सरनेम सबको पता है. सरनेम से ही जाने जाते हैं.
1: या सरनेम से ही जाने जाते हैं.
0: ओके,
1: मतलब जिन लोगों को होता है ना कि ऐसा
0: या बस कॉल करो यार
1: जानने के लिए इनके बारे में.
0: कॉल
1: तो
0: करो यार,
1: पता होगा ये.
0: बताओ यार कॉल करके कि क्या लगता है आपको. नहीं यार, यहाँ पे मैसेज आ रहा तेंदुलकर. मैं धोनी सोच रहा था लेकिन नहीं यार, सचिन तेंदुलकर. तो यार सचिन तो हर कोई जानता है ना, ऐसा थोड़ी कि सचिन नहीं जानता है कोई. और कौन हो सकता है यार, कुछ और. मेरे को लग रहा है कि हमें कुछ प्रॉपर क्वेश्चन पूछना चाहिए.
1: कॉल करो रुस्बे की हेल्प करो यहाँ पे. 0800 हम 0800 004866 एक्सेप्ट सुनील राज.

0: अंबानी यार तो पता है ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ऐसे सारे जो मैसेजेस आ रहे। थैंक यू सो मच, आप भी मैसेज भेजें यहाँ पे। सवाल पूछने का टाइम आ गया है, 0800-004-866। क्या सवाल पूछना चाहेंगे सैंडी से जिससे हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिले? हैज टू बी येस और नो क्वेश्चन। यहाँ पे कॉल करें और आप ही पूछिए सैंडी से आज, 0800-004-866।
1: कॉल करो और सवाल पूछो।
0: या मेरे को लग रहा है कि मेघा ने जो सवाल यहाँ पे पूछा है वो पूछ सकते हैं हम लोग कि मेल है या फीमेल है, लेकिन उससे क्या ही बॉटम डाउन होगा ना। मतलब एक और हिंट ले ले क्या हम?
1: या मर्जी है तुम्हारी,
0: एक और हिंट ले लेते तब तक।
1: ओके, सो दिस पर्सन हैड अ वेरी डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग।
0: तो क्या दिस पर्सन,
1: सो माय सेकंड हिंट इज दिस पर्सन हैड अ वेरी डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग।
0: Had a very distinctive way of speaking. तो गौर फरमाना इस स्टेटमेंट पे, this person had a very distinctive
1: तो मन्नत गोस्वामी क्यों लगा रहे
0: way of speaking.
1: गौर फरमाना इस स्टेटमेंट पे had, इन्होंने जो शब्द बोला है यार,
0: had मतलब ये अभी नहीं रहे, मतलब ये ऐसा कुछ सीन चल रहा है।
1: मैंने तो लाइन बोली है भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो सोचना है सोचो।
0: This person had a distinct way of speaking. यार बहुत कंफ्यूज हो गया हूं मैं तो अभी।
1: सरनेम से जाने गए, सरनेम इज द नेम दिस पर्सन बिकेम फेमस।
0: चलो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, इज दिस पर्सन मेल?
1: दिस पर्सन इज मेल।
0: मेल है?
1: या।
0: ओ नो,
1: व्हाट? ओ नो,
0: बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए ना अभी। अच्छा,
1: या
0: तो लेट्स सी, अभी फोन आ रहा है हमें। हाय
2: भाई, कैसे हो?
0: अरे बहुत ही बढ़िया भाई, आप कैसे हो?
2: बस चल रहा है।
0: क्या लगता है आपको कौन है यार? ये कंफ्यूज हो गया हूँ मैं तो, मेरा तो माइंड ही कंफ्यूज हो गया है।
2: नहीं, मैं आपके साथ हूँ भाई।
0: आप भी साथ में हो, थैंक यू साथ देने के लिए कॉल किया आपने।
1: क्या पूछना चाहिए?
2: मैं सोचता मिस्टर बीन जो इंग्लिश मूवी में आता है, उसके नाम कुछ और है, मिस्टर बीन पुकारते है।
0: You're right. उनका फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं अपने को, मिस्टर बीन का फर्स्ट नेम क्या है? नहीं नहीं, सही बोल रहे हो आप,
2: मुझे भी तो नहीं पता है।
0: तो इन्होंने ये भी बोल दिया, मिस्टर बीन हो सकता है ये। अश्विन थैंक यू सो मच यार आपके कॉल के लिए, एक और कॉल लेता हूँ यहाँ पे। हाय, आपका भी स्वागत है।
3: हाय, इज इट सिद्धू मूसेवाला?
0: बट सिद्धू मूसेवाला को तो आप दोनों नाम से जानते हो ना, सिद्धू और मूसेवाला।
1: बहुत नहीं, इनका बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि
0: क्रेजी। ये बहुत सही बोला आपने यार। क्या नाम है आपका?
3: निर्मल।
0: क्या क्या?
3: निर्मल।
0: निर्मल, निर्मल, थैंक्स यार, ये बहुत ही अच्छा आपने हिंट दिया है, ये अच्छा हिंट है, ये मतलब अच्छा आपने नाम दिया है, सिद्धू मूसेवाला हो सकता है।
1: वेरी इंटरेस्टिंग निर्मल।
0: तो अभी हम क्या सवाल पूछे निर्मल यार, टू बॉटम इट डाउन?
1: अगर आपको अपनी ऑप्शंस ऐसे नैरो डाउन करनी है, क्या पूछोगे?
0: ओ कांट बी मिस्टर बीन। एक और निर्मल, व्हाइल यू आर थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन, एक मिनट, हमको एक और यहाँ पे मैसेज आया, कांट बी मिस्टर बीन, ही डिडंट टॉक, और इन्होंने कहा एकदम डिस्टिंक्ट वे ऑफ टॉकिंग था। तो सिद्धू मूसेवाला का डिस्टिंक्ट वे ऑफ टॉकिंग था क्या कुछ? ये भी, ये देखो, ये नहीं फिट हो रहा है। ये नहीं फिट हो रहा है।
1: सो जितनी भी चीजें सारी की सारी फिट होनी चाहिए,
0: सारी फिट चीजें फिट होनी चाहिए। तो ये नहीं, इतना
1: डिस्टिंक्टिव वे ऑफ सिंगिंग तो जरूर था ना।
0: ए कंफ्यूज मत करो अभी, आपने डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्पीकिंग बोला था, टॉकिंग बोला था।
1: या
0: निर्मल सोचो इसके बारे में, आप ऐसे डिसहार्टन मत हो यार, क्योंकि फिर मैं, मेरा क्या होगा ना।
3: All right, we'll think about it and if I get some other ideas, I'll call.
0: Okay, thank you.
1: Thank you so much, Nirmal.
0: Thank you.
3: Okay, thank you.
0: अच्छा, काफी नाम आ गए सैंडी यहाँ पे।
1: बहुत सारे नाम आए।
0: बहुत नाम आ गए। इसमें से कोई है क्या अब तक?
1: ये तुम्हारा सवाल है क्या?
0: नहीं, ऐसा सवाल नहीं।
1: तुम्हारा सवाल है तो मैं जवाब दूंगी।
0: तो अभी तक दो हिंट हो गए ना?
1: दो हिंट हुए और एक तुमने सवाल पूछा है।
0: मैंने एक ही सवाल पूछा अब तक। तो मैं दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूँ फिर अभी। क्या लगता है आपको? मैंने ये डिस्टिंक्ट ऑफ टॉकिंग मींस ही हैड एन एक्सेंट, व्हिच एक्सेंट दो? अच्छा, क्या मेरे को एक यहाँ पे आप प्लीज बताइए। मेरे पास दो सवाल है, ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सैंडी,
1: समझ गए,
0: वन टू वन इनसे बात कर रहा हूँ अभी। तो आप मुझे

0: ये कि मेरे को दो सवाल है मेरे मन में. एक है या तो अलाइव या वो कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें. दूसरा है कि हम उनको पूछे, सैंडी को पूछे कि क्या ये इंडियन है या नहीं, क्योंकि अगर इंडियन है तो फिर भी नैरो डाउन हो जाएगा ना. और मुझे लग रहा है इंडियन है कि नहीं ये ज़्यादा एसेंशियल रहेगा सवाल. आपको क्या लगता है? 0800-004-866 प्लीज़ कॉल कीजिए यार, आज तो बहुत ही ज़रूरत है. इंडियन है या कुछ और पूछना चाहिए? हाय हाय
1: हाय संडे,
2: हाय.
1: हाँ सही सोचा आपने, वो इंडियन नेशनलिटी पूछ लो।
0: हाँ है ना. क्या नाम है आपका?
1: पार्थ।
0: पार्थ. पार्थ कौन आ रहा है मन में? लेकिन ऐसा कोई
1: क्योंकि मैंने मैसेज किया, ट्रम्प आ रहा है मेरे माइंड में।
0: नहीं ना, डोनाल्ड ट्रम्प. या डोनाल्ड भी बहुत पॉपुलर है ना नाम. ऐसा थोड़ी है कि नाम क्यों
1: अरे
0: जानते
1: इंडिया
0: हैं.
1: में सब ट्रम्प ट्रम्प ही करते हैं, इंडिया में सब ट्रम्प ही करते हैं।
0: अरे बट ये तो यहाँ पे रहती है ना. डोनाल्ड ट्रम्प तो
1: क्या
0: यार मेरे को लग रहा है वो डोनाल्ड नाम पे इतना जोक हो गया
1: नहीं,
0: है.
1: अगर इंडियन इंडियन नहीं है तो फिर आउट ऑफ इंडियन, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं।
0: कौन से
1: मतलब
0: कौन से और
1: अगर
0: कौन से?
1: स्पोर्ट्स में तो देखे तो गांगुली गांगुली का नाम काफी सारे लोगों को पता नहीं है, सौरव गांगुली।
0: क्या बात कर रहे हो यार. अच्छा हो सकता है. तो चलो इंडियन वाला सवाल पूछ लो. आप ही पूछो भाई, तो आप ही बिल फटेगा ना. पूछो पूछो.
2: पूछो पार्थ।
0: एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो पार्थ, एक मिनट होल्ड करो प्लीज.
2: कंफ्यूज हो गया
0: हाय
2: फिर।
0: हाय, आपका स्वागत है.
3: हेलो
0: हाँ क्या नाम है आपका?
3: विनी।
0: विनी. देखो हमारे साथ पार्थ भी है लाइन पे. और पार्थ यहाँ पे, पार्थ बोल रहे हैं यहाँ पे कि पूछना चाहिए कि नेशनलिटी क्या है, इंडियन है कि नहीं, ये पूछते हैं. आपको क्या लगता है क्या सवाल पूछना चाहिए?
3: और अगर एक्सेंट की बात करें तो अगर इंडियन है तो रफली किस स्टेट
0: वो नहीं
3: शायद।
0: बोलेगी इतना डिटेल, वो अपने को वो सिर्फ येस एंड नो आंसर
2: मैं सिर्फ
0: देगी.
2: हाँ या ना मैं आपको बताऊंगी, आपका सवाल होना चाहिए यू नो कि क्या ये है।
0: हाँ
3: हाँ नाना पाटेकर है।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं डायरेक्ट वो बोलेगी, लेकिन नाना पाटेकर को हम लोग दोनों नाम से जानते हैं ना. वो बोली सिर्फ सरनेम से ये पॉपुलर हुए हैं.
2: तो दिस पर्सन इज फेमस बाय द सरनेम, इनका जो फर्स्ट नेम है ना वो पता होगा जो मतलब इतना डिटेल में उनको जानते हैं। यूजली जो होता है ना कि
3: अच्छा
2: फेमस है पर्सन इस नाम से, तो इनका सरनेम से ही फेमस है ये। आज भी अगर आप उनका नाम लेंगे तो सरनेम ही लेंगे।
0: तो सवाल पूछना क्या, पूछने का टाइम आ गया है. क्या हम पूछे सवाल इनको नेशनलिटी के बारे में या आपके पास कोई और आइडिया है?
3: हाँ जी नेशनैलिटी के बारे में पूछ
0: नेशनलिटी पूछ लेते ना. चलो ठीक है. और सॉरी आपका नाम आपने क्या बोला? सॉरी मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ.
3: विनी
0: विनी
3: विनी
0: विनी
2: विनी
0: विनी. थैंक यू विनी. एक मिनट होल्ड कीजिए आप भी, कि अभी आप भी आंसर जान लीजिए. पार्थ भी हमारे साथ यहाँ पे. तो सैंडी, पार्थ और विनी का सवाल है आपके लिए कि इनकी नेशनलिटी इंडियन है.
2: यस
0: यस इंडियन है, ये इंडियन है गाइस. दो दो हो गए अपने सवाल. तो अभी अब तक हमको पता
3: ओके
0: चला है कि ये इंडियन है और इनको सिर्फ सरनेम से जानते हैं मोस्ट लोग. और
2: मतलब मेरे को लगता है 95%
0: 95% लोग सिर्फ सरनेम जानते हैं.
2: या
0: और अब बाप रे. और ये इनका डिस्टिंक्ट वे ऑफ टॉकिंग है.
2: डिस्टिंक्ट यार, वेरी डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग।
0: डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग है इनका.
3: तेंदुलकर, सचिन, सचिन तो सचिन ही जानते ना, सचिन
0: नहीं नहीं सचिन
3: पूरा
0: तो
3: नाम
0: जानते हैं ना हम लोग यार. हर कोई सचिन जानता है यार.
3: पूरा जानते
0: 95%
3: हैं।
0: तेंदुलकर.
2: ऑल्सो यू हैव टू फोकस कि इफ आई एम सेइंग कि
1: अरे मैंने
2: हाँ जी बोलो।
1: सॉरी मैंने बहुत पहले मैसेज भी किया था गांधी जी, क्योंकि उनका पता होगा, सबका नाम तो पता होगा वैसे जो जिन्होंने स्टडी किया होगा।
0: तो
1: या
0: 95
1: फिर मोदी जी।
0: मोदी जी का भी फर्स्ट नेम तो पता ही है ना सबको.
2: अभी उसमें ने तो मिडिल नेम भी बना दिया है।
0: नहीं नहीं
1: ओके सोचता हूँ, चलो कुछ
0: सोचो सोचो.
2: ठीक है
0: हाँ थैंक यू यार.
1: ओके
0: अच्छा तो अभी सोचने का टाइम आ गया है. कितने कितने
2: सोच तो
0: कितने कितने कितने हिंट हुए? दो हिंट हुए ना,
2: दो हिंट हुए
0: और दो सवाल हो गए.
2: दो
0: एक और
2: सवाल
0: एक और हिंट दे दो फिर हम एड ब्लॉक पे जाते
2: हैं. चलो ठीक है. तो मेरा जो नेक्स्ट हिंट है वो ये है कि जिस फील्ड में ये पर्सन फेमस थे, उससे पहले उन्होंने रेडियो में काम किया,
0: जिस फील्ड में ये फेमस थे उससे पहले,
2: उससे पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की रेडियो से,
0: रेडियो से शुरुआत की करियर की, रेडियो से करियर की शुरुआत की है, और एक ही नाम है उनका, मतलब एक सरनेम से ही जाने जाते हैं वो हमेशा. ओह माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. और ये थे बोल रहे हो आप हमेशा, तो मतलब ये है नहीं ऐसा लग रहा है, ये थे है. बिनाइफर अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो ने, तो उन्होंने रेडियो से नहीं शुरुआत की थी शायद, तो अमिताभ बच्चन तो नहीं है इसमें, और अमिताभ बच्चन दोनों नाम से जाने जाते हैं यार. एनीवे सोचिए थोड़ा, मैं भी सोचता हूँ.
4: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
5: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी.
6: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
7: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
8: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
7: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री, और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
8: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
7: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Hum, accurate traffic.
9: Switch to AMI car insurance.
10: Cloudy and windy with fine spells throughout the night, a low of 12 out of the CBD in Auckland. Traffic is starting to pick up. To Constellation Drive, it's around half an hour, and to Silverdale, 50 minutes along the northern, heavy patches past Freeman's Bay, clearing over the Harbour Bridge, and then heavy again to Waido. To Massey, it's around half an hour through the northwestern, and to Manukau, 40 minutes, and an hour to Drury along the southern.
9: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
11: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
12: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover-sooner.
13: 3, 2, 1, rush!
14: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
15: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
16: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
17: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
18: Are you ready to go home?
19: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
20: Power Drive at 5.
21: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: You're listening to हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए यहाँ पे हम लेकर आते हैं कैरेक्टर गेस, जिसमें आज थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है. हमारे पास कुछ हिंट्स हैं यहाँ पे अबाउट दिस कैरेक्टर. तो ये कैरेक्टर पॉपुलर हुए हैं या इनको 95% जनता जानती है इनके लास्ट नेम के थ्रू.
2: या
0: सेकेंड हिंट हमें मिला है कि इनका एक बहुत डिस्टिंक्टिव वे ऑफ टॉकिंग है, स्पीकिंग है. फिर एक और इनका हमने सवाल पूछा कि ये इंडियन है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ इंडियन है. और हमने एक और सवाल क्या पूछा था,
2: यही था, तुम्हारे दो ही सवाल है ना अभी तक.
0: एक ही सवाल हुआ है ना फिर अब तक, तो
2: दो सवाल हुए तुम्हारे.
0: कौन सा सवाल है?
2: एक तुमने मेल फीमेल पूछा था.
0: अरे हाँ, मेल फीमेल भी पूछा. नहीं, मेल फीमेल, मेल फीमेल पूछा मैंने. हाँ, तो मेल,
2: मेल है.
0: नहीं, मैंने नहीं पूछा मेल.
2: पूछा उसमें.
0: मैंने नहीं पूछा मेल फीमेल.
2: अरे गाइस, इसको बताओ.
0: पूछा. अच्छा ठीक है, मैंने पूछा. तो मेल है ये, ये इंडियन है. और ये नाम अपने लास्ट नेम से जाने जाते हैं. अब मेरे को लग रहा है इट इज टाइम फॉर अस टू नो कि इनका प्रोफेशन क्या है. थर्ड हिंट क्या दिया था आपने?
2: थर्ड हिंट मैंने ये दिया था कि क्या दिया था मैंने, या सो बिफोर जिस फील्ड में ये फेमस हुए, बिफोर दैट ही डिड रेडियो एज वेल.
0: ही डिड रेडियो एज वेल बिफोर दैट, बिफोर बीइंग फेमस.
2: स्टार्टिंग ऑफ द करियर वाज रेडियो.
0: ओके ओके, सो वी आई थिंक नीड टू नो कि ये क्या है, मतलब कौन से फील्ड में है, क्या है. बट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार, क्योंकि अभी कैसे मैं कौन सा सवाल पूछूं, क्योंकि सवाल भी बहुत लिमिटेड है.
2: तुम्हारे पास तीन सवाल है रुजबे, दो ही सवाल पूछे हैं तुमने.
0: अभी दो ही सवाल पूछे हैं.
2: हाँ.
0: 0800-004-866, what do you think the next question should be? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पूछना चाहिए कि ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड में है क्या. या असरानी, आई थिंक आस्क क्वेश्चन इफ दे आर इन मीडिया इंडस्ट्री. असरानी आपको लग रहा है?
2: मीडिया इंडस्ट्री.
0: बहुत लोगों को असरानी लग रहा है यार. एक मिनट से भी बात करते. हाय
3: बोलो,
0: स्केच अमिताभ बच्चन. बट अमिताभ बच्चन इज नॉट जस्ट नोन
3: रेडियो.
0: अरे रेडियो पे उन्होंने काम किया था.
3: नहीं, he went on radio, but he was rejected. काम नहीं किया था.
0: हाँ, बट इसके हिंट में काम किया था इस इंसान ने रेडियो पे. आयुष्मान खुराना नाम आया एक, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. बट आयुष्मान खुराना को कोई खुराना करके नहीं जानता है. लोग आयुष्मान खुराना जानते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा फिट कैटेगरी में. सैंडी राइट है ना? ये तो
2: सवाल पूछ रहे हो क्या?
0: नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. मैं बस बोल रहा हूँ कि क्लैरिटी हमारा सेम है ना. असरानी भी हो सकता है एक्चुअली में, क्योंकि ऑफ एयर सैंडी ने एक और हिंट दिया मुझे. उसने कहा कि नुशीन को इसके बारे में नहीं पता होगा. सो आई एम थिंकिंग दिस विल बी समवेयर फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री. असरानी के लिए डिस्टिंक्ट वे ऑफ टॉकिंग था असरानी का. यस, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड असरानी का पहला नाम मुझे नहीं पता. किसी को पता है क्या असरानी का फर्स्ट नेम? Anyone out there know? Actually, no. 95% don't know Asrani ka first name. So this is a very close one. So Sandy, again a question for you.
2: Ask a question.
0: तो अब तक इसका नाम आया है यहाँ पे messages में?
2: तो जितने messages हैं ना?
0: हाँ.
2: तो एक बार फिर से मैं check कर लूँ. I'm just cross checking everything so that मेरा answer वो ना हो. Yes, इनका नाम आया है.
0: इनका नाम आया है.
2: Yeah.
0: और मोर देन वन टाइम आया है, मतलब
2: ये दूसरा सवाल है तो.
0: अरे यार ये क्या है यार. सो
2: अभी तक या तुमने बोला कि किसी ने नाम भेजा है.
0: हाँ.
2: तो मैंने बोला है कि यस, नाम भेजा है, आंसर आया है. ये
0: नाम आ गया है, आंसर आ गया इनका.
2: या
0: अच्छा ठीक है,
2: दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन.
0: ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था. अब दो
2: फोर्थ हिंट दूं मैं?
0: हाँ फोर्थ हिंट दे दो यार, बेस्ट है.
2: ओके, दिस पर्सन, मैं दो हिंट्स में बहुत कंफ्यूज हूँ.
0: कोई बात नहीं.
2: ओके, दिस पर्सन डिड मैनी परफॉर्मेंसेस विच वॉज नॉट लीडिंग परफॉर्मेंसेस.
0: हाँ हाँ हाँ, ग्रेट.
2: बट
0: हाँ हाँ,
2: दिस पर्सन बिकेम अ लीडिंग मैन इन गुजराती मूवीज.
0: लीडिंग मैन इन गुजराती मूवीज.
2: सो या दिस पर्सन डिड मैनी मूवीज with character roles. But the person was leading man in Gujarati movies.
0: Asrani was leading man in Gujarati movies. Kya Nandini itni confident hai? Nandini ne 5-6 baar bol diya hai ki bhai ye wohi hai, ye Asrani hi hai. To Nandini aap yahan pe agar call kar sakte ho hame to please call karo. और हमें बताओ कि ये क्या लीडिंग मैन थे क्या ये गुजराती में, गुजराती सिनेमा में? ओह गॉड. तो यार मेरे को लगता है कि हम पूछ सकते हैं ना कि क्या ये अभी भी है या नहीं, वो नहीं. ये पूछ सकते कि नहीं.
2: तुम इसमें से सोचो कि जिसके बारे में सोच रहे हो वहां पे नैरो डाउन करने के लिए तुम्हें क्या सवाल पूछना चाहिए.
0: आहा, वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर. एनीवे मैं सोचता हूँ इसके बारे में, आप तब तक ये गाना सुनिए और सोचिए और मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए फटाफट. आपको क्या लगता है और कौन हो सकता है?
21: Hollywood's most wanted.
1: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
18: मैं लाऊं अपना A game.
21: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits and हम लोग के साथ यहाँ पे आज हम कैरेक्टर गेस खेल रहे हैं. कैरेक्टर के बारे में सैंडी ने बहुत सारे हिंट्स दिए हैं, हमने कुछ सवाल भी पूछे उनको, उसके भी आंसर्स हमें मिले हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट वीव गॉट अरुणी ऑन द कॉल ओवर हियर राइट नाउ. हाय अरुणी.
1: हाय हाय विजी.
0: तो अरुणी, आपने 100% कंफर्म बोला है कि असरानी है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपने क्या क्या बोला था?
1: Because male hai, then unki voice distinct hai. He has worked in All India Radio. Then Gujarati movies mein he has been a lead character. So almost everything is matching.
0: And Bollywood mein unhone side character ke roles play kiye.
1: Side character ke roles play, yes.
0: All right. So now, Arunee, I'll just keep you here only. Sandy, आपका टर्न है टू गिव द फाइनल हिंट. ना
2: फाइनल हिंट, या सो माय फाइनल हिंट इज वन, ये कहते हैं कि वन ऑफ माय मोस्ट फेमस परफॉर्मेंसेस वाज बेस्ड ऑन रियल, वाज इंस्पायर्ड बाय रियल हिस्टोरिकल फिगर, बट आई वाज नॉट प्लेइंग हिम इन अ सीरियस बायोपिक.
0: हाँ, ये बहुत ही, ये आपको समझ में आया ये किसके बारे में बोल रही है?
1: नहीं.
0: तो
1: बताइए,
0: हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है. मुझे लग रहा है ये वो
1: ओके ओके, यस, अंग्रेजों के जमाने के,
0: मेरे को लग रहा है ये वो उसमें इट रियली फिट्स दैट. तो मुझे लग रहा है हमने, हमारे पास एक क्वेश्चन बाकी है ना.
2: या एक क्वेश्चन बाकी है.
0: तो क्या ये कैरेक्टर या एक्टर शोले मूवी में थे?
2: यस.
1: बस तब तो 100% असरानी है.
0: That's awesome, man. Thank you.
2: Thank you so much. You were spot on.
0: You were spot on. Yeah. Thank you.
2: Thank you, Arunee.
0: तो असरानी है ना आज का आंसर?
2: Yes.
0: क्या बात है यार.
2: The right answer is असरानी.
0: I really would like to thank so many of our listeners over here.
2: And Sunil Raj ने जो हमारे listener हैं, उन्होंने actually मेरे को insta message करके आज का character guest बोला कि ये करना चाहिए.
0: क्या बात है सुनील राज, याद रखना. अगले हफ्ते मेरे को भी मदद चाहिए. बहुत अच्छा आपने यहाँ पे हिंदी
2: बहुत अच्छा आपने करेक्टर दिया.
0: नंदिनी, थैंक यू सो मच यार, आपने भी बहुत ही पहले ये गेस कर लिया था, लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है अरुणी ने गेस किया था. फर्स्ट मैसेज वॉज फ्रॉम अरुणी अबाउट असरानी. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर इन कैरेक्टर गेस. इट वॉज सो मच फन. अगले हफ्ते फिर से लेकर आएंगे कैरेक्टर गेस आपके लिए ऑन ट्यूजडे, जब भी मैं कोई कैरेक्टर के बारे में सोचूंगा.
2: और आप रुजबे को भी ऐसे मैसेज कर सकते हैं किसी कैरेक्टर के बारे में.
3: थोड़ा सा हॉल बना दे.
4: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: 551 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड एशियन फैमिली सर्विसेज के बारे में आपको बता देती हूँ, उनके सपोर्ट के बारे में, कि कई बार बहुत ही नॉर्मल होता है टू फील लो जस्ट लाइक वेदर चेंज, सो पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल। सपोर्ट अवेलेबल है एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। ये फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, सो अगर आपको ज़रूरत है या फिर आप किसी को जानते हो जिसको ज़रूरत है इस समय पर, तो आप उन्हें ये नंबर ज़रूर पास कर सकते हैं। द नंबर इज़ वंस अगेन, एशियन हेल्पलाइन का नंबर है 0800

0: 862-342.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly bogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
1: True Midas.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
3: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
4: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
5: Yes, that's all, thanks, but whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
4: Okay, sorry.
5: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
4: Oh, man.
6: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Workers First Union is accusing Woolworths of corporate greed as it looks to move its customer care centre to Australia. Woolworths says the proposal would support a simpler and more sustainable New Zealand business. A 30-year-old is before the courts over the deaths of two people in Auckland's Wattle Downs last week. The man was in custody for an unrelated offence and has now been charged with 2 counts of murder. David Seymour says patients have spoken and Pharmac has listened. It's making flu vaccines free for children aged 6 months to 5 years, starting from today instead of April next year. The Associate Health Minister expects funding to be available for a while.
8: Given they have judged it to be worth the money now, I see no reason why it would change in the future.
7: Great heights have been reached by the world's only flightless parrot. 90 chicks have officially been included in the kakapo population tally, bringing it to 325, the best in decades. Kakapo recovery manager Petrus Hedman says some won't even be named.
9: Trying to move towards that less intensive monitoring and the sort of more natural state for the kakapo where they are left alone a bit more.
7: To sport, Netball New Zealand boss Jenna Wooten is looking on the bright side over the number of top players heading overseas. She's talking up the new private league as an amazing opportunity for new names and new faces. And to Rugby League with Machinery House and a league of their own, the Warriors match day squad to play the Sea Eagles, coach Andrew Webster would have been mulling over the opportunity to rest some key players and allow those managing injuries to have a week off ahead of the playoffs.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbane. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWN Havel and Omura Jaiku.
10: Let's go! 3, 2, 1.
6: Trend Makers.
12: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
13: Suchit kya jata hai? ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां नांदी फीजी की मिनाची की मृत्यु नांदी में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 2 सितंबर को फीजी समय अनुसार नांदी फीजी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं. ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां नांदी फीजी की मिनाची की मृत्यु नांदी फीजी में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार वेनसडे 2 सितंबर को फीजी समय अनुसार नांदी फीजी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं। ऑकलैंड के आतिश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की माँ, मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी, काम्बा वाइकले लम्बासा के लता लालू महाजन की पुत्री, मैंगरी के अमृत कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 3 सितंबर को सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं। ऑकलैंड के आतिश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की माँ, मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी, काम्बा वाइकले ले लम्बासा के लेट लालू महाजन की पुत्री, मैंगरी के अमृत कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार थर्सडे 3 सितंबर को सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
6: The Drive Show with Sandy and Rizbe.
14: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
13: 6:04 and you're listening to The Drive Show. Trendmakers आपके लिए शुरू हो गया है 1st of September.
15: Yeah, a very very good afternoon to you. वैसे आज स्प्रिंग का पहला डे भी है और आज क्या है वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे
13: है आज और मेरे को लग रहा है हम जब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे को लग रहा है लोग अपना स्पीकर का वॉल्यूम कम कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर अबाउट इट इट्स सो डिफिकल्ट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आज लिखा एक लेटर And I am petrified right now, quite scared.
15: Why?
13: क्योंकि difficult होता है Sandy. और जब for someone who is a talker, उसके लिए letter लिखना किसी के लिए काफी time जिससे बात नहीं हुई है, ऐसा हो जाता है कि तुम बहुत difficult हो जाता है बात करना. मुझे ऐसा लगता है.
15: ये ऐसा होता है. But मेरे को लगता है कि बहुत raw emotions जो है ये निकल के आते हैं जब आप letter लिखने लगते हो. And one beautiful part I realized why राइटिंग द लेटर वॉज कि स्टार्टिंग लिखते समय मैंने नहीं सोचा कि मैं इसको क्या लिखूंगी आई जस्ट केप्ट राइटिंग एंड जो मन में आया वो लिख रही थी देयर वाज नो प्लानिंग इन राइटिंग वो मैंने रियलाइज किया व्हिच इज रियली गुड एक्चुअली
13: एंड दैट इज व्हाट आई आल्सो एंडेड अप डूइंग क्योंकि आई हैड नो प्लान्स एंड देन आई वाज लाइक ओ गॉड आई शुड हैव प्लान्ड
15: इट्स ओके लेटर्स के बारे में यू नो बात करते हैं रुज़बे द ओल्डेस्ट नोन रिटन लेटर वॉज अराउंड 2300 BCE विच इज मोर देन 4300 ईयर्स अगो सो उस समय पर लिखी गई थी वॉज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एक लेटर है जो कि एक और है जो कि क्ले टैबलेट के ऊपर ऐसे लिखी गई है एशियन इजिप्ट स्क्रिप्ट में एक्चुअली में वो लिखी गई है एंड अपेरेंटली द कंटेंट इज क्वाइट रिलेटेबल बिकॉज उसमें रूलर्स कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट डिलेड गिफ्ट पोलिटिकल प्रॉब्लम्स लॉयल्टी एंड पीपल नॉट डूइंग व्हाट दे प्रॉमिस्ड
13: अच्छा
15: सुना तुमने
13: मैंने सुना कि ये सारी चीजों के बारे में लेटर
15: लिखे अभी लेटर मत लिखो अभी तुम सुनो
13: मैं नहीं लेटर लिख रहा हूँ यार मैं सुन रहा हूँ ये सारी चीजें आप कुछ
15: क्या
13: ये,
15: क्या बोला मैंने अभी
13: कि पहले जो 1800 में ने कभी नहीं जो भी साल में जो पहले लेटर कौन सा साल में लिखा था
15: ये 1350 BCE
13: बाप रे BCE क्या होता है बिफोर क्राइस्ट
15: ईवी है अच्छा तो मोर देन 300 क्ले टैबलेट्स जो है ये डिस्कवर की गई है क्ले टैबलेट्स एंड वो जो क्ले टैबलेट्स है उसमें जो लेटर्स लिखी गई है इज़ वेरी रिलेटेबल टू टूडेज टाइम एज वेल रूलर्स के कंप्लेन है उसमें अबाउट डिलेड गिफ्ट पोलिटिकल प्रॉब्लम्स लॉयल्टी एंड पीपल नॉट डूइंग व्हाट दे प्रॉमिस्ड ये कंटेंट है बेसिकली उनका
13: तो वही है कि मतलब ज्यादा एवोल्यूशन हुआ नहीं है वैसे देखा जाए तो जो तभी के
15: एवोल्यूशन हुआ है लेकिन एवोल्यूशन नहीं हुआ है
13: मतलब जो तभी के प्रॉब्लम्स है वो भी अभी के प्रॉब्लम्स है
15: यस तो या आपने लास्ट टाइम कब लेटर प्रॉपर लिखी थी, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 इज द नंबर। और आज लेटर वाले गाने ही आप सुनोगे।
13: इस पूरे घंटे हम आपको टॉर्चर करेंगे, लेटर वाले इतने गाने सुनाएंगे आपको कि आपको मजबूर करेंगे बाय द एंड ऑफ द शो कि आप लेटर लिखो किसी को।
15: सो कोई भी जो गाना भी आप सुनोगे इस आवर में, उसमें या तो लेटर का जिक्र है या फिर उस गाने की पिक्चराइजेशन में, वीडियो में लेटर्स के बारे में बात है।

0: Trend Makers.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
4: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
10: Please use your imagination for the following ad.
11: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like, and once I'd calm down, I'd actually do something like,
10: imagine winning $25 million this Wednesday. Play in store or online.
12: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura J.
17: Trendmakers mein aaj hum aapke liye on the occasion of World लेटर राइटिंग डे आपके लिए चिट्ठी वाले गाने लेकर आ रहे हैं
18: एंड कुछ फैक्ट शेयर कर रहे हैं चिट्ठियों के बारे में लेटर्स के बारे में तुम बता रहे थे ना रुस्बे कि बहुत फर्क पड़ता है जब आप लेटर्स लिखते हैं एफर्ट लगता है मतलब किसी को ऐसा कम्युनिकेट होता है कि यू मैटर टू मी बिकॉज आप उसमें एफर्ट ले रहे हो यू आर नॉट जस्ट सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज सेंडिंग एन ईमेल आप एक्चुअली में टाइम लगा के लिख रहे हो
17: मुझे लग रहा है आज के जमाने में और भी ज्यादा वैल्यू ये होल्ड करता है बिकॉज मैं काफ़ी बार ना ईमेल्स और मैसेजेस को अनफॉर्चुनेटली भी ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एआई पे तो नहीं लिखा कुछ भी लंबा देखता हूँ ना मैं तो मुझे डर लगता है कि अरे यार ये एआई ने तो नहीं लिखा है एटलीस्ट जब मैं हैंड रिटन अगर कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे उतनी तो अश्योरेंस है कि ये मैंने लिखा भी खुद के दिमाग से ही है हाँ मतलब करने कॉपी करने को कॉपी भी कर सकते हैं कोई लेकिन उसमें क्या फन है ना
18: उसमें फन नहीं है
17: उसमें मजा ही नहीं आएगा
18: या तो एंड आल्सो बिकॉज़ व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस या ये सब चीजें तो कभी भी डिलीट हो सकती है बट लेटर जो आप लिखते हैं वो किसी के पास रहता है एज अ मेमोरी
17: बट वो भी कचरे के डब्बे में जा ही सकता है ना सैंडी
18: लेकिन सेंटिमेंटल वैल्यू होती है वो
17: भी
18: सो मतलब वो एक अगर कोई सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है उसको तो वो रखता है उसको मैंने अपने बचपन के ग्रीटिंग कार्ड्स अभी तक रखे हुए हैं बर्थडे कार्ड्स एंड ऑल दैट वो अभी भी है
17: मैं होप करूंगा कि वो फाड़ दे मेरा लेटर जिसको मैं भेज रहा हूँ अभी है।
18: एनीवे आप भी बताइएगा अगर आज आप लेटर लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं, शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पर।
17: यस आर पर्पस इज के एट द एंड ऑफ द शो एटलीस्ट हमें 5 लोग अगर यहाँ पे बोल देना कि भाई हम लेटर लिखने वाले हैं।
18: सो ये हमारा मिशन आज का सक्सेसफुल।

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. वैसे उदित नारायण की आवाज में जो गाना आप सुन रहे थे, इस गाने को भी बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद किया था. एंड इस गाने में भी काफी लेटर का ये हुआ था ना. We're talking about वीर ज़ारा का गाना.
1: Oh yeah, yeah. इसमें भी letters का सिलसिला, because इसमें then एक दूसरे को याद करते हैं वो. On the ending note, you know, जैसे मैं history पढ़ी letters के रुस्बे कि पहले clay के ऊपर लिखा जाता था, then you know और भी चीज़ें आई जिसके ऊपर लिख के जो messages
0: हैं, दीवारों पे भी लिखते थे,
1: दीवारों पे भी लिखते थे, भेजे जाते थे messages, जो भेजे भी जाते थे different different चीज़ों के ऊपर लिख के भेजे जाते थे, paper, email, WhatsApp, कुछ भी चीज़ें ये सारी की सारी आई. There always have been a way to communicate. तो किसी ने कभी वो नहीं किया कि यार कम्युनिकेट करना है कैसे करें, चलो छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते इसके बारे में. कम्युनिकेशन का कोई ना कोई जरिया हमेशा से ही रहा है.
0: दैट्स अ डीप मैसेज, अंडरलाइंग मैसेज, जिसका मतलब ये है कि चाहे आप लेटर ना लिखो, कुछ और ना करो, बट कोई ना कोई जरिए से आज कम्युनिकेट जरूर कर लेना.
1: या
0: अगर आप लेटर लिखने में अभी भी क्या हिचकिचा रहे हो, तो एटलीस्ट find a way of your way of communicating with your loved ones today. काफी बार ये हो जाता है सैंडी, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते ना, हमें ऐसे लगता है कि छोड़ो यार ये कहाँ पे ये बोलूँ, इसका फिर ये बवाल हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा. बट
1: हम सब ये करते हैं, मैं भी करती हूँ, वी ऑल डू दिस. कई बार हेजिटेशन होती है कुछ पूछने की कि ये पूछा तो शायद नहीं सही रहेगा, तो लिव इट. तो मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन इज द की, वो सही है. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते किसी से, नहीं पता चलेगा.
0: इसका एक अलग टेक भी मैंने देखा है, कोई एक रील में एक कपल को पूछता कि वो 40 साल हो गए थे उनके शादी के, कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ यू नो 40 इयर्स ऑफ लिविंग टुगेदर, 40 इयर्स ऑफ हैप्पीली मैरिड. तो आंसर रिप्लाई में आंसर आया कि वी डोंट कम्युनिकेट.
1: जोक अच्छा है, बढ़िया, इट्स सैड.
0: सो या जोक अच्छा है, बट वो ये कि एक्चुअली मैं रियलिटी में
1: यू नॉट कम्युनिकेटिंग अ रिलेशन ही कैसा है फिर वो.
0: सो दैट डजंट, दैट आई डोंट नो इफ दैट वुड स्टिल बी कंसीडर्ड एज हैप्पी, बिकॉज आई फील हैप्पीनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन
1: एंड नोइंग व्हाट अबाउट ईच अदर ना, नॉट जस्ट इन रिलेशन, इवन इन फैमिली. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप सिबलिंग्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में कितनी चीज़ें अनसेड रह जाती है.
0: एंड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट राइटिंग लेटर्स और टॉकिंग और यू नो डूइंग एनीथिंग, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल.
1: या
0: यू कुड कम्युनिकेट इन वेरी डिफरेंट वेज.
1: या लव लैंग्वेज होती है किसी की,
0: वही. सो या आज हम उसी चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाह रहे थे. तो होपफुली आपने गाने एंजॉय किए और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अंदर से ये हुआ कि चलो आज कम्युनिकेट कर ही लेते.
1: तो लिखिए किसी को. इसी नोट पे आपको यहाँ पे हम कहते हैं टाटा बाय बाय. आपसे मुलाकात अब कल होने वाली है 3 बजे.
0: जी, अपना ख्याल रखिएगा एंड वी विल सी यू सून. बाय
1: बाय.

0: आज आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: हम एक्यूरेट ट्रैफिक,
5: ऑकलैंड होम शो 10 to 13 September.
6: No delays along most major routes now. Cloudy and windy with some fine spells through the night, down to a low of 12 for Auckland. To Constellation Drive along the northern, 20 minutes, and just under half an hour to Silverdale. It's no longer busy getting out of the city, and the Harbour Bridge is looking okay. To Massey, just over 15 minutes through the northwestern, through Grey Lynn and Rosebank is looking good now. And to Monaco, 25 minutes, and 35 minutes to Drury.
5: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for dad at Bunnings. Available in-store and online.
10: Bunnings Warehouse.
11: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
12: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening to you with the latest at 7. I'm Jeff Bryan. Cervical screening is about to become free for most women. The government's announced that from March next year, those aged 25 to 69 won't have to pay for the test. It's currently only free for some, including Māori and Pacific women in that age group. The change means an additional 786,000 women will be eligible. Maritime NZ has launched an investigation after a death at Wellington's port. Centre Port confirming this morning's incident involved an independent stevedore. The number of people killed in last week's Nepal-China flash floods has topped 1,000. More than 4,000 remain unaccounted for. Rescue teams are racing to find workers feared trapped inside hydropower tunnels. An Australian redeveloping Auckland's Waiwera Thermal Springs says it feels good to restore a place enjoyed by generations. There are plans to complete the $58 million project by mid-2028. Joint Managing Director Brandon Battergall told RNZ he's been eager to revive the destination.
14: Sure, it has to be commercially viable, but more importantly, you know, just build something and develop something that people love and want to keep coming back to.
13: In sport, the Warriors match day squad to play the Sea Eagles late on Saturday afternoon. Tamaira Martin and Chanel Harris-DeVita plus fullback Charles Nicol Klokstad have been called up. Veteran forwards Wade Egan and Kurt Capewell have been rested. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And at the US Tennis Open tomorrow, a first chance to gauge the form of men's top seed Alex Zverev and women's fourth seed Coco Gauff.
15: Sports News.

0: Happy Hour on Hum.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
2: Pick up a treat and a Smig bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Gym, swim, and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.

0: Happy Hour on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
8: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
9: You don't need your toilets clean, do you?
8: Find a cheaper mechanic? Pretend you're talking about.
10: Pretty sure the carbonara's playing up.
8: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
10: Cheer, Midas!
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
14: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
15: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
16: Indelible Homes, your building expert.
17: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
18: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है।
17: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया। Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
19: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
0: Hum, time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
20: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. The Labour Party now says the head of the Ministry of Business, Innovation and Employment's position is untenable. Parliament's Privileges Committee last week ruled Nick Blakely and a former colleague had deliberately misled MPs about the status of a bungled multi-million dollar IT project. From March next year, cervical screening will be free for all women aged 25 to 69. The government says the change will benefit an additional 786,000 women. Parents and caregivers are being encouraged to jump on free flu vaccines. All children aged between 6 months and 5 years old are now eligible for a funded flu jab. In sport, the chance was there for Warriors coach Andrew Webster to rest many of his regulars on Saturday against the Sea Eagles. Just Wade Egan and Kurt Capewell have the chance to freshen up for the playoffs. Rugby league with Machinery House and a league of their own. And Black Cap Glenn Phillips made his presence felt in the Caribbean Premier League cricket this afternoon. He pulled off an outrageous one-handed boundary catch as his Guyana Amazon Warriors beat the Knight Riders by 9 runs.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
21: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन, मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए। बहुत कुछ मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए। आज ट्यूसडे है, फर्स्ट सितंबर आज है, तो ऐसे में जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं आपका खास स्वागत है। इंटरेस्टिंग और प्यारे गाने मैं लेकर आऊँगा आपके लिए आज नाइट कैफे में। रात 12 तक हमारा साथ रहेगा, लेकिन अभी से लेकर रात 9 तक आपके लिए हम लेकर आने जा रहे हैं योर फेवरेट, हम सबका फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट, कोक स्टूडियो रीलोडेड। वेलकम एवरी वन टू कोक स्टूडियो रिलोडेड। एक के बाद एक आपके फेवरेट ट्रैक्स हम लेकर आते रहेंगे कोक स्टूडियो रिलोडेड में। कोक स्टूडियो पाकिस्तान और भारत के सॉन्ग्स आपके लिए रहेंगे। आज कुछ स्पेशल करेंगे, अलग अलग जो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है कोक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान में, उनके बारे में जानकारी देंगे। कौन कौन है ये आवाज़ें जो आप सुनते आए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है टू मेक कोक स्टूडियो वे इट इज़ टुडे, तो इस पर आज हम बातें करेंगे। आज आपका स्वागत है, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। वेलकम टू द शो।

Reloaded. You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai, Coke Studio Reloaded aapke liye jaari hai. Aur aaj Coke Studio Reloaded mein, hum kuch Coke Studio Pakistan aur singer aur Bharat ke singers ko salam kar rahe hain. Abida Parveen ko aapne shayad suna hoga. Ye legendary Pakistani Sufi singer hai. Aur bahut hi famous hai ye for singing Sufi poetry aur devotional music. Inke paas bahut hi powerful voice hai jo inko one of South Asia's most respected artists mein se ek ये कहलाती है और इन्होंने काफ़ी टाइम कोक स्टूडियो पाकिस्तान के शोज़ में अपीयर हुई है. तो झूम ये इनका एक गाना है विद नसीबो लाल, एक बहुत ही फेमस कोक स्टूडियो परफॉर्मेंस इनका रहा है. कुछ देर में अली सेठी पर बातें करेंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो कोक स्टूडियो रिलोडेड.

0: la rajuli bewalu la
1: Night Cafe on Hum.
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie.
7: Nah, all good.
6: Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
4: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahe. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain, to aapko milta hai peace of mind. Ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: Hum. Night Cafe on Hum.
10: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए. आपको बस हमारा साथ देना है और ऐसे ही रात 9 तक ये चलता रहेगा. 12 तक नाइट कैफे में मैं आपका साथ दूंगा. अली सेठी एक और पाकिस्तानी सिंगर है, सॉन्ग राइटर और सभी ये है. इनका म्यूजिक कॉम्बाइन करता है क्लासिकल, फोक और कॉन्टेम्प्रेरी साउंड जस्ट लाइक कोक स्टूडियो डज. ये इंटरनेशनली फेमस हुए थ्रू पसूरी. इनफैक्ट ओवर द वीकेंड में पसूरी का जो वीडियो है ये देख रहा था. अमेजिंग अमेजिंग पिक्चराइजेशन हुआ है और इसका परफॉर्मेंस पसूरी में शाही गिल के साथ हुआ है कोक स्टूडियो पाकिस्तान में. ये मेजर ग्लोबल हिट हुआ है और स्पॉटिफाइज ग्लोबल वायरल 50 में से ये सॉन्ग रखा गया है. शाही गिल पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम सलाम करेंगे, आज नहीं कर पाए पूरे लिस्ट को आपको बताना, तो अगले हफ्ते भी लेकर आएंगे. यही मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: कोक स्टूडियो रिलोडेड में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। शाई गिल पर बातें करेंगे आज। शाई गिल पाकिस्तानी सिंगर है जो वाइडली नोन हुई है फॉर हर कोक स्टूडियो परफॉर्मेंसेस और डिस्टिंक्टिव सॉफ्ट और सोलफुल सिंगिंग स्टाइल इनका है। इनका जो मेजर ब्रेक थ्रू रहा विद पसूरी, नाउ आई रियलाइज ये कौन है, क्योंकि वीडियो में अगर ये नज़र आई है तो आई सीन है एंड शी इज़ गॉट अ वेरी वंडरफुल अपियरेंस और इनका वॉइस भी बहुत ही प्यारा है। इन्होंने पसूरी में ब्रेक थ्रू पाया और इन्होंने अली सेती के साथ में परफॉर्म किया और पसूरी ने इनको इंट्रोड्यूस किया टू हर म्यूज़िक टू द ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड और यहाँ पर लोग इनके बहुत ही बड़े फ़ैन बन चुके हैं। कोक स्टूडियो रिलोडेड में आज के लिए बस इतना ही। एक और प्यारा गाना आपके लिए।

0: driving you home?
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल 8.6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा कीवीज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स GWM मेलोकाओ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
11: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
12: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
11: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September.
13: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
11: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
14: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
15: Sorry about that.
14: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
16: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Ryan. A union is accusing Woolworths of corporate greed as it looks to move its customer care centre to Australia. Workers First says 130 jobs are on the line. Woolworths says no decisions have been made. Maritime NZ has launched an investigation after a worker died at Wellington's harbour port this morning. It says the death is the first at a major commercial port since 2022. Social Development Minister Louise Upston has apologised after an unknown number of benefit payments were wrongly suspended following a law change that makes some claimants reconfirm their circumstances each year. In sport, coach Andrew Webster has resisted any thought of putting a host of regular warriors in cotton wool for the playoffs. Experienced halves Tamira Martin and Chanel Harris-Tavita, plus fullback Charles Nicol Klokstad, have been called up. Veteran forwards Wade Egan and Kurt Capewell rested. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And Netball New Zealand boss Jenna Wootton is looking on the bright side over the number of top players heading overseas. She's talking up an amazing opportunity for new names and new faces.
1: Sports News,
16: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum, playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe on Hum.
16: Aapka Moment, Krish ka Magic, only on Hum.
18: वेलकम बैक एवरी वन. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूं. इस घंटे पर आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर आएंगे, बस आपको हमारे साथ चिपके रहना है, हमारा साथ देते रहना है, क्योंकि एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम आप आपके लिए पेश करते रहेंगे. बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनाने का टाइम आ चुका है, ये आप एंजॉय करें. बहुत ही बेहतरीन लिस्ट है विद ग्रेट म्यूजिक जो आपके लिए हम पेश करेंगे. एंजॉय एवरीवन.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका नाइट कैफे में और रात 12 तक ये आपके लिए चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं हमारे पास है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 29th अगस्त टू 4th सितंबर एट द केव 5/57 केवेंडिश ड्राइव मनुकाउ ऑपोजिट वेयर हाउस फ्रॉम 7:30 PM. इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू मनुकाउ सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं श्री जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो 29th to 4th September रहेगा एट रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू मनुकाउ फ्रॉम 7:30 PM. साथ ही में न्यूजीलैंड संगम NZ संगम इज प्लीज टू इनवाइट कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सारी डिवोटीज को जो 28th August to 4th September रहेगा डेको ऑफ एलिगेंस में 16 लेम्बी ड्राइव मनुकाउ 7:30 PM से ये पूजा शुरू होगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. साथ ही में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन द्वारा सादर आमंत्रण है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो 29th August से शुरू होगा और ख़त्म होगा फ्राइडे 4th September. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
12: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
13: Indelible Homes, your building expert.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Unfiltered Drive, Sunna Na Bhule with Cindy and Ruzbe. 100 years of resilience, migration or identity topic par baate hogi. How did the Punjabi community help shape the fabric of modern New Zealand over the last century? Ye bahut interesting topic par baate ho rahi is episode mein. Harjot Singh, presenter, researcher hai. Aur saath mein Gagan Sandhu, director hai. The creators behind the groundbreaking documentary Punjab to Aotearoa. ये इन दोनों के साथ में बातें होगी और ये दोनों से बातें होगी अबाउट अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ करेज सेक्रीफाइस जो जनरेशंस ऑफ पंजाबीज आए हैं अपने सपनों को लेकर अक्रॉस द ओशंस टू रीबिल्ड देयर लाइव्स इन न्यूजीलैंड और एपिसोड में डिस्कस होगा 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ पंजाबी माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पायनियर्स हु पेव्ड द वे Research and passion behind bringing these untold personal stories to the screen or embracing your new home's culture while honoring your roots creates a true belonging. Text kare drive 5599 per full audio ya phir search kare unfiltered with Sandy and Ruzbe on Rover or Spotify aur ye jo wonderful Unfiltered Drive podcast का जो लिंक है आपको मिल जाएगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम आपके साथ चलता रहेगा और we will be playing Bollywood's biggest hits for you

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, एक एक करके आपके favorite songs हम पेश करते रहेंगे. हम boarding call is now open. Dream Island Escape can just be one boarding call away. To return your tickets, जीतने का मौका है to Vanuatu with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money भी आपको मिलेगा. Isn't that great for you? आपको बस हम सुनते रहना है. Special boarding call announcement के लिए सुबह 8 बजे, 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे. जैसे आप सुनते हैं, आपके पास 60 minutes का मौका रहेगा to head to Rover and type board now and click submit. Text BC to 5599 to get competition page link. और that's it, यही आपको करना है और unforgettable Vanuatu getaway जीतने का मौका आपके पास रहेगा. Thanks to Solomon Airlines for flying 4 times each week, non-stop from Auckland to Vanuatu. और visit flysolomons.com for more information. और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए terms and conditions apply होते हैं जो हमारे website पर आपको मिल जाएगा. सुनते रहो हम.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas. A very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे? एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डेड बनाएं और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर हम 104.2 FM पर. और अपने डेड को टैग करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डेड्स फोटो और कॉम्पिटिशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कॉम्पिटिशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज़ को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज़ को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रॉ होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप ज़रूर बनाएं द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है. डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा. क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट. हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज किबरी, या फिर वॉट एग्जैक्टली इज एन ईसिम. इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे. डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर दी क्वेश्चंस. अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. 4 सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे. इमेजिन कीजिए, $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है. सो वी वांट टू नो, इज़ योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स, या फिर इज ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं. डैड को कहिए कि वो हम सुनते रहे और गेट हिम टू आंसर क्वेश्चन और वो $500 रिचा हो सकते हैं दिस फादर्स डे. ड्रॉ 4 सितंबर को होगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone. This is our final hour और Night Cafe आपके लिए 12 तक चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास इस घंटे पर आपके साथ शेयर करने के लिए है. तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ऑनलाइन लिसनर्स, आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एन्जॉय एवरीवन एंड वेलकम टू द शो.

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. कुछ सामाजिक सूचना है जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे. आईटरोवा सनातन संगम संस्था श्री जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं. कथाकार है पंडित कृष्णील और शेखर महाराज और 29th अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये होगा 7 PM टू 9 PM और वुमेन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग आपको पहुँच जाना है 2 सटन क्रेजेंट पापटोए और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है. साथ में श्री हनुमान मंदिर नोट शो में कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस 29th अगस्त टू 4 सितंबर होगा और जन्माष्टमी महोत्सव 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम 12 AM टू 12:30 AM और ऐसे ही कुछ और जानकारी हमारे पास है कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: कैफे ऑन हम।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, जन्माष्टमी का पर्व भी जारी है, भगवान कृष्ण की जय जयकार सभी जगहों पर हो रही है, तो ऐसे में जन्माष्टमी का महोत्सव माँ दुर्गा टेम्पल में भी मनाया जा रहा है पापाटोए 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापाटोए 7 PM to 8:30 PM आपको जाना है। फ्राइडे 4 September को यहाँ पर होगा जन्माष्टमी का महोत्सव, 8:30 PM to 12 AM सेलिब्रेट किया जाएगा 4 September को, तो आप भी भाग ले सकते हैं। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दिया जा रहा है। कृष्ण के साथ सुनते रहो हम प्लेइंग।

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल वेंसडे नाइट. मिडवीक मसाला लेकर आएंगे आपके लिए. हैव अ गुड नाइट एवरीवन. कल मिलते हैं.

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: flight on Hum. तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai. Night.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबी, ओनली ऑन हम।

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Budget gaane

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लव यू अनकंडीशनली सोनिया.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.

0: Stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम Playing Bollywood's biggest hits.

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा कीवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or सर्च PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
3: डॉक्टर ने क्या बोला
5: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
3: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
6: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
0: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, बीरी। कॉल 24/7 ऑन 09278860.
9: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: Media Works Complaints, how can I help?
11: Yeah, hello?
10: Hi.
11: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
10: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
11: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
10: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
11: Great, sing it to me.
12: Advertise with
13: Media Works.
12: New Zealand listens to us.
14: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
15: हाँ। अच्छा
14: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
15: मिसेस सिंह,
16: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
17: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
0: हम टाइम चेक।
3: गुड मॉर्निंग, इस समय एक मिनट बाकी है 6 बजने में।
0: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A sigh of relief that free flu vaccines for under fives is being rolled out now. It was initially set to start next year. Dr. Luke Bradford from the College of GPs says they wrote to officials last week.
19: It's very virulent. We're seeing huge numbers and there's things we can do to help. We asked for a broader vaccination coverage and they've acted.
18: Nearly 800,000 more women are expected to benefit from free cervical cancer screening. It will apply to all 25 to 69-year-olds from March. Minister Nicola Grigg says they have plans to eliminate the disease.
20: We've also set another goal underpinning that, which is to ensure that we've got about 90% of our 15-year-olds vaccinated by 2035.
18: The government's rates capping bill has taken its first step. It would require local councils to keep annual rates increases within 2-4% and passed its first reading. The Finance and Expenditure Committee will now consider the bill. Baby boutique Nature Baby has urgently recalled one of its stretch and grow suits over fears it poses a choking hazard. It points to a detached dome fastening on the merino kimono pointal garment. The recall covers those sold between the end of February and August 27th. In sport, the scrum debate rages on ahead of Sunday's crucial third test between the All Blacks and Springboks in Johannesburg. South African scrum coach Dan Hooman says there's plenty of experts all of a sudden.
21: It's quite interesting. It looked like every second guy is becoming now a scrum coach, which is good. It's always open to the public.
18: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now. And the Warriors are resting Wade Egan and Kirk Capewell for Saturday's NRL game against Manly at Mount Smart.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
3: सूचित किया जाता है कि रविचंद के पुत्र यानी भावना के पति अर्पिता के पिता ग्लेन एडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे वाइकुमेती शमशान भूमि में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप अर्पिता को 021-089-01860 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, रविचंद के पुत्र यानी भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन एडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे वाइकुमेते शमशान भूमि में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप अर्पिता को 021-0890-1860 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि नीरज और ताशा की मां यानी 8 माइल्स नसीनू फीजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप ताशा को 02100-738-400 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, नीरज और ताशा की मां यानी 8 माइल्स नसीनू फीजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप ताशा को 02100-738-400 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी यानी कांबा वंगेले लंबासा फीजी के स्वर्गीय लल्लू महाजन की पुत्री मैंगरी के अमृत कुमारी उर्फ मिक्का की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां मैंगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी कांबा वंगेले लंबासा के स्वर्गीय लल्लू महाजन की पुत्री यानी मैंगरी की अमृत कुमारी उर्फ मिक्का की मृत्यु मिडलमो हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 55 एश ग्रोव रोड मैंगरी जा सकते हैं या 021-911-128 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां गेलेलोआ नेंडी फीजी के मिनाची की मृत्यु नेंडी फीजी में हो गई. अंतिम संस्कार आज फीजी समयानुसार नेंडी फीजी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, ऑकलैंड के गोविंद गाउंडर तथा नारायण सामी की मां यानी गेलेलोआ नेंडी फीजी की मिनाची की मृत्यु नेंडी फीजी में हो गई. अंतिम संस्कार आज फीजी समयानुसार नेंडी फीजी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-029-5506 पर कॉल कर सकते हैं.
22: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
23: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 11.5 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज रहेगा. आज कुछ बादल छाए रहेंगे, दिन भर रहकर कुछ हल्की बारिश होगी. सनराइज 6:40 AM पर यानी जब 20 मिनट रह जाएंगे 7 बजने में, और सनसेट शाम 6:02 पर होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up.
3: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 6 minute ho rahe hain isme hamare studios mein 6 bajkar. Aur aaj September mahine ka dusra ye din. Aap sabhi ko bahut bahut baar mubarak ho.
2: A very good morning and welcome. Aapko hum kehna chahenge aaj की सुबह साथ देने के लिए आपका हम आ गए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा. उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा. वैसे कल हालांकि द टेम्परेचर्स वेंट अप टू 15 और समथिंग लाइक दैट. आई कांट एक्चुअली रिमेम्बर कितना था,
3: बट काफी ठंडी थी यार कल तो.
2: इट वाज वेरी चिली.
3: आई नो. एंड ये जो मौसम है, द वेदर दैट्स समटाइम्स क्वाइट कोल्ड, समटाइम्स नॉर्मल, sometimes bearable, sometimes unbearable. यार ये तबीयत बहुत खराब करती है, पता है.
2: Exactly. So, ख्याल रखें अपना आप. और अब 4 घंटों का ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश सफर होगा. और आपके लिए तमाम जानकारियां, इनाम जीतने के बेशुमार मौके, और साथ ही में आपके मन चाहे गाने जो है ये हम लेकर आ चुके हैं.
3: बिल्कुल. और आज तो इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपके लिए हम जो कॉम्पिटिशन लेकर आएंगे इसमें तो आप पार्ट ले सकते हैं इनाम जीतने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड फॉर सम फन, सम मस्ती हमारे साथ भूलिएगा नहीं. आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस करने का मौका रहेगा. साथ ही साथ आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म ये भी हम लेकर आएंगे. एंड वी विल सी हाउ यू आर डूइंग इन दैट. फिलहाल चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको कहते हुए आज का पहला ये गाना आप सबके नाम.

वैसे 11 मिनट हो रहे हैं इस समय हमारे स्टूडियोज में 6:00 और आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं ब्रेकफास्ट केचप, आपके गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी आए उसके लिए थैंक यू सो मच मिस्टर माटामाटा, आपको भी अ वेरी हैप्पी वेंसडे, और उसके अलावा मैंडी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह याद करने के लिए, राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी, और हमारे पास सुबह सुबह अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये भेजने के लिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच.

0: Sunnyside Up.
1: Yaar, aaj ki Sunnyside Up story is absolutely beautiful and I wish I could have ever encountered something like this in my life also. But hai badi khoobsurat kahani. Kabhi aapke saath aisa hua ki aap kahin bahar ghoomne phirne gaye ho and suddenly you felt like you clicked with a stranger. Shayad kisi restaurant mein baithe ho aap aur apni family ke saath ya khud ke saath aap apna time spend kar rahe, enjoy kar rahe hain. And there is a stranger next to you jo खुद बैठे हुए हैं एंड यू एक्सचेंज स्माइल्स एंड वहां से कोई कनेक्शन बनाओ, ऐसा कभी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया?
2: नहीं, मैंने तो नहीं किया.
1: Sounds a bit unusual and unbelievable, na?
2: Yeah.
1: But apparently, aaj ki hamari Sunnyside Up story is something very similar. Promises are meant to be kept is what we learn from this. Aur ye kahani hai February 2024 ki. Ek mahila jinka naam hai Erin Jackson. She was 32 years old in 2024 in the month of Feb. और वो अपना बर्थडे मना रही थी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में, जब उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन जो है ये उन्होंने क्रिएट किया विद अनदर पर्सन जो उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो अपना टाइम जो ये एंजॉय कर रही थी. उनका नाम था सू, अ वुमन इन हर 70s, और वो वहाँ पर नियर बाई टेबल पर खाना खा रही थी. जब ये दो स्ट्रेंजर्स जो हैं, they felt like connected, they spoke to each other, introduced kiya ek dusre ko, they spent the evening talking and quickly wo connection jo hai inka aur gehra hua. So before leaving unhone ek bada unusual sa vaada jo hai ye kiya. Unhone vaada kiya ki wo dono wapas aayenge isi restaurant on the 27th of December theek 7 baje aur fir mulaqat karenge. February ka mahina tha na, aur December mahine mein wo wapas se milenge 7 PM, 27th of December, date और time जो है ये fix था और location वही restaurant जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई. और उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे से ना तो phone numbers exchange किए, ना तो social media account handles जो है ये exchange किए, किसी तरह का communication नहीं रखेंगे उतने दिनों तक. ये unusual सा उन्होंने एक दूसरे से promise किया. Now came the date 27th of December. जब वो दिन आया 10 months बाद, Erin जो है ये न्यूयॉर्क गई अपनी पूरी फैमिली के साथ. वो किसी और स्टेट में रहती थी, वहां से शी टुक अ फ्लाइट एंड फ्लू टू न्यूयॉर्क अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जस्ट टू कीप हर प्रॉमिस जो उन्होंने सू से किया था. और जब वो उस रेस्टोरेंट पहुंची तो सू वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी और उनका इंतजार कर रही थी. द टू ऑफ देम रिकग्नाइज्ड ईच अदर इंस्टेंटली और एक्साइटमेंट में उन्होंने चीखना चिल्लाना एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया. एंड दैट इवनिंग दे स्पेंड द टाइम टुगेदर. इवेंचुअली उन्होंने नंबर्स भी एक्सचेंज किए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स भी एक्सचेंज किए और वहाँ से उनकी गहरी दोस्ती जो है ये शुरू हुई, जिसकी खबर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली. और फिर आज 2026 में बैठे हम के इस स्टूडियो में हम इनकी फ्रेंडशिप के बारे में बातें कर रहे हैं.
2: दैट्स अमेजिंग,
1: दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी.
2: तो ऐसे हर सुबह कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और थोड़ी देर बाद न्यूज हेडलाइंस. पंजाब पुलिस में एक ऑफिसर जो है इनको बर्खास्त किया गया था जेल में, लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू को लेकर. इस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हाथ लगे हैं, ये हम आपके लिए लेकर आएंगे.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: देखो हम आ गए.
5: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
6: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
5: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
6: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
5: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: इंडिया कम्स टू टाउन अयोध्या रोवा का फील ही कुछ अलग हो जाता है. क्रिकेट नेशन के प्री सेल में शामिल हो nzc.nz पे और अपने टिकट सबसे पहले बुक करो, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है ब्लैक कैप्स वर्सेस इंडिया.
0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
8: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
9: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
10: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
9: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 4th September.
11: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
12: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
13: Flooring Extra. Adore your floor.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best. Hamari good brands mein.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win.

0: होने का खतरा अब भी बना हुआ है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने बताया है कि कल यूएस मिलिट्री ने ईरान के कई टारगेट्स पर नए हमले किए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग और अमेरिकन ट्रूप्स पर हुए अटैक अटेम्प्ट्स का जवाब है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने इस रिटेलिएटरी अटैक का जवाब दिया तो उसे और भी सीवियर मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ेगा, जबकि ईरान ने बदले की बात कही है। भारत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू केस में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने डिसमिस्ड डीएसपी गुरशेर सिंह संधु को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार के डिसमिसल ऑर्डर को रद्द कर दिया है। संधु को 2 जनवरी 2025 को आर्टिकल 311 के तहत जॉब से निकाल दिया गया था। उन पर कस्टडियल कस्टडी के दौरान बिश्नोई का टेलीवाइज्ड इंटरव्यू फैसिलिटेट करने और इनडिसिप्लिन का आरोप था। हाईकोर्ट द्वारा सरकार के इस एक्शन को रद्द किए जाने से संधु को बड़ी राहत मिली है और अब डिसिप्लिनरी एक्शन की लीगलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। फिजी के लोग लगभग हर दिन 10 ग्राम नमक यानी सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 5 ग्राम की रिकमेंडेड लिमिट से दुगना है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है। कंज्यूमर काउंसिल की प्रोजेक्ट ऑफिसर निशालनी चंद के मुताबिक हाई सोडियम को काउंटर करने के लिए पोटेशियम एनरिच्ड सॉल्ट लाना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाई प्राइस और लिमिटेड सप्लाई इसकी बड़ी चुनौती है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि इस नए लोज के कि नए लोज बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ही मैंडेटरी लेबलिंग और रिक्वायर्ड फूड स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट्स सॉकर टूर्नामेंट के शुरुआती पूल गेम्स में एक्स्ट्रा सुपरमार्केट लंबस के स्ट्राइकर क्रिस्टोफर वासासाला और दयाल स्टील्स मबा के स्टार एतोनियन दोंगलाउ खेलों को मिस करने वाले हैं। फिजी फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ ने कन्फर्म किया है कि प्रीमियर लीग गेम्स के रेड और येलो कार्ड्स इस टूर्नामेंट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिससे रेवा के खिलाफ डायरेक्ट रेड कार्ड पाने वाले दोंगलाउ और वससल पहले 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा ऐमान मोहम्मद और रेमुरे तकियते पर भी एक एक मैच का सस्पेंशन है। टूर्नामेंट की शुरुआत इसी शुक्रवार को होगी और पहले मैच में सुबह नावुआ का सामना करेगा। जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वैसे सोनाक्षी सिन्हा, मुदस्सर अजीज और जस्सी गिल की आवाजों में ये गाना आपके लिए हम लेकर आ रहे थे. अ रिक्रिएशन जो किया गया था फॉर द मूवी हैप्पी फिर भाग जाएगी, 2018 में फिल्म आई थी.
1: अभी देखिए लगभग 5 महीने पहले इनके जो फैंस हैं ये काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कल ऐसा कुछ सामने आया जिसके बाद सभी बहुत निराश हुए हैं.
0: ऐसा कौन है ये, आई मीन ऐसा क्या हुआ और कौन है ये?
1: बादशाह
0: क्या हो गया?
1: और ईशा रिखी.
0: Oh, I think I've read about them. उन्होंने mutual agreement के through separate होने के बारे में सोचा है ना?
1: Yes.
0: और 5 महीने पहले इनकी शादी हुई थी.
1: हाँ, just a couple of months ago, थोड़े कुछ महीने पहले इनकी शादी जो है ये हुई थी. और मालूम नहीं कि ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच, लेकिन दोनों ने प्राइवेसी की मांग जो है ये की है. और बादशाह ने एक स्टेटमेंट जो है इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि आई एंड ईशा रिखी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज एंड मूव फॉरवर्ड ऑन आवर सेपरेट पाथ्स. दिस डिसीजन हैज बीन मेड विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस टाइम. और ऑफिशियल ब्रेकअप जो है आपको याद होगा, शायद कुछ दिन पहले ईशा रिखी ने एक बहुत ही इमोशनल सोशल मीडिया मैसेज जो है आई थिंक जुलाई में इन्होंने शेयर किया था. तब जाकर सवाल उठाए गए थे, उन्होंने शी एक्सप्रेस्ड स्टेइंग साइलेंट आउट ऑफ फियर, फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय हर हस्बैंड्स इन्फ्लुएंस पावर एंड रिसोर्सेज. ऑन सर्वाइवल उन्होंने नोट किया था, साइलेंस वॉज नेवर एक्सेप्टेंस, it was survival, sharing that she was finally choosing courage over fear to stop pretending everything was okay. जिसके बाद बहुत सवाल जो है ये उठाए गए थे. और अब जाकर फाइनली ये बादशाह की दूसरी शादी थी
0: जी,
1: दैट हैज कम टू एन एंड. इससे पहले जैस्मिन मसीह के साथ उन्होंने आई थिंक 2012 में शादी की थी. दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी. एंड द फॉर्मर कपल शेयर्स अ डॉटर जैस्मी ग्रेस मसीह सिंह, जिनका जन्म 2017 में हुआ था और 2020 में ये दोनों अलग हो गए थे.
0: ओके, तो अभी जैसे कि दे रिक्वेस्टेड फॉर सम यू नो प्राइवेसी इन दिस मैटर, जब तक कि वो अपनी ओर से कुछ डिटेल्स नहीं शेयर करते, इट्स बेटर नॉट टू यू नो स्पेकुलेट थिंग्स अबाउट इट. एंड इट्स देयर रिलेशनशिप, इट्स देयर चॉइस. म्यूचुअली कुछ भी कर रहे हैं वो टोटली उनके ऊपर है ना. बट out of respect, I think they're informing their fans about it, which is something worth appreciating.
1: वैसे आज 2nd of September है, आज सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ये लॉन्च करने वाले हैं अपना बिल्कुल नया गाना. कौन सी ये फिल्म
0: का नाम? वन.
1: अच्छा वन है. ये वन क्यों लिखा है?
0: I think that's how it's written there, but pronunciation तो वन ही है. जंगल को बोलते हैं ना वन.
1: नहीं वन भी होता है ना एक वर्ड.
0: ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. so, मुझे लगा कि जंगल को वन बोलते हैं तो इसी वजह से, बिकॉज इसका एक ट्रेलर की टीजर मैंने देखा है. लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. और मैं इतना बोल सकती हूँ कि तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये कॉम्बिनेशन पहली बार देख रही हूँ. सो अभी तक तो जो देखा है अच्छा लगा है, बट आई डोंट नो मूवी कैसी होगी.
1: लोग कह रहे हैं कि काफ़ी इंटेंस केमिस्ट्री है तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की. और इस फिल्म का एक बहुत ही रोमांटिक ट्रैक है समझो ना, ये आज रिलीज होने वाला है.
0: ओके, लेट्स सी व्हेन इट रिलीजेस. तो गाना जो है कैसा होता है आप तक हम जरूर इसे पहुंचाएंगे. फिलहाल 23 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ. कमिंग अप नेक्स्ट, आज 2nd ऑफ सितंबर के बारे में तो बातें हम करेंगे ही, पर साथ ही साथ हमारा आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Attention hum passengers, your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with

0: flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Rewards rush only at BP.
2: A high of 17, mostly cloudy today, but a bit of sun at times. Into the city, Southern Motorway starting to slow. We're slow in patches from Papakura to Mount Wellington, 28 minutes Monaco to the city, 48 from Drury now. Northwestern, 22 Massey to the city, patchy at Te Aratu and the Causeway, then slow from St Luke's. Northern, 20 in from Constellation, 38 from Silverdale, slow at Silverdale, Greville to Glenfield and at Esmond.
1: Scan everyday rewards for double points on fuel and shop. T's and C's apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह. कभी धूप, कभी बादल. अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800 862 342. That's 0800 862 342 for free and confidential mental health support.
8: You filled the pinata before I sealed it, right?
9: No, you did.
8: Oh, I thought you did.
10: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
11: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
12: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने ले ले
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
13: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून. विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिन्स, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन. बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
14: वैसे फिलहाल हमारी स्टूडियोज में 20 मिनट बाकी है 7 बजने में. आज है वेंसडे 2nd of September. बॉबी मान जी का मैसेज भी आया. मैं सुबह सुबह यही सोच रही थी कि आज ऐसा कैसे हो गया कि इनका मैसेज नहीं आया. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नोटिफिकेशंस नहीं आए थे ना सही तरीके से.
15: अच्छा.
14: क्योंकि हमें मैसेंजर पे मैसेज सेंड करते हैं और इसी वजह से ना. तो आज इनका भी मैसेज आया था सुबह 4 बजे. इन्होंने कहा था, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, गणेश जी के आशीर्वाद से आज का आपका दिन शुभ, सारी खुशियों खूब सारी खुशियां लाए, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ 23 मिलियन. गणपति बप्पा मोरिया, ये इन्होंने कहा.
15: 23 नहीं होगा आज,
14: 25 है मेरे ख्याल से.
15: हाँ.
14: 2 मिलियन कम कर दिए इन्होंने, कोई बात नहीं,
15: वो अपने लिए रखे होंगे
14: शायद. बट यू नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप वी शेयर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज तक मैंने बॉबी मान जी से, मुझे नहीं याद कि अगर हमने कभी पर्सनली मुलाकात की हो फेस टू फेस, नहीं याद है मुझे. बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है हमारा कि हर सुबह ये हमें मैसेज करते हैं, हर सुबह ये कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर भेजते हैं. और ये जो अभी लोटो वाला कनेक्शन अलग शुरू हुआ है ना. क्या हो गया?
15: नहीं, आपने जब बॉबी मान जी का नाम लिया तो इमिडिएटली मुझे लोटो की याद आई.
14: हाँ, वो देखो ना, वही
15: क्योंकि सुबह से मुझे याद नहीं था उसके बारे में. जैसे उनका नाम सुना याद आ गया. आज वर्ल्ड कोकोनट डे है.
14: ओके,
15: कोकोनट इस काइंड थोड़ा थोड़ा आलू की तरह है ना.
14: हाँ भाई, बहुत मल्टीपर्पस है ये, मल्टी टैलेंटेड.
15: किस चीज में कोकोनट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
14: आई थिंक आप मिल्क, जो कोकोनट का मिल्क है.
15: हाँ,
14: वो अगर खाने में यूज करो. आई लव दैट. उसकी चटनी बनती है वो अलग बात है, लोग उसका पानी पीते हैं वो अलग बात है, और फिर उसके जो शेल को यूज़ करते हैं ना अलग अलग पर्पसेस के लिए, और शेल के ऊपर जो उसका क्या बोलते हैं बाल जैसा होता है, स्कैप क्या बोलते हैं हाँ बाल ही हो गया बेसिकली,
15: नारियल के बाल,
14: हाँ नारियल के बाल नहीं उसका भी लोग इस्तेमाल करते थे पहले, बहुत करते थे लाइक बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, अभी तो शायद आई डोंट नो, हाँ बहुत सी जगह पर उसको सुखा कर उसको जला कर उसको एज अ क्या बोलते हैं फायरवुड जैसे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना,
15: बहुत सारे इस्तेमाल हैं खाने में, कोकोनट यू नो अलग अलग तरह से यूज होता है, चटनी में डालते हैं ऐसे ही यू नो क्या बोलते हैं सहजन की भाजी में, इट लुक्स टेस्ट अमेजिंग
14: नाइस,
15: और इसके क्रीम कोकोनट मिल्क इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, आज वर्ल्ड कोकोनट डे है, साथ में इंडिजिनस लिटरेसी डे, और भी बहुत सारी चीजें आज मार्क की जा रही है बर्थडे की ओर अगर देखें, आज तोची रायना
14: अमेजिंग सिंगर, बहुत कमाल के गायक है ये,
15: हाँ सरप्राइजिंगली मुझे इनका कोई भी गाना याद नहीं है,
14: है सीरियसली,
15: हाँ सीरियसली
14: इनके बहुत से गाने हैं वैसे, आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर वन पीपल वुड रिमेम्बर वुड बी परदेसी, देवरी का गाना जो है, नहीं याद आपको?
15: नहीं नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं,
14: अच्छा मैं सुनाती हूँ आपको एक मिनट, ये गाना है दैट ही हैज संग फ्रॉम द मूवी देवरी, your face says you still don't know.
15: मैंने आज first time ये गाना सुना.
14: Seriously?
15: हाँ.
14: अच्छा, what about this song? ये तो बजने में बहुत time लगा लगता है.
15: गा ही नहीं रहा है.
14: अभी गाएगा. किस किस को ये गाना पता है? अच्छा, by the way.
15: अभी गाएगा तो पता चलेगा ना.
14: चलो यही competition है आज का हमारा. अभी हमने आपको ये music सुनाया ना? ये म्यूजिक सुनकर आपको क्या लगता है कौन सा गाना है? टोची रैना का गाना है ये, उन्होंने गाया ये गाना, दिस इज द म्यूजिक, लिसन टू इट वेरी केयरफुली।

0: ये गाना जिस किसी भी फिल्म का है, फिल्म तो आई कैन से कि शायद चली नहीं चली, आई कांट ऐसे रिमेम्बर नहीं कर
1: मुझे नहीं लगता मैंने ये गाना भी कुछ खास सुना होगा
0: शायद। हाँ, बट ये गाना जहाँ तक आई नो चला है उस साल, काफी चला, शादियों में बहुत चला ये गाना,
1: और तब शायद कहीं किसी शादी में सुना। वैसे टोची राना के साथ आज ईशांत शर्मा, ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: ओके,
1: और आप जानते हैं ईशांत शर्मा को,
0: क्रिकेटर है शायद।
1: हाँ, क्रिकेटर। हाँ, और आज नंदमूरी हरिकृष्ण
0: जी,
1: ये भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इनका नाम नंदमूरी हरिकृष्ण है।
0: रियली?
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: आज जाकर पता चला जब मैंने पढ़ा और फोटो देखी फोटो के साथ। और इसके साथ पवन कल्याण आज ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: ओके,
1: और इनके साथ सुदीप, ये भी एक एक्टर है।
0: हाँ,
1: ये भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। और आज
0: किच्चा सुदीप,
1: हाँ,
0: और उनका बर्थडे
1: होगा।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। और
1: साथ में आज साधना शिवदासनी, ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।
0: ओके, सो देयर यू गो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं।
1: आप जानते हैं साधना को?
0: नहीं, मैं शायद गूगल करूंगी।
1: साधना है अकट, आप भूल गई?
0: हाँ,
1: साधना है अकट।
0: नहीं, मैंने कभी नहीं कराया तो मुझे नहीं पता।
1: अच्छा, तो इनका साधना का हेयर स्टाइल बहुत आइकॉनिक था। ये आफ्ताब शिवदासनी की बुआ है।
0: ओके,
1: यू नो इनके पिता जो है प्रेम शिवदासनी, ये वाइड रिलेशन में आती हैं तो उनकी बुआ लगती हैं।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन एंड हैप्पी बर्थडे आपको भी विश करेंगे अगले घंटे। सो मेक श्योर आपने मैसेजेस आप हमारे पास जरूर सेंड करें। फिलहाल हमने जो गाना आपको पहचानने के लिए कहा, अभी तक किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं पहचाना वो कौन सा गाना था। एक बार फिर से सुना दे।
1: आपकी मर्जी भाई,
0: सुन लो सुन लो। अगर आपको ये सुनकर अंदाजा लग रहा है कौन सा गाना है, तो BF स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर आपको हमारे पास सेंड करना है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Sit back and save lives.
4: Fine spells with a lot of cloud, a high of 17. Coming into the city, Southern Motorway, 33 minutes, Manukau to Town, 53 from Drury, slow Papakura to Mount Wellington and patchy Ellerslie to Green Lane. Southwestern okay, but a bit of traffic on George Bolt heading to the airport. Northwestern, 26 minutes in from Massey, slow at the Ardatu, the Causeway and then all the way from St. Luke's. Northern, 22 from Constellation, slow patches Greville to the bridge.
3: Every blood donation could save up to 3 lives. Book now, New Zealand Blood Service.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited Trading as Ashore One is a licensed financial advice provider.
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
5: Interestingly, abhi tak humne jo gana suna hai usse sirf Manisha ne pehchana. Kisi ne message kiya hai 5453. Inhone movie ka naam bataya hai. Alicia hai saath mein Nitika. Inhone bhi gana pehchan liya. So the correct song is Gal Mithi Mithi Bol from the movie Aisha. 2010 mein ye film aayi thi.
12: Okay.
5: Abhi थ्रोबैक की बारी आई, लेकिन उससे पहले आज का सवाल मेरे पास जो है, आज आई एम थिंकिंग ऑफ अ बॉलीवुड मूवी जो थ्री लेटर वर्ड है और ये थ्री लेटर वर्ड एक नंबर है. इट्स अ बॉलीवुड मूवी, अ थ्री लेटर वर्ड एंड अ नंबर इट इज. क्या जवाब है इस सवाल का? BF स्पेस यू आंसर योर नेम 5599 पर आप सेंड करो. अगले घंटे हम देखेंगे क्या किसी ने सही जवाब दिया है या नहीं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज भी मिला जुला मौसम रहेगा, बादल छाए रहेंगे, रहकर हल्की बारिश होगी। अभी अराउंड 12 डिग्रीज है, आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज होने वाला है। सनसेट शाम 6:02 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.

0: 4234.
1: 4 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस मेगा फाइनेंस की ओर से हम लेकर आ रहे हैं. और ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत जबकि हो चली है. तो पिछले घंटे हमने सवाल पूछा, इसके आंसर्स हमारे पास आए हैं. अश्विन, आपने जो जवाब भेजा है 10वीं, ये गलत है. गुंजन, आपने कहा 1 2 3, ये भी गलत है. नितिका का एक आंसर आया है. सही या गलत अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में. आप बताइएगा मत कि उन्होंने क्या मैसेज किया. अच्छा,
2: मैं कभी नहीं बताता.
1: कभी नहीं बताता. कल तो सब कुछ बता दिया था आपने. बट राइट नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने. आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे दैट आई एम थिंकिंग ऑफ इज अ 3-letter वर्ड. इसके नाम में सिर्फ 3 ही लेटर्स है और नंबर है ये. तो क्या है सही जवाब?
2: नंबर इंग्लिश में या हिंदी में?
1: हिंदी में है यार.
2: अच्छा, हिंदी में. चलो ये भी हो गया.
1: मैं जवाब बता दूं क्या?
2: ना वो मत बताओ आज.
1: तो हिंदी में है नंबर, इंग्लिश में नहीं.
2: तो अब सोचो किस 1 2 3 गुंजन ने लिखा.
1: 1 2 3 नहीं गुंजन, ऐसी
2: 10वीं तो 3 लेटर से ज्यादा हो जाता ना.
1: 1 2 का 4 फिल्म आई थी, 1 2 3 मुझे नहीं याद. आई डोंट 1 2 का 4 फिल्म आई थी बट वो भी आंसर नहीं है. एनीवेज, तो अगर आप हमारे पास मैसेज कर सके और 5599 पर आपको लिखना है BF, फिर मूवी का नाम, अपना नाम भेज देना है. थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, अगर किसी का सही जवाब नहीं आता है we'll just move on. But right now, in a while, आज का राशि वाइब आपके लिए लेकर आएंगे.
2: और भी तमाम चीजें हैं. 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस जो है ये आपके लिए होंगे इस प्रोग्राम में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट फॉरगेट इनाम जीतने के मौके. फाइनल 2 डेज आज और कल फादर्स डे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का है.
1: बिल्कुल, हम इतने दिन से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे हैं कि हमारा फेसबुक पेज विजिट करो. वहां पर आपको मिलेगा फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट फादर्स डे के लिए डैड्स AI अपग्रेड, जिसमें आपको बस अपने डैड की कोई एक फोटो लेनी है और AI पर जाकर किसी भी AI का जो इस्तेमाल करते हुए आपको उसे अपग्रेड करना है इनटू अ सुपर हीरो. जैसे आप अपने डैड को जिस किसी सुपर हीरो के रूप में आप इमेजिन करते हैं वो प्रॉम्प्ट दीजिए एंड देन दैट पर्टिकुलर फोटो वुड बी जनरेटेड एज अ सुपर हीरो ऑफ योर डैड्स फोटो, बेसिकली आपके डैड के इमेज की. बस उस फोटो को लेना है और हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है जहां पर डेड्स AI अपग्रेड इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ये फोटो आपको डालनी है. और आप अपने डेड को टैग भी कर सकते हैं. गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर ऑन फेसबुक टू लाइक दैट फोटो एज वेल. लेकिन याद रहे, इफ यू वांट योर एंट्री टू बी वैलिड, हम FM का फेसबुक पेज फॉलो करना और जो कॉम्पिटिशन पोस्ट है डेड्स AI अपग्रेड का ये आपको लाइक करना होगा, तभी आप इस ड्रो का हिस्सा बन पाएंगे. सो इफ यू नीड एनी डिटेल्स हाउ टू पार्टिसिपेट, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से लिखा हुआ है. हम 104.2 FM हमारे फेसबुक पेज है विद द ब्लू टिक, विजिट करें. फीचर्ड फोल्डर में आपको फादर्स डे कॉम्पिटिशन का डेड्स AI अपग्रेड पोस्ट मिल जाएगा, उसे पढ़ ले, सब कुछ आप आसानी से समझ जाएंगे. फिलहाल सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गए कि इस कॉम्पिटिशन में शामिल होकर आप जीत सकते हैं
2: $300 कैश, जिसका ड्रो इसी फ्राइडे को होगा.
1: एब्सोल्युटली, तो 2 ही दिन बाकी है इफ यू वांट टू विन $300. फिलहाल लिज, इनका मैसेज आया है, इन्होंने भी कोशिश की है. हर मिलाप ने कहा है 420, श्री 420, ये गलत है. और पा श्री आपने मनुरेवा से भेजा है. 1 2 3 अलका आपने भेजा, ये भी गलत है. एम आई कंफ्यूजिंग एवरीवन विद द वे आई आस्क द क्वेश्चन?
2: एक फिल्म है,
1: हाँ,
2: इस हिंदी फिल्म है, इसका नाम 3 letters में है, 3 alphabets में है,
1: yes.
2: और ये 3 alphabets जो फिल्म का नाम है, वो हिंदी में एक नंबर है.
1: जी, if that makes sense. So let's see, क्योंकि श्री 420, पा 1 2 3 सब गलत है.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: वैसे अगला गाना प्ले करने से पहले हमने जो सवाल पूछा था उसके कुछ मैसेजेस आए हैं. गुंजन ने वापस से कोशिश जो है ये की है. उसके बाद अविनेश ने अपना मैसेज भेजा है, विधि का जवाब आया है, भजन ने अपना मैसेज भेजा है, सोम का भी जवाब आया है. अब जवाब बता देती हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं होगा. जो करेक्ट आंसर इज 10 DUS ना स्पेलिंग इसकी.
3: यस, जो जवाब हमें चाहिए था. अभी बातों बातों में मैं ये भी सोच रहा था, बड़ा बहुत समय हो गया मनीता का कोई मैसेज नहीं आया ना.
2: हाँ, थोड़ा गायब है, अभी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं चली गई.

0: 34234.
1: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज आपके काम में कुछ तेजी आएगी, आपके काम को प्रेज किया जाएगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आज लव लाइफ आपका अच्छा होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा।
3: उसके बाद वृषभ टॉरस, आपके लिए कहा गया है कि मैरिड लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां जो है आपकी, ये आज बढ़ सकती हैं और साथ में आपको किसी बड़े बुजुर्ग का गाइडेंस भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ चीज़ों को आप इतने दिनों से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनली इट विल हैपन बिकॉज of that person in your life. आज आपके लिए ये बताया गया है कि अपने expenses को थोड़ा control में रखे, otherwise the time will come जहां पर आपको कुछ जरूरी खर्चे करने पड़ सकते हैं, but शायद आपके पास उतने पैसे ना हो।
2: मिथुन यानी जेमिनी, रुका हुआ पैसा आपको भी मिलेगा, फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा, कोलीग्स ऑफिस में काफी सपोर्ट देंगे आपको और बिजनेस डिसीजंस में आपको फायदा होने वाला है। हो सके तो अपने डेली एक्टिविटीज में कुछ योगा जो है ये भी आप इंक्लूड करें।
3: और उसके बाद कर्क यानी कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में बदलाव या कुछ नई भूमिकाएं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोजिशन जो है ये आपके लिए सामने आ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ बदल सकती है आपकी, ऐसा आपके लिए कहा गया है। और आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि जीवन साथी के साथ आज बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप आप शेयर करेंगे।
2: सिंह यानी लियो, आज आपके काम को और आपके आइडियाज को काफी प्रेज किया जाएगा, आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है, बिजनेस में कुछ नया शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, अचानक कहीं से कुछ फायदा हो सकता है, अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें।
3: और उसके बाद कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए ये बताया गया है कि आज वर्क लाइफ में अगर देखा जाए तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती है, समय पर शायद काम पूरा ना हो जिसकी वजह से आप थोड़ा निराश भी रहेंगे, बट दैट डजंट इक्वेट्स टू हाउ सक्सेसफुल यू विल बी इन फ्यूचर, इसलिए मेहनत करते रहें, रिश्तों में गलतफहमी से बचें, अदरवाइज अच्छे खासे मजबूत रिश्ते भी आज खराब हो सकते हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, आज अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, जोड़ों में कुछ दर्द आप फील कर रहे थे उससे शायद आज कुछ राहत मिले और हेल्थ बढ़िया रहेगा, आज कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है इसकी जिम्मेदारियां भी ऑफिस में आपको मिल सकती हैं।
3: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि कोई अटकी फाइल या फिर कोई अटका काम जो है आपका, जो आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने से रोक रहा है फिलहाल, ये आज सामने आएगा, यू'ड बी एबल टू सॉर्ट आउट द इशू और उसे आप सॉर्ट आउट करते हुए और आगे बढ़ा पाएंगे, मतलब काम जो शुरू कर पाएंगे। इस मामले में आपके लिए बताया गया है कि आज रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा और भरोसा जो है आपका, ये इस रिश्ते पर और बढ़ेगा।
2: दुनिया नहीं सेजिटेरियस, अचानक ही आज किस्मत का साथ आपको मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का यही सही समय है, बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है, अपने निजी रिश्तों में कुछ नयापन आज आप फील करेंगे।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज मकर यानी कैप्रिकॉन के लिए कहा गया है कि कारोबार के मामले में, लेन देन के मामले में जरूरी है सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप अच्छी तरह से चेक कर ले और उन्हें समझ ले, इफ नीड बी तो गेट अ प्रोफेशनल हेल्प एज वेल, ऐसा आपके लिए बताया गया है। आज फाइनेंशियल प्लान्स जो आप बना रहे हैं इन पर काम करें, ऐसा नहीं कि प्लान्स बनाकर आप छोड़ दें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लान माइट बी समथिंग जिसका आपको बहुत बेसब्री से ज़रूरत बेसिकली ये थी।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज नए आइडियाज के साथ आप काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, बिजनेस में कोई नया डील आज आप फाइनल कर सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ यू नो स्ट्रगल आप कर रहे थे तो ये खत्म होगी और आज पैसे जो है ये आप बचा सकेंगे।
3: और आखिर में यानी कि फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज आप डेफिनेटली अपने वर्क लाइफ में कुछ प्रोफेशनल गेन जो है ये एक्सपीरियंस करेंगे, समथिंग जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते और गहरे होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी जो है काफ़ी मजबूत होगी, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये और स्ट्रॉन्ग होगा। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही अच्छा कमाल का गुजरे। सरप्राइजिंगली आज जितने भी हॉरोस्कोप्स के बारे में मैंने बातें की, सभी के लिए आज प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड काफी चीजें जो है ये कही गई हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। वैसे थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का सेलिब्रिटी अलार्म,
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: चुप हो जा पापियो, चुप हो जा।
5: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rover app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
0: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual? Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
9: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
10: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव सिक्स हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा क्यूज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
11: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
12: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
11: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
13: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
14: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Celebrity Alarm. Hit it.
3: अभी कुछ दिनों से जितने भी सेलिब्रिटी अलार्म के लिए वॉइसेस हम लेकर आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के ये ज़्यादातर

0: ये नया साल पहली जनवरी से क्यों मनाया जाता है? किसने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होगी?
1: तो ये कौन है? अगर आपने इनकी आवाज़ पहचान ली है, अब आप हमारे पास अपना जवाब जो है ये सेंड कर सकते हैं 55599। सबसे पहले लिखना है आपको BF, उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम। आपको तो जवाब पता है क्योंकि आपको चेहरा पता है। तो लेट्स सी, क्या कोई बिना इनका चेहरा देखे बता सकता है कि ये आवाज़ किन की है?
0: जब मैं नए साल के बारे में सोच रही थी ना, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये नया साल पहली जनवरी से क्यों मनाया जाता है? किसने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होगी?
1: तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स हमारे पास आप टेक्स्ट करें।
2: 55599 हमारे नंबर है। आप सबसे पहले लिखें BC, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और उसे हमारे पास भेजें। देखिए आप में से कितने लोग हैं जो मेरी तरह इंटेलिजेंटली इस सेलिब्रिटी को पहचान सकते हैं।
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना A game।
3: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams।

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, वूलवर्थ्स न्यूजीलैंड ने अपने कस्टमर केयर सेंटर को सिडनी शिफ्ट करने का प्रपोजल रखा है, जिससे लगभग 130 वर्कर्स की जॉब जाने का खतरा पैदा हो गया है। वर्कर्स फेस्ट यूनियन ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कंपनी अच्छी प्रॉफिट्स कमाने के बावजूद लोकल स्टाफ को बिना वजह टारगेट कर रही है, जबकि वूलवर्थ्स का कहना है कि ये स्टेप बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए है और 15 सितंबर तक कंसल्टेशन चलने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। न्यूजीलैंड पुलिस के नेशनल इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद एक पुलिस स्टाफर पर रेप, किडनैपिंग और असोल्ट समेत कुल 39 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। रेडियो न्यूजीलैंड के रिपोर्ट के मुताबिक NIU फिलहाल ऐसे 10 एक्टिव क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रही है, जिनमें फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल और कंप्यूटर मिसयूज जैसे सीरियस आरोप शामिल हैं। पुलिस मिनिस्टर मार्क मिचेल ने कहा कि वो ऑपरेशनल केसेस में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड्स तोड़ने वाले एम्प्लॉइज पर पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ब्लैक कैप्स के खिलाफ अपना न्यूजीलैंड टूर शुरू करने से पहले इंडियन क्रिकेट टीम अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से खेलेगी। 16 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के टूर पर जा रही है और इस सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को वापस इंडियन स्क्वाड में शामिल किया गया है। और अफगानिस्तान अपने दौरे के अंतर्गत टी ट्वेंटी मैचेस जो है ये खेलेगा, जबकि वेस्ट इंडीज इंडिया जाकर इंडिया के खिलाफ ODIs खेलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम अक्टूबर महीने में न्यूजीलैंड के टूर पर आ रही है और उनके मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Your holiday boarding pass could be waiting.

0: accurate traffic.
1: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
2: Plenty of cloud, but fine spells at times. 17 hour high today. Coming in on the Northern Motorway, 25 minutes Constellation Drive to town. At 45 from Silverdale, heavy at Silverdale and slow all the way from Constellation. Northwestern, 35 Massey to the city, slow from there, lots of heavier spots. Southern, similar, 43 in from Manukau, slow from Takanini with heavy patches frequent. Southwestern, little slow northbound through Whitty.
1: Start strong on cold mornings with Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया

0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
1: Hollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Birthday greetings.
4: इसका बर्थडे भाई?
5: मेरा ही बर्थडे है. चलो लाइन में आ जाओ.
4: Happy birthday to you.
6: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. दिन आज का आपको अनेको बार शुभ और मुबारक हो. आज सबसे पहले प्रदीप कुमार जी, अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं, खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. पत्नी हैं, बच्चे हैं और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बैकिन लंबा सा आज आपको याद कर रहे हैं और वेरी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. हमारी ओर से भी यह स्पेशल डे आपको शुभ और मुबारक हो.
7: दूसरी ओर आज अखिल चौधरी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ढेर सारा बेस्ट विशेस. आपकी प्यारी सी पत्नी है आइरीन चौधरी की ओर से, बेटी है एंजेलिन चौधरी और साथ में सन इन लॉ पवन कुमार, बेटा है अखिलेश चौधरी और बहू है नताशा. इन्होंने भी आपको याद करते हुए ढेर सारा बेस्ट विशेस एंड लव जो है ये आप तक पहुंचाया है. आज आपके जन्मदिन के मौके पर अखिल ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद एंड बेस्ट विशेस. आपकी सिस्टर इन लॉ है माला नारायण और कांता देवी तकनीनी में, इनकी ओर से भी आपको याद किया जा रहा है. हैप्पी हैप्पी बर्थडे विश किया जा रहा है. हमारी ओर से भी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम विश कर रहे हैं.

0: 234.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: थोड़ी देर बाद याद रहे कि हमारा आज का बोर्डिंग कॉल प्ले होगा क्योंकि अभी तक नहीं प्ले हुआ है और आपको हम हमेशा रिमाइंड करते हैं कि बोर्डिंग कॉल ऑन द ब्रेकफास्ट शो 8 AM टू 9 AM के बीच प्ले होता है, विच मींस कि जब आप सुने हमारा क्यू टू बोर्ड वैसे ही आपको विजिट करना होगा रोवा ऐप, जहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन पेज मिलेगा जहाँ लिखा होगा एंटर कोड नाउ. इसका मतलब ये है कि आपको ये दो शब्द बोर्ड नाउ BORD स्पेस NOW ये दो वर्ड्स जो है ये टाइप करने होंगे जहाँ पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, और फिर उसके बाद में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबमिट का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक कर आपको ये सबमिट करना होगा. वंस यू डू दिस तो आप किस ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे?
4: आप उस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जिसमें आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु फ्लाइंग सोलोमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में 4 बार ऑकलैंड टू वनवातु डायरेक्ट फ्लाई करता है. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं और साथ में $1,000 स्पेंडिंग मनी भी हम आपको देंगे. $1,000 स्पेंड करने के लिए आपके पास होंगे इन वनवातु.
3: राइट, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है और उम्मीद है कि इस मौके का भरपूर फायदा आप उठाएंगे क्योंकि वेरी सून इवन दिस इज कमिंग टू एन एंड. तो रिमेंबर कि अगर आप हमारे साथ हम बोर्डिंग कॉल का हिस्सा बनना चाहते हैं अगले घंटे, आपको ध्यान से सुनना होगा हमारे Q2 बोर्ड के लिए. Q2 बोर्ड. और अगर आपने सुन लिया है कि Q2 बोर्ड प्ले हुआ तो उसके प्ले होने के ठीक 60 मिनट्स तक का टाइम आपके पास रहेगा. ऐसा नहीं कि हम 5-6 मिनट दे रहे हैं आपको, 60 मिनट्स, एक घंटा देंगे कि आप जाकर हमारा रोवा ऐप विजिट करते हैं कॉम्पिटिशन पेज पर, जो बोर्ड नाउ कोड है ये एंटर करें. और अगर आपको कॉम्पिटिशन पेज का जो लिंक चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि कहाँ पर जाकर एंटर करना है ये तो पता चले, तो आप BC यानी बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म BC लिखकर 5599% कर दो. यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स. और ऑटो रिप्लाई में हम आपको यहाँ से जो लिंक है कॉम्पिटिशन पेज का ये भेज देंगे. सो वंस यू क्लिक ऑन इट, डायरेक्टली आपको वहाँ तक ले जाया जाएगा जहाँ पर आपको जाकर बस ये कोड एंटर करना है. ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं. चलिए अब बारी है कि हमने जो सवाल पूछा उसका क्या हुआ है ये भी देख ले. मैसेजेस आए हैं. आलिया भट्ट रेटिश ने कहा है, लोकेश ने कहा है, श्रेया घोषाल, गुंजन का जवाब आया है, ऋचा चड्डा और नंदिनी ने भी अपना आंसर जो है ये दिया है. अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 4 लोगों ने कोशिश की है. आई डिडंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट होगा. मुझे लगा था कि शायद लोग कोशिश करेंगे, 1-2 लोग शायद जवाब दे पाए. 4 लोग जवाब देने के लिए भी मैसेज करेंगे ये थोड़ा मेरे लिए हजम नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो सेलिब्रिटी है ये काफ़ी पॉपुलर है. एक टाइम था कि ये एक बहुत ऐसा नाम बन चुकी थी जो हर घर में लोग जानते थे.
4: ओके.
3: फिर उसके बाद में एक टाइम आया जहाँ पर इन्होंने शायद थोड़ा ब्रेक लिया, कम प्रोजेक्ट्स में ये दिखी, बट देन अगेन केम अ प्रोग्राम जहाँ पर ये दिखी एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर वन मोर टाइम. देन शी मूव्ड इनटू मूवीज. पहले ये टेलीविजन किया करती थी, फिर ये मूवीज में इन्होंने काम किया. और एक किसी एक्टर के बारे में अगर आपको बताना हो जिनके साथ इन्होंने काम किया हो, अ वेरी पॉपुलर मूवी, क्योंकि एक मूवी तो मेरे जहन में फट से आ जाती है.
4: मेरे दिमाग में फट से नहीं आ रही है,
3: झटपट से आ जाती है. हाँ, कौन सी मूवी हो सकती है, कौन से एक्टर हो सकते हैं?
4: पता नहीं भाई.
3: आमिर खान के साथ काम किया इन्होंने.
4: अच्छा.
3: सनी देओल के साथ भी दिखी है ये, उनके साथ भी काम किया.
4: ओके, मैं नहीं था उस फिल्म में.
3: आप नहीं थे पर देखा होगा आपने ये फिल्म. तो जरा सुनिए ये आवाज है आज के हमारे सेलिब्रिटी की.
5: जब मैं नए साल के बारे में सोच रही थी ना, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये नया साल 1 जनवरी से क्यों मनाया जाता है? किसने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होगी?
3: तो कौन है ये आज की हमारी सेलिब्रिटी? क्लूज हमने इतने दिए आपको यार, ये भी बता दिया टेलीविजन में काम करती थी, हर घर में, घर घर में इनका नाम चलता था एक टाइम पर. फिर उसके बाद में टेलीविजन से मूव होकर शी केम इनटू मूवीज, शी हैज वर्क्ड विद आमिर खान, शी हैज वर्क्ड विद सनी देओल एज वेल. इनका खुद का एक वेब सीरीज भी आया है नेटफ्लिक्स पर. If you know who I am talking about, let's see. क्या आप figure out कर पाते या नहीं? BF space your answer, your name 5599 पर भेजे जब तक ये गाना play हो रहा है.

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: चलिए अब बारी है आज के इस घंटे की थ्रोबैक की, जो आपके नाम हम करेंगे इन अ वाइल, लेकिन उससे पहले मैसेजेस जो है ये देख लेते हैं जो आपने हमें सेंड किए हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए। वैसे ये मैसेजेस आए हैं नंदनी, आपने इनफैक्ट सबसे पहले ही सही जवाब जो है ये पहचाना था, उसके बाद चरीशा का मैसेज आया, माधुरी दीक्षित इज नॉट द करेक्ट आंसर बट कोशिश करने के लिए थैंक यू 4632। गुंजन आपका भी जवाब आया है, रजनील आपने भी कोशिश की है बट अनफॉर्चुनेटली गलत आंसर है आपका, मोनिशा है, डेंस है और उसके अलावा 2608 आपका भी मैसेज आया है एंड जयश्नील आपने भी हमारे पास अपना मैसेज जो है कि भेजा है। वैसे गलतियां कुछ लोगों की ये हो गई कि कुछ लोगों ने साक्षी तलवार लिख दिया तो कुछ लोगों ने साक्षी तिवारी जो है ये लिख दिया, बट द करेक्ट आंसर आज के हमारे सेलिब्रिटी के नाम का इज साक्षी तनवर। साक्षी तनवर जिन्होंने पार्वती का किरदार निभाया था कहानी घर घर की टेलीविजन प्रोग्राम में, जिससे ये काफ़ी पॉपुलर हुई। उसके बाद उन्होंने प्रिया का किरदार निभाया था बड़े अच्छे लगते हैं शो में ऑपोजिट राम कपूर, एंड दैट शो ऑल्सो गेन हर अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, एंड देन वहाँ से शी मूव्ड ऑन टू मूवीज़ और उन्होंने दंगल फिल्म में आमिर खान के ऑपोजिट, मोहल्ला 80 में सनी देओल के साथ, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो जैसे कि मैंने कहा था इनका खुद का एक वेब सीरीज़ भी आया था माँ, नेटफ्लिक्स पर ये है। Still they are not quite sure right now, पर हाँ इनका एक खुद का शो जो है ये भी आया है जो इन्होंने किया, वेरी अमेजिंग एक्ट्रेस, और आज आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म में इनकी आवाज़ हम लेकर आ रहे थे। अगले घंटे रश आवर की शुरुआत होगी, तो रश आवर के साथ साथ याद दिला दें आपको हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन विच इज़ डेड्स रिवर्स ग्रिल, ये भी आपके लिए रहेगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हुए $500 कैश जीत सकते हैं। $500 किसी डेड के नाम होगा ऑन फ्राइडे, लेकिन इसके लिए कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना जरूरी है, एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप लिसनिंग। जैसे ही आपको मौका हम दें, मेक श्योर टू गिव अस अ कॉल ऑन 0800 हम टू टेक पार्ट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज मिला जुला मौसम ऑकलैंड में होने वाला है, कभी बदली कभी बारिश। अभी टेम्परेचर जो है ये ऑकलैंड में 13.5 डिग्री है, आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्री, सनसेट शाम 6:02 पर होगा।
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: ट्रेंड पेट्रोल की बारी आई है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जहां पर हम आपके साथ बातें करते हैं अबाउट व्हाट इज ट्रेंडिंग। और एज फार एज ट्रेंड पेट्रोल इज कंसर्न, क्वेश्चंस तो आपसे हम पूछते रहते हैं अबाउट थिंग्स दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। बट न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो गूगल सर्च के मामले में क्या ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा माउंट मंगनुई ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है पिछले 24 घंटों से।
1: ओके, सो इट मस्ट बी अबाउट द लैंडस्लाइड जो हुआ था वहां पर, और उसको लेकर काफी खबरें जो है ये अभी आ रही हैं।
3: राइट, और उसके बाद मानोरेवा, इसे भी काफी ज्यादा गूगल किया गया है एंड इंटरेस्टिंगली। और उसके अलावा लाइनल रिची, ये नाम जो है ये भी काफी ज्यादा गूगल किया गया है।
1: ओके,
3: सो दीज आर द टॉप 3 ट्रेंडिंग वर्ड्स और नेम्स और प्राइसेस रादर जो न्यूजीलैंड में फिलहाल सामने आया है एज फार एज गूगल ट्रेंड्स आर कंसर्न्ड।
1: तो ट्रेंड पेट्रोल में हर सुबह हम चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी खबरें जो है ये ट्रेंड कर रही होती हैं।
3: थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक का टॉपिक भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, जिसमें आप अपना अपना कंट्रीब्यूशन हमें जरूर दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में क्या है आपकी राय। वेंसडे है आज, तो लेटर इन द डे या लेटर दिस आवर, नॉट इन द डे, लेटर दिस आवर आपको याद दिला दे हमारा हम बोर्डिंग कॉल ये भी प्ले होगा। और आप जैसे ही बोर्डिंग कॉल का जो कॉल क्यू टू कॉल सुने, ये याद रखे कि आपको बोर्ड करने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमारा रोवर ऐप जो है ये विजिट करना होगा। क्यू टू बोर्ड सुनने के स्ट्रेट बाद विजिट द रोवर ऐप, और वहां पर जाकर आपको दरअसल कोड एंटर करना है टू बी पार्ट ऑफ द ड्रो। एंड द कोड दैट यू नीड टू एंटर वुड बी बोर्ड नाउ, BOARDNOW, बोर्ड नाउ, ये आपको सबमिट करना होगा एंड तभी आप ड्रो का हिस्सा बनेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, जिसके लिए आप हम .rover.nz विजिट कर सकते हैं। और ये याद रखे, आपके लिए हम बोर्डिंग कोड लेकर आ रहे हैं थैंक्स टू सलमान एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysalmans.com डिटेल्स के लिए। हम बोर्डिंग कोल में पार्ट लेकर 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका आपके पास है।
4: दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
5: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ,
6: आई वाज टोटली वर्थ इट।
5: जिंदगी बदलने आई मेरी, जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नीयत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाह।

0: 100% धराज।
1: Non-stop Bollywood।
2: पूछो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: So, 8 baj rahe hain on the breakfast show with Vijay and Pooja. Ab waqt hai, what's your take ka? Aaj hum baatein karenge, kal humne baatein ki thi about couples. और क्या आप उनको suggestions दे सकते हैं on the way they look and the way they dress, उन सारी चीजों के बारे में. आज मैंने सोचा है कि एक नया एंगल देते हैं. आज फोकस जो है ये हस्बैंड्स पर होगा.
12: ओके.
11: और हस्बैंड्स अपनी ओर से भी बता सकते हैं, बीवियां अपनी ओर से बता सकती हैं कि क्या हस्बैंड्स जो हैं बीवियों के मिलान में दोस्तों को प्रायोरिटाइज करते हैं. क्या डू हस्बैंड्स गिव प्रायोरिटी टू फ्रेंड्स ओवर वाइव्स? अभी आप फॉर एग्जांपल बीवी ने घर पे बोला कि ये बॉक्स उठा दो. हस्बैंड अरे अभी मैं काम पर से आया हूँ, 2 मिनट सांस ले लेने दो. और वो बॉक्स हटता नहीं.
12: ओके.
11: और उसी इस तरह के सिचुएशन में दोस्त का फोन आया कि भाई हम सब मिल रहे हैं, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ.
12: ओके. तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के
11: राइट, नॉट सो मच सीरियस.
12: डोंट गेट ऑल सीरियस. होते हैं बड़े बड़े चीजें भी होती है, वी नॉट सेइंग कि नहीं होते.
11: हाँ, बट उस पर नहीं जाना हमें ना?
12: आज उस पर नहीं जाना. छोटी छोटी चीजों पे आप ताने मार सकते हैं. बता सकते हैं हमें इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर मैरिड एंड इफ यू एवर एक्सपीरियंस दिस, वेयर योर हस्बैंड हैज प्रायोरिटाइज्ड देयर फ्रेंड्स और हिज फ्रेंड्स ओवर यू.
11: या बीवियों के लिए मौका है टू वेंट आउट, हस्बैंड्स के लिए अपॉर्चुनिटी है टू डिफेंड.
12: या लेट्स सी क्या कहना है आपका. बताइए, आप हमें अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आज का हमारा पहला कॉल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
10: हेलो
12: हेलो
11: हेलो
12: कैसे
10: विजय भाई, कैसे हो?
12: तो विजय भाई को बोल रही है, मेरे को तो है, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे।
11: मैं ठीक हूँ, आप कैसे
10: भाई, कैसे हो भाई?
11: अरे मैं ठीक हूँ भाई।
12: आपसे दो बार बोल दिया, मेरे से एक बार भी नहीं बोला।
11: सुनो, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ भाई?
10: देखिए ऐसे भाई, मेरा नाम अश्विन है भाई।
11: हाँ अश्विन,
10: तो मैं सोका का हजम खेलता हूँ। चाहे कितनों मैं थक गया हूँ, अगर दोस्त ने बोल दिया भाई आज वहाँ ट्रेनिंग है कैसे करेगा, अरे यार बोले थका है ना, बीवी तो बगल में होगा। तो उसने बोला अभी तुझे मैं बोला कि तेरी शॉपिंग कर ली जाए, कुछ चीज ले ली जाए, तो तुमने बोला थक गया है। अभी जब दोस्तों ने रिंग करा तो तुमने बोला कि मैं तो थक गया, अभी वो फिर कॉल करे बोले। बोला नहीं नहीं कॉल नहीं करी, अब तो बताई दिया। पांचवी बार हमारे दोस्तों फिर कॉल करी, बोले भाई हम आता है रास्ता में, बोला आ जाओ
11: आ जाओ
10: आ जाओ।
11: फिर
10: दोस्तों के साथ चल दिया।
11: बीवी का मुंह कैसा था जब आपने बोला आ जाओ?
10: बीबी का मुंह तो 12 बज गया था। तो मुझसे बोला, मैंने बोला जे भाई दिन भर तो काम करता है, ये सो काम लोग एंटरटेनमेंट नहीं होता थोड़ा देर के लिए। अब आपके साथ जाए शॉपिंग करे, फिर आप चलेगा चलो ये देख ली जाए, खाली देख ही जाए। जैसे मान लो गया शॉपिंग करे तो चलिए कपड़ा वाले दुकान में हल जाएंगे, लोग कपड़ा वाले दुकान में जाएंगे जरूर, चाहे लेना चाहे नहीं लेना जाएंगे। तब देखेंगे कपड़े देखेंगे, बोले ये अच्छा लगता ना। तो मेरा तो ऐसा है जो बेकार रखता वो बोलता मुझे ये बहुत अच्छा लगता कि जो सस्ता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता, सूट करता, वो जान जाता कि नहीं आप पैसा बचाते।
11: ओके थैंक यू अश्विन,
10: ऐसे ना जाता मेरा जिंदगी में।
11: गुड गुड गुड, थैंक यू अश्विन, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। ऐसा लग रहा था कि अश्विन डिफेंड नहीं कर रहे हैं, अश्विन वेंट आउट कर
12: रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, सच में होता है, ये करते हैं ऐसे,
11: फ्रेंड को बताया आ जाओ
12: आ जाओ। हाँ राइट, 0800-800-4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आज सरप्राइजिंगली आई हैवंट रिसीव्ड एनी कॉल्स एज येट फ्रॉम अ वाइफ, जहाँ पर उनको पूरा अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं।
11: एक हस्बैंड ही है जो ऐसा करता है, उसने खुद कॉल करके बता दिया, बाकी
12: सब शायद नहीं करते।
11: और बाकी जो बीवियां हैं उनके पति भी ऐसा नहीं करते, वो दोस्तों को प्रायोरिटाइज नहीं करते।
12: मेरे पति तो ऐसा करते हैं भाई, मैं तो पूरा भरी पड़ी हूँ वेंट आउट करने के लिए।
11: हाँ, लेकिन ये आपके लिए है नहीं ना,
12: वही तो दिक्कत है कि जो चीजें मेरे लिए होनी चाहिए वो मेरे लिए है नहीं।
11: आप अपने पति के पास वेंट आउट करो,
12: प्रॉब्लम यही है कि वो उतना भी नहीं सुनता है। गुड मॉर्निंग सपना, कैसी हो आप?
13: गुड मॉर्निंग पूजा जी, अब करो मैं सुनने के लिए फोन कर रही हूँ।
12: मैंने सुनने के लिए कॉल किया, देखा
11: नहीं, अभी इनको अलाउड नहीं है वेंट आउट करने का ना।
12: मैं वेंट आउट करने लगी,
13: मतलब आज आप पे आती है तो वेंट आउट नहीं करना है।
12: हाँ, तो इनका पोल खुल जाएगा।
13: हाँ सही है, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड बहुत बैलेंस करके कर चलते हैं चीजों को, आई डोंट नो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उनसे, बहुत बैलेंस है वो।
12: क्या बात है, नजर न लगे
13: वो सच में, वो जहाँ जब उनको बुलाना होगा दोस्तों को तो पहले मेरे से कंसल्ट करेंगे, मुझे बताएंगे। हाँ। उसके बाद ही वो अपने फ्रेंड, एक्चुअली इनके फ्रेंड्स है भी नहीं ज्यादा।
12: अच्छा, मैं तो आपने बोला जी फ्रेंड्स नहीं है ज्यादा?
13: नहीं, नहीं बहुत गिने चुने लोग हैं जो, और वो भी है तो वो कॉमन
12: फ्रेंड्स, तो आपके भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं।
13: हाँ, वो सिचुएशन ऐसी आती नहीं है कि जहाँ पे इनको ये टू चूज वन ऑफ अस, सो
12: राइट।
13: तो ऐसा है,
12: थैंक यू सपना,
11: थैंक यू सो मच
12: कॉल के लिए, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
14: गुड मॉर्निंग, ठीक है आप कैसे हो?
12: बढ़िया जी, आप सुनाइए।
14: बस पहले बच्चों को ड्रॉप कर दिया, मम्मी की खबरियों को।
12: ये अच्छा था यार।
14: तो मैं बोला चलो अभी उनको ड्रॉप कर दिया, फोन करता हूँ। देखो चीज है कि जो दोस्त बनते हैं ना, वो बिना किसी वजह से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से हमारे दोस्त बनते हैं बंदे।
11: अच्छा, बीवियां एक्सपेक्टेशन से होती हैं?
12: अरे उनको बोलने तो दो पहले यार।
14: देखते हैं ना भाई, शादी से पहले देखते हैं लड़का कहाँ से क्या करता है, क्या खाता है, क्या पकाता है, क्या कमाता है। और दूसरी चीज है कि जैसे हम बैक होम जाते हैं तो हमारे से एक्सप्रेशन सब रखते हैं सिवाय के हमारे दोस्त। राइट, आया है तो ऐसा ही है कि भाई 10-20 साल पहले जैसा ही था वही है। राइट, ना कुछ बड़ा ना कुछ छोटा तो रहता है। तो इसीलिए अगर कोई दोस्त यहाँ पे भी है जो बुलाते हैं तो राइट अवे हम जाते हैं, क्योंकि बोलता है भाई दोस्त ने बुलाया, भाई ने बुलाया है, हम दोस्त नहीं, हम भाई बोलते हैं।
12: भाई
14: लड़के ऐसे नहीं बोलती कि मेरी सहेली है तो मेरी बहन है।
12: अरे बोलते हैं बहन।
14: अरे कितना डिफेंड कर रहे हो आपको।
12: मैं बताती हूँ कि हम तो बोलते हैं बहन।
11: अच्छा अच्छा ये बताओ, सब कुछ तो आपने बता दिया, ये नो आप सारी स्टोरी बता दी, ये बात आपने अपने बारे में नहीं बताई कि क्या आप अपने अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हैं,
12: प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं। ओवर
11: योर वाइफ,
14: ये आप स्टेटमेंट दे रहे हो या
12: नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं सीधा साफ सवाल।
14: डिपेंड्स कई बार अगर जो बंदा हेल्प में चाहिए, उसको हेल्प चाहिए या कुछ है, तो बीवी को बोलता हूँ कि लुक आई नीड टू गो सी हिम, आई नीड टू हेल्प हिम। लेकिन अगर

0: सकते
1: क्या
2: कि जो एरन ने लिखा है?
1: नहीं, हो सकता है. देयर आल्सो डिपेंड्स. सी, जरूरी नहीं कि जो शख्स जिसके साथ आप जैसा रिश्ता शेयर करते हैं बाकी भी इसके साथ वैसा रिश्ता शेयर करे ना, तो होता है कुछ डिफरेंस होता है. बट सपना ने कहा था कि मैं सुन रही हूँ पूजा, आप वेंट आउट करो.
2: नहीं अभी तो लोगों को
1: अभी मौका. नहीं अभी मैं वेंट आउट करने जा रही हूँ, मेरी मेरी बारी है. तो सपना 100% माई हस्बैंड प्रायोरिटाइज हिज फ्रेंड्स ओवर मी. इनके पास ना एक सेट टाइम होता है कि जब ये अपने दोस्तों के साथ एक एक घंटे, कभी कभी दो दो घंटे तक बातें करते फोन पे.
2: हाँ.
1: और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय इनको नींद भी नहीं आती. लेकिन अगर मैं इनसे बोलूं कि यार चलो थोड़ा कुछ बात कर लेते किसी चीज़ को लेकर, तो इनको बहुत जल्दी जल्दी कॉन्वर्सेशन खत्म करनी होती है पहली बात. और फिर ये थोड़ा ऐसे मैं इधर बात कर रही होती हूँ, देन इफ आई लुक अराउंड एंड देन ही स्लीपिंग, एंड देन इफ आई कन्फ्रंट हिम कि आप सो रहे हो, इज लाइक नहीं नहीं मैं जागा हुआ, मैं कहाँ सो रहा हूँ. तो एक तो ये, दूसरी चीज, ही हैज अ सेट डेट, डे नॉट डेट, सेट डे. मतलब मंडे टू फ्राइडे के बीच में या मंडे टू संडे के बीच में फ्राइडे इज द डे जो एलोकेटेड है इनके दोस्तों के लिए. ही इज 100% श्योर कि फ्राइडे ये अपने दोस्तों के साथ बिताने वाले फ्राइडे शाम को. और अगर जस्ट इन केस फैमिली में कुछ है या फिर इज नॉट फीलिंग वेल या समवन इन आवर फैमिली इज नॉट फीलिंग वेल, तो शायद ही विल स्टे बैक. शायद ही डज स्टे बैक, बट If it's nothing important, then every Friday almost ये अपने दोस्तों के साथ यू नो बिताते हैं. But he doesn't have a set day for me. ऐसा कोई एक दिन नहीं है मेरे लिए.
2: सातों दिन तो आपके साथ ही रहता हूँ. दिन की शुरुआत तुम्हारे साथ, दिन खत्म तुम्हारे साथ.
1: This is a professional thing. I'm talking about personal. हमें दिन की शुरुआत कर रहे हैं साथ में, वो बात तो अलग है. लेकिन छोड़ो वो बातें, तो छोड़ी दो. खैर, सबसे बड़ा प्रूफ दैट माई हस्बैंड प्रायोरिटाइजेस हिज फ्रेंड्स ओवर मी इज, यहाँ पर एक गजल का प्रोग्राम हुआ था जिसमें तलत अजीज साहब आए थे, एंड देयर वाज अनदर आर्टिस्ट, मैं उनका नाम भूल गई. ये गजल का प्रोग्राम हुआ था, व्हेन द प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड किए थे ये इवेंट होने वाला है. आई लव टू लिसनिंग टू गजल्स. और जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, मैंने उसी दिन इनको बोला था कि मुझे इस प्रोग्राम में आपके साथ जाना है. वेरी क्लियरली आई हैड टोल्ड हिम कि ये जो गजल का प्रोग्राम है, आई लव तलत अजीज, सो मुझे जाना है, हम और आप, मैं और आप, हम साथ जाएंगे, ठीक है. तो इनका रिस्पॉन्स था, यार मुझे ना नहीं जाना है, मेरा दिल नहीं करता, मुझे गजलें सुनना पसंद है, मैं घर पे बैठ के सुन लूँ, मुझे ऐसे जाके शो में नहीं देखना अच्छा लगता, तो मैं नहीं जाऊँगा. एंड आई अंडरस्टूड हिज सिचुएशन. आई वाज लाइक कि चलो अच्छा इनको नहीं जाना, अभी फोर्स कर कर ले जाने का क्या मतलब होता है. मैंने बोला ठीक है चलो रहने दो, इनको नहीं जाना तो आई वोंट फोर्स हिम. कट टू 3 or 4 days बिफोर द शो वॉज हैपनिंग, आई फाउंड आउट कि इनके दोस्त जो है ये उस गजल प्रोग्राम में जा रहे हैं. द सेम फ्रेंड ग्रुप इनका जिनके साथ ये हमेशा फ्राइडे को टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं. एंड 3-4 days बिफोर द शो इन इज टेलिंग मी कि मैं इनके साथ ये गजल प्रोग्राम देखने जा रहा हूँ, आप चलोगे? एंड आई लिटरली गॉट पिस्ड ऑफ ऑन हिम एंड आई एम लाइक कि मुझे नहीं जाना. ये जिंदगी भर का एक टॉन्ट तो मेरे को आपको देना ही होगा. और मैं हर बार जब भी मौका मिले, आई विल डू दिस टू यू, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू दैट यू चोज योर फ्रेंड्स ओवर मी. You decided to go and watch this गजल program जिसके बारे में मैंने तब आपको बोला था जब ये अनाउंस हुआ था, एंड यू सेड आपको नहीं जाना. एंड बिफोर दैट प्रोग्राम वॉज हैपनिंग यू डिसाइडेड कि आपके दोस्त जा रहे हैं, आपको बोला उन लोगों ने चलने के लिए, तो आप उनके साथ जाओगे. यू वेंट एंड एन्जॉयड अ गजल प्रोग्राम विद योर फ्रेंड्स, यू वेंट दे आर एंड ही डिड गो एंड अटेंड इट, बट जब मैंने बोला था तो नहीं गए थे. तो ये सबसे बड़ा सबूत है. तो जितने भी दोस्त हैं विजय वर्मा जी के जो उस गजल प्रोग्राम में उस दिन गए थे, और यू नो इनके जितने फ्रेंड्स हैं, दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही हैज, ये सब के सब ये सब के सब को प्रायोरिटाइज करते हुए मी, आई वुड से दैट
2: डन हो गया.
1: हाँ हो गया,
2: as if it makes any difference to me.
1: हाँ वो तो मुझे पता है, बट दिस इज लाइक अ प्रूफ कि मेरे पास तो भाई एक सिचुएशन भी है कि जिसमें ऐसा सच में हुआ है. बट नेवरदलेस इट्स लाइक अ अंडरस्टैंडिंग दैट वी शेयर, सो वी आर ओके विद इट. कभी कभी मैं इनको टॉन्ट करती हूँ और मुझे मौके मिलते हैं इनको टॉन्ट करने के लिए, तो अच्छी बात है ना, वो भी एक सिचुएशन हो जाती है. बट इफ यू गाइज गॉट टू गॉट एनीथिंग टू शेयर, तो वो आप हमें जरूर बताइए. एरोन ने मैसेज किया है, एरोन ने कुछ मैसेज किया ना, लिखा सी नाउ शी वोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स विजय. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनके सभी दोस्तों को नहीं पसंद करती हूँ.
2: खुद बोल रही है, खुद हंस रही है,
1: अरे मैं
2: खुद खुश हो रही है.
1: हाँ, क्योंकि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप तो चुप हो गए ना.
2: मुझे कुछ रिएक्ट ही नहीं करना उससे ना.
1: देखो सच्चाई मैंने बोली, चिड़ इनको मच गई.
2: मुझे कुछ चिड़ने में चाहिए, मैं क्यों अपना मुझे
1: कितने लोग जो फिलहाल में सुन रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि विजय चिड़ चुके हैं. इनकी आवाज से आपको ऐसा लग

0: है मेरे को ऐसा लग रहा है मैं और इनको चिढ़ा रही हूँ। अच्छा परविंदर का कॉल आ रहा है, खुश कर देंगे आपको। गुड मॉर्निंग परविंदर।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसी हो आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: आई एम ऑल गुड। आप बताइए, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ?
1: बहुत बढ़िया स्टोरी थी आपकी।
0: सामने वाला एकदम चुप हो गया, इतनी बढ़िया स्टोरी थी।
1: और बाद में वो जवाब, एज इफ आई केयर, केयर करते तभी तो ऐसा जवाब आया है, टेढ़ा सा
0: टेढ़ा सा सुन लिया।
2: नहीं ऐसा होना चाहिए, एज इफ इट, जो कुछ भी बोल रही है, एज इफ इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस।
1: तो उनको प्रॉब्लम है ना, तो आपको सोचना चाहिए एक बार।
0: नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है परविंदर
2: भाई। परविंदर आपको पता नहीं, जब
1: तभी पूरा तभी पूरा सिनेरियो याद करके रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: ये बताओ परविंदर, मैं एक बात आपको बताऊं, कभी कभी मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाता हूँ ना, फिर यही बोलती है अरे तुम जा नहीं रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए।
0: हाँ वो सारी बातें
1: हजार की बात बताती हूँ। मेरे घर में एक फ्रिज पड़ा है पिछले एक साल से खराब, और हमारी उससे हमेशा लड़ाई होती है कि इसको रखवा दो नीचे, नीचे रखना है बस, है ना। एक साल हो गया वो नहीं रखा गया है, उसका फ्रेंड दो गली छोड़ के रहता है, वो बंदा उसे बोलेगा पैंडा मार्ट से अलमीरा उठा के लाना है, माउंट ईडन से बेड उठा के लाना है। ये लोग चले जाते हैं डिचिक डिचिक डिचिक गाड़ी लगा के, और मैं बोल दूं कि फ्रिज नीचे रखना है, लड़ाई हो जाती है, उधर रख दूंगा ना, रख दूंगा ना। और वो मुझे पता है, वो अगर मैं 10 साल बाद भी बोलूंगी ना फ्रिज नीचे रखना है, वो बोलेगा मैं रख दूंगा ना।
0: रखेगा नहीं, लेकिन
1: नहीं रखा अभी तक, वो ऊपर ही पड़ा है।
0: आप एक दिन उनके दोस्तों, बहुत सारे उनके दोस्तों को ही बोल दो ये बात कि फ्रिज रख दो आके मेरे घर पे।
1: मैंने बोला हुआ है, वो बोलता बंद, वो भी बंदे ऐसी है ना, वो बोलता अभी पहले बेड उठा के लिया है, फिर आके रखते हैं, आके फिर वो थक जाते हैं, तो फिर कहाँ फ्रिज उठाया जाएगा ना। वैसे भी जिस बंदे का अपना काम हो गया, वो उसको क्या फिर फर्क पड़ता है ना।
0: ये भी बात है, ट्रू।
1: और भी बहुत सारे इंसिडेंट है ऐसे, जैसे मैं अगर बोलूंगी कि पैंडा मार्ट जाना है, तो मेरे हाथ में बोलेगा क्या करना है वहां जाके, इतने लोग खचाखच भरे होते हैं। पर वही उसका फ्रेंड बोलेगा तो मुझे तो बाहर से मैसेज कर देगा, पता है ना कि मैं क्रिएट करूंगी प्रॉब्लम, बाहर से मैसेज कर देगा मैं पैंडा मार्ट होकर आया। उनको ऐसा होता है ना कि फ्रेंड बुरा मान जाएगा, बीवी का क्या है, वो तो घर पे रहेगी ना।
0: हाँ बीवी को मना लेंगे,
1: बीवी का क्या मैटर करता है।
0: चलो थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए, यू हैव अ वंडरफुल डे, बाय, टेक केयर। तो चलिए आज का हमारा व्हाट्स अ टेक टॉपिक, अगर आपको इसके बारे में कुछ शेयर करना है, डेफिनेटली यू कैन गिव अस अ कॉल, और सॉरी टेक्स्ट इट टू अस ऑन 5599। अब
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Fuel savings at gas today.
4: Sunny patches on quite a cloudy one today. 17 hour high. Coming into the city, Northern Motorway, 34 minutes. Constellation Drive to town, 55 from Silverdale. Heavy at Silverdale and most of the way from Greville. Northwestern, 40 minutes in from Massey. Heavy there to Point Chev and then slow to the city. Southern at 43 in from Manukau. Slow from Manurewa. Heavy most of the way from Wataru. Southwestern, quite heavy northbound to Puanui.
3: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calmed down, I'd actually do something like.
6: Imagine winning $25 million this Wednesday. Play in store or online.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
3: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
8: The Rush Hour आपके लिए on the breakfast show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं. 18 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 9 बजने में. और थोड़ी देर पहले हमारे पास एक मैसेज है, उन्होंने कहा कि hi, I couldn't hear the code for competition, is there a repeat? तो आई थिंक ये बोर्डिंग कॉल के बारे में बातें कर रहे हैं ना.
9: यस, और हम बोर्डिंग कॉल, आप कोई कोड नहीं होता है उसमें, बस आपको जाकर बोर्ड नाउ ही एंटर करना होता है. एवरी टाइम जब भी आपको बोर्डिंग कॉल जो है ये सुनाई दे, यू हैव टू गो टू रोवा और वहां पर जाकर आपको बोर्ड नाउ एंटर करना होता है. जहां पर लिखा होता है एंटर कोड नाउ, वहां जाकर आप बस बोर्ड नाउ टाइप करें और सबमिट कर दें. टर्म्स एंड कंडीशंस भी वहां पर आपको मिल जाएंगे. यू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट और बस आप ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे. इट्स दैट सिंपल. और बोर्ड नाउ लिखकर आपको 5599 पर हमारे पास नहीं भेजना है.
8: हाँ, क्योंकि आपको BC लिखकर 5599 पर भेजना है. BC लिखकर आप भेजोगे तो आपको मिलेगा कंपटीशन पेज का लिंक, यानी वो टैब, वो पेज जहाँ पर आपको जाकर ये Q2 को बोर्ड प्ले होने के बाद बोर्ड नाउ जो है ये टाइप कर सबमिट करना होगा. बोर्ड नाउ लिखकर 5599 पर सेंड करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता. तो मेक श्योर BC लिखकर अगर आप भेजते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक जो है ये मिल जाएगा. अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इन अंडरस्टैंडिंग हमारा जो हम बोर्डिंग कॉल कंपटीशन, तो वो आप समझने के लिए मैं कॉल कीजिए ना, आपको यू नो आराम से समझा सकते हैं. बट दिस इज द बेस्ट वे वी कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं. फिलहाल 15 मिनट बाकी है इसमें हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में और आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन भी, जिसमें डैड्स रिवर्स ग्रिल आप इसमें पार्टिसिपेट करते हुए जीत सकते हैं या ड्रॉ में शामिल होकर जीत सकते हैं $500 कैश.
2: Let's go.
0: Straight from the heart.
10: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Fly Solomon Airlines.
3: Fine at times, a lot of cloud today, a high of 17 degrees. In on the southern motorway, 42 minutes Monaco to the city. Got a truck broken down in the left lane after Highbrook Drive, just slowing you a bit. We're slow from Monaco, heavy most of the way, Otahu to the city. Northwestern, 25 Massey to town, slow patches from Pātiki, heavy at Point Chef. Northern, 26 from Constellation, heavy patches, Greville to the bridge.
2: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: How fresh is your produce? At Barro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Barro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Barro.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: Time check.
4: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं.
0: हम News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A person has died in a crash involving a pedestrian in the Bay of Plenty. It happened on Te Puke Highway around 9 last night, closing the road for several hours. The scale of a water leak affecting the Marlborough town of Seddon and surrounds is yet to be determined. It may be in a section under the riverbed and locals are being asked to conserve water. Council's Richard Conningham expects a fix to take at least 48 hours.
10: They're currently just walking the pipeline where they suspect the breakage has occurred just to confirm the location before we start a repair program for it.
9: There's a sigh of relief that free flu vaccines for under fives are being rolled out now. Dr. Luke Bradford from the College of GPs says they wrote to officials last week.
11: It's very virulent. We're seeing huge numbers and there's things we can do to help. We asked for a broader vaccination coverage and they've acted.
9: Customer care workers at Woolworths are anxiously waiting to hear if they still have jobs. The supermarket has proposed combining the team with Australia. The Workers First Union's Rudd Hughes says that would see 130 New Zealand jobs gone.
12: A lot of the workers there really have gone into the job because it provides an ability to work from home. We've got a number of single parents involved in that and, you know, they're being put onto the scrap heap.
9: To sport, a passionate defence from Springboks scrum coach Daan Humane ahead of Sunday's third test against the All Blacks in Johannesburg. Dave Rennie accused South Africa of illegal tactics at scrum time.
13: We try always to do it 100% to the book. That's the way I've been brought up. I'm a farmer. I'm just a normal straight guy.
9: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Bledisloe Cup packages selling now. And the Warriors arresting hooker Wade Egan and back rower Kurt Capewell for Saturday's final NRL regular season game against Manly at Mount Smart.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good brands me.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: Super City Auckland mein filhal 14.6 degrees temperature hai. High of 17 expected hai aaj baad mein chalkar. Overnight temperature aaj ka 12 degrees tak rahega. Mausam ke baare mein kaha gaya hai partly cloudy with isolated showers hone ki sambhavna hai mainly in the afternoon today. Aaj ka sunset 6:02 pm par rahega.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: What's going on? क्या बकते हो?
15: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, ये भाई बहुत ही शॉकिंग है और इट स्पीक्स अबाउट द फैक्ट कि क्या कुछ कभी कभी लोग जो ये कर गुजरते हैं. अपेरेंटली ये घटना जो है ये स्तंभ चौक की है जो मुंगेर में है, मेरे ख्याल से निया बिहार या बिहार में है, इनफैक्ट नॉट निया बिहार. यहाँ पर एक घटना जो है सामने आई जहाँ पर रातों रात एक सड़क की खुदाई जो है ये की गई एंड आसपास जब लोग देख रहे थे इन छह लोगों को जिनके पास खुदाई करने का सारा सामान था, टूल्स थे, ये सारी चीज़ें लेकर इन्होंने रातों रात एक सड़क की जबकि खुदाई की, तो लोग जो चल रहे थे आसपास देख रहे थे इनको, उनको ऐसा लगा कि म्यूनसिपल का कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो ये चल रहा है, ऑफिशियल प्रोजेक्ट है ये जिसके तहत शायद वहाँ पर जो म्यूनसिपल ऑफिस के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं जो ज़रूरी काम जो है ये पूरा कर रहे हैं. एंड अपेरेंटली दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन केम टू लाइट जब अर्ली मॉर्निंग एक पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ पर पुलिस पहुँची और उन्होंने इस ग्रुप ऑफ सिक्स लोगों से कुछ सवाल जवाब करने शुरू किए रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन और जो काम वो खुदाई का कर रहे हैं उसके परमिट्स के लिए. जब छः के छः लोग इनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट या परमिट्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो पुलिस ने उनको एट दैट वेरी स्पॉट अरेस्ट किया और कार्रवाई करने के बाद ये पता चला कि ये जो छः लोग हैं ये वहाँ पर सड़क की खुदाई कर रहे थे ताकि सड़क के नीचे जो BSNL के कॉपर केबल्स होते हैं इन्हें ये चुरा सके. अराउंड लाख्स ऑफ रुपीस के ये कॉपर केबल्स थे और इनको चुराने के इरादे से वहाँ पर खुदाई का काम किया जा रहा था इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ओपनली कि देखने वाले लोगों को भी लगा कि ये तो भाई कर्मचारी हैं जो रास्ते को मरम्मत कार्य करने के लिए रास्ते पर काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं. एंड नो वन डाउटेड देम अनटिल एंड अनलेस द पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन पर सवाल उठाया.
16: तो भाई पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी ये तो खोद रहे थे, पूरा का पूरा रास्ता ही गायब कर दिया, कहीं अलकतरा गायब हो जाता है, कहीं टावा गायब हो जाता है, तो इस तरह की अजीबोगरीब चीजें जो है ये होती रहती हैं.
4: बिल्कुल. और आपके लिए इनसे जुड़ी खबरें क्या बकते हो इसमें हम लेकर आते हैं इस घंटे, थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन. रिमेम्बर हमारा डेड्स रिवर्स ग्रिल कॉम्पिटिशन, इसमें पार्ट लेते हुए ड्रो में शामिल होकर $500 कैश जो है ये जीत सकते हैं. ड्रो फ्राइडे को होगा, सो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इसीलिए रिमाइंडिंग यू ऑल इस घंटे पार्ट जरूर लीजिएगा.

0: फादर्स डे के खास मौके पर ये बहुत ही खूबसूरत गाना आज आपके लिए फिल्म बोस से हम शामिल कर रहे थे। 2013 में ये मूवी आई थी और उसी फिल्म का ये ट्रैक आज आपके लिए मैंने पेश किया। रिमाइंडिंग यू ऑल की फादर्स डे जो है ये इसी संडे को मनाया जाएगा और फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर फादर्स डे जो ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो होपफुली आप सब तैयार हैं अपने अपने पापा को फादर्स डे के मौके पर सरप्राइज करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड डोंट फॉरगेट कि हमारे साथ इसी घंटे शामिल होकर आप जीत सकते हैं या ड्रो में शामिल हो सकते हैं जीतने के लिए फादर्स डे के मौके पर $500 कैश।
1: और आज आपका जो रिवर्स ग्रिल है, जितने भी डैड हमें सुन रहे हैं, पिता सुन रहे हैं, आपसे एक सवाल होगा जब आप कॉल करेंगे और उस सवाल का सही जवाब देने पर ड्रो में आपका नाम जो है ये शामिल हो जाएगा।
2: What's going on?
3: What's up, Auckland?
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अब जो बाकी कुछ दिन है ये मनाया जा रहा है बहुत से जगह पर। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा द केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ में हर रात 7:30 बजे से कथा होती है
0: और उसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लो एव मेनिकाउ यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जाएगा फ्राइडे 4 सितंबर तक। आप इसमें हर रोज 7:30 PM से पार्ट ले सकते हैं।
1: श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन भाग मंडली द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एव पापाटोएटोए में
0: और उसके साथ श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन यहाँ पर भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसी फ्राइडे 4 सितंबर तक मनाया जाएगा जिसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। वैसे फ्राइडे को देर रात 12 बजे तक कृष्ण जन्मोत्सव जो है ये मनाया जाएगा।
1: न्यूजीलैंड संगम द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है डेको ऑफ एलिगेंस 16 लैम्बी ड्राइव मेनिकाउ में हर रात 7:30 बजे से कथा जो है ये आरम्भ होती है। आपके लिए प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध है।
0: आउटियरोवा सनातन संगम संस्था की ओर से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है ये मनाया जाएगा फ्राइडे 4 सितंबर तक 7 PM से यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत होती है 2 सटन क्रेसेंट पापाटोएटोए आप पहुंच सकते हैं।
1: श्री हनुमान मंदिर नोचो में श्री कृष्ण जन्म उत्सव जो है ये इसी शुक्रवार तक मनाया जाएगा और जो जन्म उत्सव है इसी शुक्रवार को रात 12 बजे से आरंभ होगा
0: और साथ में माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोएटोए 4x3 ओनस्लो एव यहाँ पर भी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मना सकते हैं और इसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। ये खास तौर पर आपके लिए हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए याद रहे फ्राइडे को 8:30 PM से आप भाग ले सकेंगे देर रात 12 बजे तक।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 20 minute ho rahe hain 9 bajkar is samay hamari studios mein aur aapke liye the Breakfast Show with Vijay and Pooja hum lekar aa rahe hain. Jabki what's going on jari hai. To ek message aaya hamare paas. Unhone kaha, "Hi, I would like to wish happy birthday to my daughter Shanaya Sharma, who's turning 7 today. Lots of love from mummy hai Pooja. Papa hai Amit, behen hai aapki Anaya. Dadu aur dadi hai jo India se aaye hain aapko wish karne ke liye ya fir India se hai aur saath mein wishing you best birthday ever our princess." ये अमित ने हमारे पास मैसेज भेजा है. तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी टेंस ऑफ द डे टू यू शनाया. हैप्पी 7th बर्थडे आपको हम जरूर विश कर रहे हैं आज.
3: इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको. फिलहाल अभी वक्त है आपको कॉल, अगर आप एक पिता हैं, आप एक डैड हैं, तो हमें कॉल करें 0800-004-866 पर. नंबर याद रखें 0800-004-866. एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, सही जवाब दिया तो ड्रो में शामिल होंगे और $500 कैश आप जीत सकते हैं. गुड मॉर्निंग. हेलो.
4: गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई?
4: बस भाई बढ़िया, आपकी दुआ.
3: क्या नाम है आपका?
4: आलोक.
3: अरे आलोक, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो आलोक, आज फादर्स डे के लिए अभी कुछ प्लान बना कि क्या करेंगे वीकेंड पर?
4: बीवी ने थोड़ा सा अकाउंट खाली कर दिया है, अगर यहाँ से जीत गया तो वापस से थोड़ा अकाउंट में डाल दूंगा.
3: है, अकाउंट खाली कर दिया? नहीं नहीं, मैंने संडे को क्या करने वाले हो, मतलब फादर्स डे के दिन?
4: तो वही तो संडे को, वही तो खाली किया
3: है उसके लिए, खाली कर दिया
4: जाएंगे.
3: हाँ. अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, तो ऑल द बेस्ट. एक सवाल है आलोक, आप बताइए, व्हाट डज द टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर?
4: USB is a USB pen drive. It's a USB याद था मुझे.
3: अच्छा, मैं आपको कुछ क्लूज देता हूँ, ठीक है? चार ऑप्शन दे रहा हूँ मैं. यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिफाइड सीरियल ब्रिज, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिट स्टोरेज बैकअप.
4: I think unit storage backup.
3: Unit storage backup.
4: Yes.
3: USB.
4: Yeah, I think so. Storage के लिए use होता है ना? That's why.
3: Okay, Alok.
4: Universal drive board. Universal drive board.
3: नहीं नहीं, यूनिवर्सल ड्राइव बोर्ड नहीं है, एक है यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, एक है यूनिवर्सल सीरियस बस.
4: यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड थोड़ा सा
3: कंफ्यूजिंग है ना.
4: यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड कर दीजिए,
3: वो यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड पर कर दीजिए. चलो थोड़ी देर बाद अभी आपको पता चलेगा कि आपका नाम ड्रो में शामिल हो रहा है या नहीं आलोक, क्योंकि हम लोगों को भी, क्योंकि हमने आंसर रिवील ही नहीं किया. तो जितने डेट्स अभी सुन रहे हैं हमें, आप हमें 5599 पर टेक्स्ट करके बताइए, What does USB stand for? आलोक ने चूज किया है यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, ठीक आलोक?
4: Yes,
3: sir. हाँ, तो आपने यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड चूज किया है. आप हमें बताइए कि what does USB stand for?
2: आप मैसेज कर सकते हैं हमारे पास. आप क्या कीजिए, लिखिए BF, उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम, और हमारे पास इसे आप सेंड कर दे on 5599. It's that simple. USB, इसका क्या मतलब होता है, what does it stand for? ये आपको हमारे पास टेक्स्ट करना होगा. BF space answer your name 5599 पर. Thank you so much आलोक जी, have a wonderful day.
4: आपके
2: कॉल के लिए शुक्रिया. और देखते हैं थोड़ी देर बाद कितने लोग हमारे पास अपने मैसेज सेंड

0: तो आपने सवाल किया था कि यूएसबी का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। कई लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस जो ये सेंड किए हैं अभी तक, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास 3302 इनका मैसेज आया था, नाम नहीं लिखा इन्होंने, और उसके बाद 7252 इन्होंने अपना जवाब भेजा, सनी है साथ में। हमारे पास एक और एक मैसेज आया है, शबीन ने भी अपना आंसर जो ये में भेजा है, इसके साथ साथ सागर है, राज है, संपत है, राम इनका भी मैसेज आया है, यूडी है, अंजू है फ्रॉम हैमिल्टन, जाकिया थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, 1921 आपका भी मैसेज मिला है, और शेन हुसैन इनका भी मैसेज आया है, साथ में वटन, इज दैट हाउ वी प्रोनाउंस द नेम, क्योंकि इन्होंने भी मैसेज जो है ये किया है।
1: ओके थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए, आंसर्स के लिए। और यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
0: तो जितने लोगों ने हमारे पास ये मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो मच, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अनफॉर्चूनेटली आई थिंक आलोक का आंसर गलत हो गया ना।
1: हाँ, उन्होंने जो भेजा, उन्होंने कहा था यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड ऐसा कुछ पिक किया था,
0: अनफॉर्चूनेटली रॉन्ग हो गया। बट नेवरदलेस याद रहे, डेड्स रिवर्स ग्रिल आपके लिए जारी है, जिसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप जीत सकते हैं ड्रो में शामिल होकर $500 कैश, जिसका ड्रो इसी फ्राइडे को होगा। सो जब जब मौका मिले टू पार्टिसिपेट, मेक श्योर टू गिव अ कॉल व्हेन द लाइंस आर ओपन, और पार्टिसिपेट जरूर करें, जहां पर आपसे मॉडर्न स्लैंग्स, टेक्स रिलेटेड, या फिर आजकल के जो जमाने के यू नो कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, पॉप कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आपसे हम पूछेंगे। बाय द वे आपको याद दिला दे कि अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे इसके लेटेस्ट एपिसोड में आप जान सकते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पंजाबी कम्युनिटी इन न्यूजीलैंड ओवर द लास्ट सेंचुरी, क्या कुछ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की ओर से जो है कंट्रीब्यूट किया गया है टू मेक न्यूजीलैंड व्हाट इट इज टुडे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बातें हुई है विद हरजोत सिंह जो कि एक प्रेजेंटर और रिसर्चर है, साथ में गगन संधु जो कि डायरेक्टर है। दीज टू आर द क्रिएटर्स बिहाइंड द ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू आओतियरोआ, और इन्होंने अपनी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है, फाइंडिंग्स जो है, ये शेयर की है, जहाँ पर जनरेशन ऑफ पंजाबीज हु कैरीड देयर ड्रीम्स अक्रॉस द ओशन, और उन्होंने कैसे न्यूजीलैंड में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की फ्रॉम स्क्रैच, इसके बारे में कई तरह की बातें जो है ये आप जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: कॉफी द यूजुअल।
7: How about the unusual?
8: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
9: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
10: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
11: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
12: अब हमारा क्या होगा?
13: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
1: तो क्या करें?
14: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
15: A Kogan stick vac is just like a stick vac. Both stick vacs do very similar stick vac things, but with slightly different little logos, colors, and adapters. One's a Kogan MX-12 Pro cordless stick vac. The other stick vac has a price that sucks. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
16: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
17: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
18: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: What's going on?
19: 22 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। डेली राउंडअप का वक्त हो चुका है और आज सबसे पहले डेली राउंडअप में पैसिफिक ओशन में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इवेंट फास्ट ट्रैक पर इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसका डायरेक्टली असर न्यूजीलैंड के वेदर पर पड़ने वाला है। एथ साइंसेज न्यूजीलैंड के सीजनल आउटलुक के अकॉर्डिंग मिड विंटर के बाद से ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और 1997 के हिस्टोरिक इवेंट को टक्कर दे रहा है। साइंस जर्नल के एक स्टडी के मुताबिक ह्यूमन कॉज्ड वार्मिंग की वजह से अब एलनिनो इवेंट्स इंडस्ट्रियल एरा से 36% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इस सीजन एक्टिव वेस्टली विंड्स, सीवियर टेम्परेचर वेरिएबिलिटी और अनयूजुअल विंडी कंडीशंस जो है ये देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 3 महीनों में देश दो अलग अलग वेदर एक्सट्रीम्स में बंटने वाला है। नॉर्थ आइलैंड के नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरियाज में काफ़ी गर्मी और कम बारिश एक्सपेक्टेड है, जिससे वहाँ 50% चांस है कि टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी हाई रहेंगे। दूसरी तरफ साउथ आइलैंड के वेस्टर्न रीजन में 60% प्रोबेबिलिटी के साथ नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न रेन सिस्टम्स अब कम फ्रिक्वेंट होंगे और जिम्मेदार मौसम मोस्टली टेस्मन सी या साउथ ओशन से ड्राइव होगा। इस वेदर पैटर्न का डायरेक्ट हिट वाटर यूजर्स, एग्रीकल्चर और डेली सेक्टर्स पर पड़ने वाला है। पहले से ड्राई विंटर झेल चुके रीजन्स में रेनफॉल और कम होने से ड्राई स्पेल्स बढ़ेंगे और सोइल मॉइस्चर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे वेजिटेशन और फार्मिंग को सीरियस चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे कंट्री के कोस्टल एरियाज और सीज जो हैं वार्म हैं और साउथ आइलैंड के सराउंडिंग्स में मरीन हीट वेव्स चल रही हैं। हालांकि ओवरऑल मौसम गर्म रहेगा। अक्टूबर तक सदन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग की वजह से ओकेशनल कोल्ड आउटब्रेक्स जो हैं ये भी आते रहेंगे।
10: वैसे इसके अलावा एक और एक अपडेट आज के लिए जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आप फेस करें देन हाउ विल थिंग्स बी फॉर यू। अगर आप अपने डॉक्टर के पास गए जहां पर आप बता रहे उनको कि आपको क्या तकलीफ है एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद यू बट देन दे टेल यू कि आप शायद अपनी बीमारियों को ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियों जैसा बना रहे हैं बट लेटर ऑन इट टर्न्स आउट टू बी दैट यू रियली वर सिक। ये असल में हुआ है न्यूजीलैंड की एक नागरिक ट्रिनिटी हचिंस के साथ। एज अ टीनेजर ट्रिनिटी जो है इन्होंने कई साल बिताए इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल विद सीरियस गट प्रॉब्लम्स और इनके एक विजिट के दौरान टू द हॉस्पिटल उनको एडमिट किया गया जहां पर शी बिगेन वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्लड। लेकिन डॉक्टर्स ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली में इनके साथ क्या हो रहा है, क्या गलत है। इंस्टेड दे बिकेम सस्पिशियस कि ये अपना जो बीमारी है या ब्लीडिंग जो ये हो रहा था इसे ये फेक कर रही थी। ट्रिनिटी ने कहा दैट शी वाज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग फैक्टिशियस डिसऑर्डर और इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा शख्स जिनको अपनी बीमारी जो है ये फेक करने की आदत हो या फिर वो अपना फिजिकल कंडीशन जो है ये मेडिकल कंडीशन जो है इसे एग्जेजरेट करते हैं या नाटक कर रहे होते हैं बीमार होने का। और इस चीज़ को लेकर जब उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए इवन द डॉक्टर सजेस्टेड कि शायद उन्होंने ब्लड जो है ट्यूब से लिया है फ्रॉम हर चेस्ट एंड दे आर यूजिंग इट टू फेक द वॉमिटिंग। उनकी माँ तक पर इल्ज़ाम लगाया गया ऑफ पॉसिबली मेकिंग हर डॉटर सिक। लेकिन years later डॉक्टर्स को ये पता चला कि जो कुछ भी वो फेस कर रही थी वो एक्चुअल में रियल था। ट्रिनिटी वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर वाइटमिन सी डिफिशियंसी जिसका नाम है स्कर्वी और वाइटमिन सी लेवल इनके शरीर में सिर्फ नंबर वन था, मतलब नॉर्मल रेंज जो होता है 26 टू 85 के बीच में लेकिन इनके शरीर में सिर्फ वन। एंड सीवियर स्कर्वी जो है ये इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और ट्रिनिटी के मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये था दैट शी वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू एब्जॉर्व न्यूट्रियंट्स प्रॉपरली। ये केस जो है तब सामने आया जब आरएनजेड ने इसके बारे में एक रिपोर्ट जो है ये दर्ज की और साथ में इन्होंने अपने एक नए पॉडकास्ट ऑल इन हर हेड इसके ज़रिए पेशेंट से बातें करने शुरू की जहां पर कई ऐसे पेशेंट्स हैं विद कॉम्प्लेक्स कंडीशंस एंड व्हाट हैपेंस जब डॉक्टर्स इजीली उनके सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तब जाकर ट्रिनिटी की कहानी जो है ये सामने आई।
19: इसके अलावा मनुरेवा में घटी घटना पिछले हफ्ते जिसमें दो लोगों की जाने गई थी के संबंध में 30 वर्षीय एक व्यक्ति पर चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार व्यक्ति पर हत्या के दो चार्जेस लगाए गए हैं और उन पर कार्रवाई जो है ये की जाएगी और कल सुबह पुलिस ने पुष्टि की कि व्यक्ति पर चार्जेस जो है ये लगा दिए जाएंगे और उन पर अदालती कार्रवाई की जाएगी।
17: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
2: वक्त है आज की दो बातों का। उम्मीद है कि आप इन दो बातों पर गौर करेंगे। कहते हैं कि नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है।
3: और दूसरी बात आज की,
2: कहते हैं कि चरित्र और वस्त्र कितने भी चमकदार हो, देखने वाला सिर्फ दाग पर ही ध्यान देगा।
3: तो कितना भी अच्छा आप कर लो, आपसे एक गलती हो जाए, फोकस जो है घूम फिर कर उसी पर चला जाता है ना।
2: बिल्कुल।
3: चले इन्हीं बातों से, इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे अब इजाजत जाने की। जाने का समय जो हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए, आपके समय के लिए। कल मुलाकात होगी एक बार फिर आप सबके साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। ठीक सुबह 6 पर आपके लिए प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हो जाएंगे।

कॉल्स हम अब लेने ही वाले हैं और 800 हम पर आपको कॉल करके फादर्स डे के लिए एंट्री देनी है. लास्ट 2 डेज लेफ्ट. ओके, आपको बताना है कि आपके घर में जो एक फादर है वो किस तरह से अडेप्ट कर चुके हैं. क्या वो अभी भी आपके बच्चे जो हैं उनको कॉपी करते हैं या वो बच्चों को कॉपी करते हैं. बस आपका कॉल आना चाहिए एंड वी विल सी कि फादर जो है क्या खुद एक यू टर्न मारते हैं कि नहीं. 800 हम.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो आज बन गए हैं आप हमारे एक्सपर्ट एंड मेरे पास एक कॉल आई थी। आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट पिक अप योर कॉल, बट आप अभी मुझे कॉल कर सकते हैं। 0800 00 हम इज द नंबर जिस पर आप मुझे कॉल करें। 4324 आई मिस्ड योर कॉल, या आई थिंक आई गॉट यू बैक। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है? हेलो हेलो, कहाँ गए? 4324 कॉल करो, कहाँ गए? आ गया। हम गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, अश्विन बात कर रहे हैं।
1: हाँ, कैसे हैं अश्विन जी?
2: बस बढ़िया बढ़िया, आप?
1: मैं तो बढ़िया हूँ। बताओ, क्या आप अपने फादर की कार्बन कॉपी हो, या आपने एज अ फादर कुछ सीखा?
2: मैं मेरा फादर के मैं कॉपी हूँ। लोग अभी मेरे परिवार जब जाते हैं मैसी जी घूमने, तो वो बोलते हैं तू अपनी अपनी पिता की तरह एकदम लग रहे, अपने बाप की तरह, तेरा बात भी तेरा जो वॉइस की है, जो आपके जो तेहा है, वो तेरा तू अपने बाप पे बुरा गया है।
1: ओके, लेकिन ऐसी कोई चीजें हैं जो आपने अभी मॉडर्न लाइफ में अडेप्ट की हैं, जो आपको लगता है, या आपके बच्चों ने कुछ आपने अपनी चीजें जो हुबहू अगर आप कॉपी हैं, तो क्या आपके जो बच्चे हैं वो मॉडर्न टर्म्स इस्तेमाल करते हैं? उनका कुछ पॉप कल्चर अलग है, कुछ टेकी आप ज्यादा बन गए हैं, क्या हुआ ऐसा आपके साथ एज अ फादर?
2: देखो ऐसा हुआ, जब मैं जब पीजी में था, मेरा एक ड्रीम था, मैं सोका प्लेयर, मेरा बाप भी सोका प्लेयर था, तो मैं लोग साथ में सोका खेला और साथ में ट्रॉफी भी जीता हूँ। तो जब मेरे बच्चे हुआ तो मैं भी वही चीज किया, मेरे बच्चों के साथ खेला और एक ट्रॉफी जीत के रखा हूँ। मैं एक चिन्ह है मेरा, बोला मेरे बाप के साथ मैंने जीता, तू मेरे साथ खेल के जीता है।
1: अच्छा, तो उन्होंने आपने उन्हें सिखाया?
2: मैंने वही बताया मेरे बेटों को कि मैं जब सोका खेलता था, मैंने अपने पिता के साथ खेला और उसके साथ वो ट्रॉफी भी जीता है। तो मैंने बेटे को बोला, तो तू क्यों वीडियो गेम हरदम खेल रहा है, क्यों नहीं तू मेरे साथ खेलो सोका? तो मेरे साथ वो सोका खेला, क्रैचेज में मैं था, तो मैं ट्रॉफी जीता। तो मेरा लिए वो बहुत भारी एक सरप्राइज था, क्योंकि बहुत खुश नसीब होते ना लोग बाप के साथ इसे खेल के जीतते है।
1: क्या बात है। तो आप अपने फादर की कार्बन कॉपी और आपका बच्चा आपकी कार्बन कॉपी?
2: ना, थोड़ा का वो माँ के बैठ गया है।
1: अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? नई चीजें सीखी होंगी ना?
2: वो कहते हैं लोग ना, जैसे माँ का प्यार जस्ती होता है ना, तो बच्चे माँ का प्यार। तो मैं सोचता था ऐसा होगा, कुछ होगा।
1: चलिए ठीक है, आपका अश्विन मैंने नाम ड्रॉ में ऐड करा। $500 कैश जीतने के लिए सुनहरा मौका आपका, बिल्कुल चांस ब्राइट हो गया, ठीक है ना? और ये परसों ड्रॉ होगा विजय और पूजा के साथ।
2: ठीक है,
1: चलिए, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस। बाय। वैसे जितने भी लोग सुन रहे हैं, अश्विन की तो कहानी हमने सुन ही ली है, लेकिन अगर आप अपने डैड को एक सुपर हीरो बनाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज पर आप पहुंच सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपने डैड की फ़ोटो को एक सुपर हीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट्स इट, अपने डैड को टैग कीजिए, फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी आप टैग करिए, मत टैग नहीं, उनको बोलिए लाइक कीजिए कॉम्पिटिशन के जहाँ पर आपने पोस्ट किया है। एक श्योर करनी है आपको बात, कि हमारे पेज जो है हम FM का, उसको आपके जो भी भाई बहन या जो भी भाई बंधु जो भी कुछ हो, उनने भी उसे लाइक करना है और उस कंपटीशन को लाइक करना, उस पोस्ट को लाइक करना है। आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा, टू विन $300 कैश। ये ड्रॉ भी परसों होने वाला है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हमारे फेसबुक के पेज पे, या फिर आप हमारे साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है, तो आप कहाँ से सुन रहे हैं जल्दी लिख के भेजिए 5599 पर।
0: My time with Kashika.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
4: फादर्स डे ऑन हम, ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Showerdome.co.nz.
6: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
7: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
8: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, a new drill, a new barbecue.
6: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
9: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open-mouth tool bag, $41.98. Tradie-fitted trunks pack of six, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
10: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
11: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
12: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
13: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
15: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
14: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
16: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic Guru.
17: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: तो जब ऑफिस शाउट आउट की बात आती है तो भाई इतने सारे लोग जो है हमें सुन रहे हैं और खास तौर पे ऑन हंगर से NZPMI से पॉल आप हमें सुन रहे हैं, आपकी टीम भी हमें सुन रही है, आपके कारयार्ड में भी आप हमें सुन रहे हैं. सो बिग थैंक यू टू यू फॉर हमिंग अलोंग एंड डेफिनेटली. अब मैं बाकी की कॉल्स तो नहीं ले पा रही थी फादर्स डे के लिए, लेकिन आपको हमारे अगले जब हम लाइंस खोलेंगे उस समय आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर आप अपनी एंट्री जरूर ऐड कर सकते हैं.
17: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: get ready.
1: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: वाकई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, बट एक सुपर गोल्ड कार्ड का डिस्काउंट जो ऑफ़र करता है, हंड्रेड स्मॉल छोटे बड़े बिजनेसेस में डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं, बट कुछ प्रमोशन जो नहीं होती उनके लिए फॉर द ओल्डर लॉट, तो उनको कभी पता ही नहीं चलता. जैसे कि वेयरहाउस रेड शेड्स 5% डिस्काउंट देते हैं टू द सुपर गोल्ड डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मंथ, बट कुछ कपल्स जो होते हैं अपनी ट्रॉलीज में सामान भर लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं विदाउट इवन गेटिंग द डिस्काउंट. तो फिर वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा. और ऐसा एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो चल रहा है अराउंड कुछ सुपर गोल्ड के डिस्काउंट्स में. लोगों को करीब 18-18, 20-20 डॉलर का भी डिस्काउंट तक मिल जाता है. लेकिन ऐसे में एक वेयरहाउस में जब वो गए और उनको डिस्काउंट नहीं मिला, तो उन्होंने और वेयरहाउस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा नहीं, हम ये आपको डिस्काउंट डेफिनेटली दे देते हैं. बट ये काफ़ी लोगों की एक कंसर्न बन चुकी है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर एक अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है. और कहा यह जा रहा है दैट ये कम्युनिटी सपोर्ट जो सीनियर्स को दी जाती है, बिजनेसेस जो हैं उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए कि सुपर गोल्ड के डिस्काउंट्स अपने लिए कहीं पर एक डिस्प्ले में लगा देना चाहिए. मे बी दैट हेल्प्स.

0: Better.
1: तो ईट बेटर लिव बेटर, ऑफकोर्स थोड़ी देर बाद ड्रीम डायरी भी खोलने वाली हूँ मैं. और अगर कोई ड्रीम आपको लगता है कोई परेशान कर रहा है तो मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं, 0800 हम पर मुझे कॉल कर सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द थिंग ऑफ बॉलीवुड में क्या है कि एक कास्ट जो थी रेस 4 के लिए बहुत सारी आवाज़ चल रही थी, शोर चल रहा था कि आमिर खान वॉज द लेटेस्ट रूमर्ड पर्सन. रिपोर्ट्स आए टाइगर श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनको भी किसी स्टेज पे कंफर्म किया जा रहा. लेकिन ऐसे में टिप्स फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रमेश तुरानी, उन्होंने कहा रेस 4 की कास्टिंग इज़ इन प्रोग्रेस. कोई भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ कि किसको लिया जाएगा कि किसको नहीं लिया जाएगा. सो there is no particular person who has been signed up as yet. Of course, at one point logon ne socha ki race mein Saif Ali Khan 2008-2013 mein bhi nazar aaye, Salman Khan took over race 3. To aise mein kya ab Salman Khan dobara laut ke aayenge ya phir Aamir Khan, Tiger Shroff ya Siddharth Malhotra, kaun aage aayega?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain, 100% tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
7: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
8: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: Media Works Complaints. How can I help?
12: Yeah. Hello.
11: Hi.
12: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
11: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
12: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
11: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
12: Great. Sing it to me.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: तो आप जो है एक मोस्ट एस्पायरिंग, जिसे कहते हैं सपनों की दुनिया, एंड वो दुनिया है नन अदर देन मुंबई. तो आपको सपने में मुंबई के किसी एक्टर का एक सपने में आए. ये होता है कि कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो मुंबई मूव कर जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज़ जहाँ पर उनको लगता है कि उनको स्टार्स भी देखने को मिलेंगे. और फिर वो एक इंटेंस कंपटीशन, एंडलेस ऑडिशंस को फेस करते हैं. फिर फाइनेंस भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. एक सर्वाइवल वर्सेस स्टारडम एक वो देखने लग जाते हैं. और ऐसे में कुछ मेगा स्टार्स हैं जैसे कि बड़े बड़े घरों के बाहर लोगों के भीड़ लग जाती है कि भाई इन स्टार्स को हम एक ग्लिम्स उनका देख लें. जेनरेशन से मतलब समझ लीजिए वो बाहर आते हैं, आके मिलते हैं, हलो हाय भी करते हैं. तो आपको अगर ये ड्रीम आया है तो हो सकता है आप एक इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, आप एक चुनौती लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कभी कभी रियल लाइफ स्ट्रगल्स के साथ भी जुड़ जाते हैं, बट इंश्योर दैट ये स्ट्रगल वहीं तक ही छोड़ दीजिएगा. लाइफ में जो स्ट्रगल आता है या उनकी लाइफ जीवनी, अगर आपको पता है कि सो एंड सो एक्टर ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की और आपको लगता है आप उसके साथ यू नो रेजोनेट कर पाते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है. ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इस गाने के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो एक्ट्रेस थी इनका आज बर्थडे है. इनका नाम है उदिता गोस्वामी और इस फिल्म में ये नज़र भी आई थी.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: जब बात करें इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है वाकई बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी और ये मेरी भी एक वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट मूवीज़ है. एंड मूवी का नाम है राजा हिंदुस्तानी. राजा हिंदुस्तानी ने कुछ ऐसा काम किया था जो कि ये कह सकते हैं, ये फिल्म जो थी पर्टिकुलरली, कहा जाता था 4 घंटे कुछ मिनट की पिक्चर बनी थी, लेकिन काट पीट कर जब इस फिल्म को रेडी किया गया तो फाइनली इसे उसी नॉर्मल टाइम के अनुसार उसको प्रोजेक्ट किया गया. एंड ऑफकोर्स इस फिल्म में गाने कमाल के थे, एक्टिंग कमाल की थी, आमिर खान भी वाकई कमाल के थे. वो एक पेड़ पर्टिकुलर था जहाँ पे करिश्मा कपूर और यू नो आमिर खान नज़र आए थे. और वो पर्टिकुलर पेड़ जो है, जब ऊटी में मैं गई थी तो वो पेड़ दिखाने के लिए मुझे जो टूर गाइड था वो लेके गया था. यही शूटिंग हुई थी. अरे मैंने कहा बाकी भी तो दिखाओ कुछ, पेड़ तो सभी ने देखे हुए हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्ट्रक लोग होते हैं जो शायद उन जगहों को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, उन जगहों को समझने के लिए ज़रूर जाते हैं. मगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग था जो बिल्कुल दिल को छू जाता था, और वो पर्टिकुलर सॉन्ग दो लोगों ने, अलका याग्निक जी ने भी गाया था और उदित नारायण जी ने भी. सुनते हैं.

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनानास चाइल्ड केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 21 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, ये हमेशा आपके पास है। गो बनानास चाइल्ड केयर ब्रिंग्स यू अ क्रेजी ऑफर विद 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस। ऑफर एंड्स 30th September, लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल 8.6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
8: भौकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
9: हमें एम्पायर चलाना नहीं गुड्डू भैया, बनाना है।
8: मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 4th September।
10: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
0: Hum, time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. People are being urged to make sure they're well prepared for an increased fire risk, with the incoming El Nino forecast to be the strongest in recent history. Fens Wildfires manager Tim Mitchell says no one should let their guard down.
14: High fire risk doesn't necessarily mean that that's exactly where all the wildfires are going to occur. Low risk doesn't mean no risk. So that's why we're encouraging people all around the country to prepare.
13: Contractors are working hard to find a major water leak impacting residents in Marlborough's Seddon and its surrounds. Council's Richard Conningham says it could be quite a challenge.
15: If it's within the river, it will take a resource and a plan to deal with the river flow while the repairs are taking place as well, hence the 48-hour timeframe.
13: A new plan has been launched here for unpaid carers. It's looking to make progress on their health and well-being, along with financial security and recognition. Associate Minister Penny Simmons says thousands of unpaid or informal carers need a sustainable long-term roadmap on the issues they face. She adds it will not expire and instead serve as an ongoing process. And in the States, a judge is set to rule on whether the man accused of shooting Charlie Kirk will stand trial or not. Prosecutors argue 23-year-old Tyler Robinson killed the conservative activist over his political views, and it might even lead to the death penalty. In sport, rugby first, and the Black Ferns Sevens will face fierce rivals Australia in a one-off match in Sydney next month. They'll square off as a curtain raiser to the second Bledisloe Cup test between the All Blacks and Wallabies on October 17th. Rugby with All Blacks, travel and hospitality.com. And a solid start to the US Tennis Open for American Taylor Fritz. The ninth seed sent down 14 aces in a straight sets win over fellow American Darwin Blanche.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस। कांबा वाईकिले लंबासा के स्वर्गीय लालू महाजन की पुत्री, मांगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी, ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां, मांगरी की अमृत कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-9111-2928 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, कांबा वाईकिली लंबासा के स्वर्गीय लालू महाजन की पुत्री, मांगरी के स्वर्गीय अभय चंद की पत्नी, ऑकलैंड के अतीश, रोहित, स्वरण और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की शोभना की मां, मांगरी की अमृत कुमारी मिका की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-9111-128 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड की भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे वाकुमेटी शमशान भूमि में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, रविचंद के पुत्र ग्लेन ईडन ऑकलैंड के भावना के पति तथा अर्पिता के पिता ग्लेन ईडन ऑकलैंड के अनिल चंद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे वाकुमेटी शमशान भूमि में किया जाएगा। सूचित किया जाता है कि नीरज और ताशा की माँ 8 माइल्स नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंता देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-00738400 पर आप संपर्क करें। सूचना दोबारा सुने, नीरज अताशा की माँ 8 माइल नसीनो फिजी के स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद की पत्नी मैंगरी की शकुंतला देवी प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 021-00738400 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
17: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के बारे में तो बताना चाहेंगे. हल्का हल्का मौसम ये चेंज होता चला जा रहा है एंड इट फील्स लाइक 15 डिग्रीज और वैसे दी हाइज ऑफ 15 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 12 आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है. ये बादल दोपहर के समय बढ़ेंगे. साउथ वेस्ट की हवाएं जो हैं सुबह आपने जरूर महसूस की हैं. सनसेट 6:11 पर. स्टूडियो की घड़ी में 11:05 हो चुके हैं. आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. और इसी के साथ साथ कशिश फूड्स को भी थैंक्स कर देते हैं जिनके सौजन्य से आपके लिए मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के बीच में मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए आ जाती हूँ, बताती हूँ, बातें करती हूँ. बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. वैसे एक बात है, आपको पता है कि रिज़र्व बैंक जो है ये कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक रेट राइज जो है एंड सम मोर थिंग्स आर एक्सपेक्टेड. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ बिट. अभी के लिए फिलहाल ये गाना सुना.
0: मिड मॉर्निंग मजा बचाओ क्या

0: सो सिक्स वर्ड स्टोरी का मैं इंतजार कर रही हूँ. अगर कोई स्टोरी आपको आपके फादर पे लगती है छोटी सी प्यारी सी, 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिए. ओनली सिक्स वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. ओके, वेल आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो रिजर्व बैंक RBI. तो इट इज़ सेट टू डिलीवर अ 25 बेसिस पॉइंट राइज जो कि OCR में होने वाला है टू 2.75%. इसी के साथ साथ एक फॉरकास्ट भी वो बताने वाले हैं. इट्स लुकिंग लाइक दैट देयर इज गोइंग टू बी फॉल इन ऑयल प्राइसेस, इम्प्रूव्ड कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिकवरी के लिए भी चांसेस हैं डिस्पाइट अ वीक लेबर मार्केट. वी नो दैट मोस्ट ऑफ अस वी ऑल नो दैट कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ा हुआ है, बट एटलीस्ट ये जो राइज हुआ है अब कहा जा रहा है प्रॉबेबली इन दिसंबर होगा या फिर नेक्स्ट में. ये दिस डिसीशन इज़ ड्यू एट 2 PM. सो वी आर गोइंग टू लुक, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एग्जैक्टली क्या ये होने वाला है, किस तरह से ये स्क्रूटनाइज किया जाने वाला है. वील वेट एंड वॉच. और हमारे पास हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, इनके साथ भी हम बातचीत करके इन बातों को पता भी लगा सकते हैं. लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो हम बोर्डिंग कॉल हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, और ये आपको बताना है क्योंकि ये वनुआटू की टिकट्स जो हैं दो हैं. सोलोमन एयरलाइंस के साथ आप फ्लाई करेंगे, $1000 कैश जीतने का सुनहरा मौका भी है. ये कभी भी आपके लिए बच सकता है, तो बस इसी बात को आपको याद रखना है कि आपको फटाफट बोर्ड करना है फ्लाइट को. और जब ये फ्लाइट आप बोर्ड कर लेते हैं, समझ लीजिए गेटवे टू पैराडाइज आपके लिए खुल रहा है दरवाज़ा. जल्दी कीजिए, फ्लाइट मिस मत कीजिएगा, ये कभी भी बच सकता है. याद रहे कि सोलोमन एयरलाइंस जो है हफ्ते में 4 बार नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं, और विजिट कर सकते हैं flysolomons.com के ज़रिए. हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको ज़रूर हमारी वेबसाइट के ज़रिए आपको मिल भी सकती हैं. इन पर भी आप तवज्जो डाल सकते हैं. आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा. सिक्स वर्ड स्टोरी का मुझे इंतजार है.
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती.
1: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम.
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
8: Samoa is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay holiday from $1,169 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
9: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: डॉक्टर ने क्या बोला?
11: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
10: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
12: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
13: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashore1.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
14: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
15: Indelible Homes, your building expert.
16: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
17: अच्छा
16: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
17: मिसेस सिंह
18: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
19: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33

0: Crossword Story.
1: So beautifully written. Thank you so much to Navjot. Aapne likh ke bheja hai, rough exterior hiding pure gold within. Rough exterior hiding pure gold within. Haan, bilkul, you are so right. Matlab fathers jo hote hai na, bilkul rough and tough hote hai ekdam se, but andar se, upar se nariyal, aur andar se kitne soft hote hai na? Oh my God, and I hope ye Father's Day aapke liye bhi bahut hi ek memorable din bana rahe. Chalo, yahan tak to hum pahunch chuke hain, lekin aapko main batana chahti hu about हमारे कम्युनिटी में ख़ास तौर पे क्या हो रहा है. जन्माष्टमी जो है ये सेलिब्रेट की जा रही है और ये परसों तक की जाएगी. आप पहुंच सकते हैं द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मैनेकाओ में 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से ही रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मैनेकाओ में भी ये आयोजन किया जा रहा है. डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 लैम्बी ड्राइव मैनेकाओ में एनजेड संगम आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव लेकर आ रहे हैं. इसके अलावा आपके लिए श्री राम मंदिर में भी ये महोत्सव जो है ये चल रहा है. और आउटिरोआ संगम जो सनातन संगम संस्था है जो कि सटन क्रिसेंट पापटोई में है, यहाँ पर भी आपको आमंत्रण दिया जा रहा है. हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर, यहाँ पर भी आपके लिए ये आयोजन किया गया है. और माँ दुर्गा टेम्पल पापटोई में जो 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापटोई में है, यहाँ पर भी जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा है.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

माय टाइम आपके लिए वो लकी चार्म हो जहाँ पर आपको पहुँचना है स्ट्रेट अवे हमारे रोवा ऐप के ज़रिए। वैसे हमारे रोवा ऐप के बारे में आपको बता देते हैं, इसे आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसमें तरह तरह के म्यूज़िक स्टेशंस आप सुन सकते हैं, जैसे हम रिवाइंड, ज्यूक बॉक्स, फीजी भजन, चढ़दी कला, फीजी कीर्तन संग्रह, राहत फ़तेह अली खान, तो ये आप डेफिनेटली सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप रोवा ऐप पर हैं ही हैं और आपको पता है कि आपको वनुआटू जीतने के लिए टिकट्स जीतनी है, तो बस आपको क्या करना है, सीधे आपको वहाँ पे बोर्ड नाउ करना है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा, बहुत सिंपल तरीका है, आप बोर्ड आप जो है बोर्डिंग कॉल का BC लिखिए 5599 पे, टेक्स्ट कीजिए मुझे एंड आपको वो लिंक जो है कंपटीशन का मिल जाएगा और अपनी एंट्री आप सबमिट करके फ्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं। आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ लकी चांस।

0: शिकार।
1: वाह, अद्भुत
2: अद्भुत बात यह है कि 100 साल पूरे हो चुके हैं रेजिलियंस, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, और किस तरह पंजाब की जो कम्युनिटी है ये शेप अप हुई फॉर द मॉडर्न न्यूजीलैंड ओवर द लास्ट सेंचुरी। इसके बारे में बातचीत की हरजोत सिंह जो हैं और गगन संधू, ये जो क्रिएटर्स हैं फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट्री पंजाब टू आउटरूआ। इन्होंने कुछ वो कहानियाँ बताईं, वो सैक्रीफाइस के बारे में बातचीत की जो जेनरेशन के साथ चलती चली आ रही हैं। 5599 पर आप ड्राइव लिख के भेजें, पूरा ऑडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़ पे आपको रोवा और स्पॉटिफाई पर भी मिल जाएगा।
3: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
8: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
9: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यूर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
10: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
11: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
10: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
12: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
13: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। ईट बेटर, लिव बेटर।
2: Rescue me, recycle me. मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कभी कभी कोशिश कीजिए, स्वॉप कीजिए डिस्पोजेबल्स को। क्लॉथ नैपकिन्स का इस्तेमाल कीजिए, स्टील कटलरी का इस्तेमाल करें, रीयूज कीजिए वाटर बॉटल्स को इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज जो भी प्लास्टिक्स होते हैं या डिस्पोजेबल्स होते हैं। एंड इट रियली हेल्प्स, डेफिनेटली इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे buzz@hamfm.com पे अगर आप हमें ईमेल करते हैं आपकी कम्युनिटी की कोई भी खबर, तो हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं आपको, आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बनने के लिए। ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट, अप टिल नाउ कीवी सेवर हैड बिकम वेरी एक्सेसिबल, ये अब हो जाएगा फॉर फार्म वर्कर्स एज वेल, बिकॉज दे आर वॉन्टिंग टू यूज़ देयर सेविंग्स टू बाय देयर फर्स्ट होम। ये एक लेजिस्लेशन जो है ये इंट्रोड्यूस हो रहा है इस हफ्ते, तो उसकी वजह से देखते हैं कितने लोगों को उसमें फायदा पड़ता है।
13: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है बुधवार, या मेरी भाषा में से कहती हूँ मैं हम्पवार. मुलाकात होगी दिन कहलाएगा कल बृहस्पतिवार, वीरवार या गुरुवार, जो भी इसे समझना चाहें. बट अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ. डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम्प स्टूडियोज़. टेक केयर, बाय बाय.